0: जब जो है संसार के पदार्थ संसार की वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन जितने भी पदार्थ संसार के हैं वो सब कैसे, सबकी आयु निश्चित है, सब एक सीमा में बने हुए हैं और सब जो है नाशवान। जब सब नाशवान है तो हमें प्रिय तो लगते हैं, वो तात्कालिक हमें सुख तो दे सकते हैं, लेकिन है दीर्घकालिक सुख भी वो दे सकते हैं, फिर अक्षुण सुख तो कहां से दे सकते। जिनमें स्वयं छिड़कता है, जो स्वयं नाशवान है, वो हमें अविनाशी और जो है अस्थाई है सुख, स्थाई सुख कैसे दे सकते। तो यदि संसार के पदार्थों में ही हमारी रुचि है तो समझ लो हमने प्रेय का वर्णन कर लिया और जो है श्रेय का वर्णन नहीं कर पाए। अब श्रेय का वर्णन नहीं करोगे, चाहोगे श्रेय तो श्रेय मिलने वाला नहीं, तो तुम्हारी रुचि भिन्न चली गई। जिस मार्ग में रुचि जानी चाहिए, जिस तत्व में रुचि जानी चाहिए, जिसका औपनिषद जहां संकेत कर रही है, तो उसमें रुचि ही नहीं हुई। और रुचि जब नहीं होगी तो फिर गति कैसे होगी आगे, तो पहले तो रुचि ही काम आती। तो इसलिए संकेत किया कि तो एक जो है अमरता का मार्ग, दूसरा जो है मृत्यु का मार्ग। तो हम यदि मृत्यु से रहित होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कहा अमरता के मार्ग को ग्रहण करना पड़ेगा। चाहते तो सब हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं चाहता, लेकिन होता क्या, उस मार्ग का चयन करने में ही भूल हो जाती है। अंतर इतना, सब चाहते हैं, सब सुख को की तरफ ही दौड़ रहे, लेकिन जो है जब सुख के लिए जा रहे हैं तो सुख का जो साधन समझ रहे हैं, अमरता का जो साधन समझ रहे हैं, उसका चयन करने में ही भूल हो रही। उस भूल की निवृत्ति यदि हो जाए, और वो निवृत्ति करने वाला कौन है, तो संकेत कर दिया ज्ञानम है स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, वही करने वाला, इसलिए उसके प्रसाद की जरूरत। लेकिन इतना होना है, रुचि तुम्हारी होनी है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन ने क्या किया, प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर, आनुमानिक प्रमाण के बल पर, और भगवान के सामने सारे तर्कें प्रस्तुत कर दी और तब निर्णय लेकर के कहा नयोतिष्याम, ये कहा ना। तो उसने प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर, उसकी तर्कें प्रत्यक्ष प्रमाण से मने पुष्ट हैं, प्रामाणिक हैं, और जो है आनुमानिक प्रमाण से भी प्रमाणित हैं, लेकिन अनुमान की गति है कहां तक, प्रत्यक्ष की गति है कहां तक। भगवान जिसकी संकेत जिसका कर रहे हैं वो अनुमान का विषय नहीं है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण आदि का विषय नहीं, और वहां कोई तर्क भी काम नहीं आती। नहीं को तर्को प्रतिष्ठा, वहां तर्क की प्रतिष्ठा है ही नहीं, ऐसा अवतार है। राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनो सैनी। तुलसी रामायण में भी जो है भगवान शंकर ने यही तो उपदेश पार्वती को दिया, वो तर्क का विषय नहीं। तो ऐसे अब उसको हम चाहते तो हैं, लेकिन वो तर्क के आधार पर नहीं मिलेगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण कहां काम आने वाला, और जहां ये काम आने वाला, हमारी गति तो यहीं तक है, आगे हमारी गति है नहीं। तब जहां गति नहीं है तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। अब जब सहारा लेना है तो सहारा कैसे लिया जाए, तो भगवान ने इसका उपाय बतलाया, और सर्वी शास्त्रों में जो भी कहा, मई एव मन आदत्स्व मई बुद्धिम निवेशय, और तप आदि की बात कही है ना, जो भी कहो है तो माम कथयंतश्च रमंतश्च इत्यादि करके जो कहा, मेरा ही परस्पर कथन करो, अर्थात इंद्रियों का भी प्रयोग मेरे में करो और मन का भी प्रयोग मेरे में करो, और ये करने लगे तो क्या हुआ, इंद्रिय और मन का झुकाव उधर हुआ, ये रुचि हो गई। और जब रुचि हो जाएगी तो भगवान आगे क्या कहते, कहा आगे का कार्य तो मैं संभालूंगा, है ददामि बुद्धि योगम ते, तो हम तेरे को बुद्धि योग दे दूंगा, और उस बुद्धि योग से क्या होगा, फिर तू मेरे को प्राप्त, तुझे अमरता की प्राप्ति हो जाएगी। एक मोटे रूप में सुना, एक बार अवंतिका का राजा मेघपाट के आसपास घना जंगल था, उसमें पहले जंतु बहुत थे, तो शिकार करने के लिए उसमें गया। और जब शिकार करने के लिए गया तो उसका प्रोग्राम एक महीने का था, एक महीने शिकार करनी। तो अब जब वहां रहेगा तो कैसे रहेगा, तो या तो टेंट लगाए माने पटकुटी बनाए या पर्णकुटी बनाए। राजा ने भी वहां पर जो है टेंट आदि लगाया। अब जो है शिकार करने के लिए वहां के लोगों का सहयोग चाहिए, तो व्हील एक था, उस व्हील को उन्होंने चैन किया, उससे कहा तुम मेरा सहयोग करो। उस व्हील ने जो है तीर आदि लेकर के अपने जो वाद्य होते थे उनको लेकर के और राजा का जो है सहयोग करने लगा। वो वाद्यों को बजाता था और वाद्यों के शोर को सुनकर के वो जानवर जो है निकल के बाहर आते थे, और आते थे तो राजा उनकी शिकार करता था। इस प्रकार से उस भील ने उस राजा का सहयोग किया। अब एक महीने तक उसे रहना था, एक महीने तक वो राजा रहा, शिकार करता रहा। उस भील ने बड़े ही संलग्नता के साथ में, बड़ी तल्लीनता के साथ में, रुचि पूर्वक उस राजा का सहयोग किया। अब राजा धार्मिक था, पहले राजा ऐसे नहीं होते थे, कैसे होते थे, धार्मिक। और धार्मिक था तो राजा का नियम था प्रातः काल उठकर के और भगवान शिव की आराधना करता था। तो राजा जो है उसके पास भगवान का विग्रह था, तो उस विग्रह का जो है अर्चना आदि करना, उसका अभिषेक आदि करना ये कार्य करता था। अब जो है वो अपने उस टेंट में बंद करके ये काम करता था और वो बाहर बैठता था। एक दिन उसके अंदर जिज्ञासा हुई कि राजा सुबह सुबह बैठ करके बंद होकर के इसमें क्या करता, इसलिए उसने टेंट में से थोड़ी सीमन हटाई और देखने लगा। और देखा तो उसने देखा कि ये जो है पूजा और अभिषेक करते हुए देखा। अब ये कोई जरूरी नहीं, जब परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है तो किसके हृदय में कब क्या प्रकाश कर दे ये कोई नियम नहीं। भले ही हम कह दें ये बैकवर्ड है, ये आदिम जाति का है, ये भील है, ये सब वहां परमात्मा के यहां भेद, क्योंकि सारे अंतःकरण में और कब प्रकाश कर देता, कब किसकी क्या स्थिति कर दे ये कुछ कहना, लेकिन रुचि की बात है, श्रद्धा की बात। अब उसके अंदर रुचि पैदा हो गई, ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। और जैसे ही रुचि उसकी हुई, उसके बाद राजा का एक महीने का कार्य पूरा हुआ। राजा वहां से चलने लगा, उसने कहा कि भाई तूने मेरी बड़ी सेवा की है, तू मेरे से कुछ मांग ले। उसने कहा कि मैं मांग लूं आप दे दोगे, उसने कहा हां दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है, तो आप प्रातः काल जिस विग्रह की पूजा करते वो मुझे दे दो। राजा ने सोचा ये भील है क्या करे, कहा कि तू कुछ और मांग ले, इसका तू क्या करेगा। एक दो बार राजा ने कहा, लेकिन उसने कहा नहीं, कहा उसने कि तुम्हें देना है तो ये दे दो, नहीं देना तो कोई बात। राजा ने सोचा चलो इसने सेवा की, राजा ने उसे दे दिया। फिर उसने नियम पूछा कि इसकी अर्चना कैसे करेंगे, इसकी विधि बतलाओ। राजा ने कहा भील जात की क्या पवित्रता रख पाएगा। तो राजा ने एक सामान्य नियम बता दिया, कहा तू जंगल में रहता है, धारा प्रिय सेवा, जल चढ़ा देना, पत्र पुष्प चढ़ा देना, और जो है नैवेद्य आदि तेरे पास जो हो वो चढ़ा देना, और फल फूल चढ़ा देना, ये सब कह करके। लेकिन एक नियम रखना। क्या? कहा भस्म जरूर चढ़ाना, चिता भस्म जरूर चढ़ाना। कहा इसमें पवित्रता पवित्रता की कोई बात नहीं, ऐसा राजा ने सोच के बता दिया, और किसी में त्रुटि हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भस्म का नियम रखना, भस्म रोज चढ़ाना। उसने कहा ठीक। वो चला गया राजा, वो जो है वहां पर उसको लेकर के, और उसने अपनी अर्चना प्रारंभ कर दी अपनी झोपड़ी, और नियम से वो करता रहा। बारह वर्ष बीत गए, बारह वर्ष के बाद ऐसी वर्षा हुई कि चारों तरफ जल ही जल हो गए। अब उसे उस दिन चिता भस्म कहीं मिली नहीं, तो बड़ा ही दुखी मन बैठा हुआ। साथ में उसकी पत्नी भी सहयोग करती थी। पत्नी ने कहा कि क्या बात है। उसने कहा आज तो मैं शरीर को छोड़ दूंगा। कहा क्यों। कहा एक नियम केवल मेरे लिए बतलाया थे बड़े राजा ने, और अपना जो है प्रिय जो है मैंने इष्ट हमको दे दिया, और इसकी पूजा मैं कर रहा हूं, आज मैं इसको पूरा नहीं कर पा रहा तो इसलिए मेरे लिए धिक्कार है, मैं तो इस शरीर का ही त्याग कर दूं। उसने कहा इसमें चिंता करने की बात क्या? कहा क्या मतलब? कहा ये झोपड़ी है ना। कहा क्या मतलब? कहा ये अंदर से सूखी है, इसमें मैं बैठ जाऊंगी, आग लगा दूंगी और मैं जल जाऊंगी, चिता भस्म तैयार हो जाए। कहा तू? कहा हां। इसमें सोचने की बात क्या? यह शरीर तो जब नाशवान है और शरीर को नष्ट होना ही है, और यदि यह परमात्मा के काम आ जाए, उसके लिए अर्पित हो जाए, तो इससे बढ़कर के और हमारे लिए क्या? जब वो स्वयं मांग रहा है कि मन मेरे को दे दो, बुद्धि मेरे को दे दो, इंद्रिय मेरे को दे दो, सारे शास्त्र भी यही बात कहते हैं, जहां यज्ञ की बात है वहां भी यही चर्चा आई, तो इसको करने में क्या? उसने कहा तो ठीक कहती, और हुआ भी वही। अब समय हो गया, चर्चा इसकी पूरी नहीं हो पाई, कल कर दें।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज शिव स्तोत्र। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव शिव बोल, प्रेजेंटेड बाय प्रमिला मानिक एंड जंबालिनी मानिक। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

ॐ कपटवर्जिताय नमः। ॐ कमनीयाय नमः। ॐ कलानाथशेखराय नमः। ॐ कम्बुगन्धराय नमः। ॐ गन्धर्पकोटिसदृशाय।

नमः ओम समस्त भुवन व्यापिने नमः ओम समृद्धये नमः ओम सततोदिताय नमः ओम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतराय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सूक्ष्म स्थूलत्ववर्जिताय नमः ओम जन्मकन्याधराय नमः ओम जन्मजरा मृत्यु निवारकाय नमः ओम शूरसेनाय नमः ओम शुभाकाराय नमः ओम शुभ्रमूर्तये नमः ओम शुचिस्मिताय नमः ओम अनर्घरत्न खचितकिरीटाय नमः ओम निकटे स्थिताय नमः ओम सुधारूपाय नमः ओम सुराध्यक्षाय नमः ओम सुब्रुवे नमः ओम सुखगणाय नमः।

ओम ध्यानबांधकाय नमः, ओम चतुर्वक्त्राय नमः, ओम चक्रधराय नमः, ओम पंचवक्त्राय नमः, ओम परंतपाय नमः, ओम विश्वस्यायतनाय नमः, ओम वर्याय नमः, ओम मंदारुजन वत्सलाय नमः, ओम गायत्री वल्लभाय नमः, ओम गार्ग्याय नमः, ओम गायकानुग्रहोन्मुखाय नमः।

नमः ओम गुह्याय नमः ओम गुह्यगे समभिष्टुदाय नमः ओम कृतांतकृतये नमः ओम क्रियाधाराय नमः ओम कृतिने नमः ओम कृपणे।

नमः ओम अवशाय नमः ओम स्ववशाय नमः ओम अस्थाणवे नमः ओम अंतर्यामिने नमः ओम शतक्रतवे नमः ओम कूटस्थाय नमः ओम कूर्मपीठस्थाय नमः ओम कूष्मांड गृहमोचकाय नमः ओम कुलंकृषकृपा

0: मातु बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतु मज्जनेषु यद्दीदयच्छवासरित प्रजाततदस्मा सुद्रवीणं धेहि चित्रम्
1: उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पताये त्वैष तेयो निर्बृहस्पताये त्वा इन्द्रगोमन्निहायाहि पिबासोमग्नेशतक्रतो विद्यद्भिर्ग्रवाभिः सुतम्।

0: நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ஓம் நம சிவாய்.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் மனிஷ பஞ்சகம், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ அவதேஷ் சைத்தன்யஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: आपके पास जो श्लोक है उसमें नहीं है, इसमें टीकाकारों ने उठाया, उसको मैं देखता हूं. द्विजवर दूरी कर्तुम वांछसी किम. हे द्विजवर, संबोधन कर रहे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दूरी कर्तुम वांछसी, तुम दूर करना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है कि हट जाओ ऐसा कह रहे हो, लेकिन मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो. அன்னமயாத் அன்னமயம் உத சைத்தன்யமேவ சைத்தன்யம். தும் தூர் கர்னா சாத்தே ஹோ, ஹட்னா ஹட்டானா சாத்தே ஹோ, கிஸ்கோ தூர் கர்னா சாத்தே ஹோ? அன்னமய ஷரீர் சே அன்னமய ஷரீர் கோ, இஸ் ஷரீர் சே இஸ் ஷரீர் கோ ஹட்டானா சாத்தே ஹோ? உத அத்வா சைத்தன்ய ஜோ கான்சியஸ்னஸ் ஹே, उस चैतन्य से चैतन्य को हटाना चाहते हो, किसको हटाना चाहते हो? भगवत भक्तजन व्यवहार में बाह्य पोशाक को हम सब देखते हैं, परंतु आप अपने मन को देखिए. मन के जो भी भाव है उस भावों को देखिए. अगर ये परिधान वस्त्र न हो, अगर मन ऐसा ही दिखता रहे, तो सभ्य समाज में सोसाइटी में हम जाने लायक है? मन के हरेक भावों को देखिए. अगर सच्चाई से कोई लिख सकता है कि मन में ये भाव आया, ये भाव आया, जो भी आया उसी को अगर आप लिख सकते हैं, तो वो मन सोसाइटी के लायक नहीं है. वो तो हम ऊपर से बहुत कुछ आवरण ओढ़ करके आते हैं, संवार करके सवार करके आते हैं और समाज में जाते हैं. इसलिए दूर करने की जो बात है, किसको आप दूर करना चाहते हैं? भगवान शंकर पूछते हैं, शरीर से शरीर को? तो ये शरीर जितना अपवित्र है, चांडाल वेशधारी शिव कह रहे हैं, वही तुम्हारा शरीर भी उतना ही अपवित्र है. स्थानाद वीजाद उपष्टंभात स्यंदनाद निधनाद्यपि. पांच कारण बता रहे. स्थानाद कहते ये शरीर जहां से निकला महाराज, मातृगर्भ, वो बड़ा पवित्र स्थान रहा होगा, है? साफ सफाई नित्य प्रतिदिन होता रहा होगा, आप जहां थे महाराज. स्थान देखो, वो अपवित्र है. बायोलॉजी को भी अगर आप देखते हैं, तो उसमें भी आपके जितने भी मातृगर्भ में जो जो स्थान है, इधर महाराज मलत्वली है, इधर महाराज मूत्र थली है, और बीच में आपका स्थान है, कितना पवित्र स्थान में आप रहे. और आज हम बड़ा अभिमान करते हैं स्थान को देखो, कि वो स्थान देखने से नहीं लगता है कि ये बड़ा पवित्र कर है. बीज उपादान भूत तत्व को अनुसंधान करें, कि भाई इस शरीर के मूल मैटर क्या है, उपादान क्या है, किससे ये बना है, अगर उस उपादान को अगर देखा जाए तो वो भी ग्रहणीय नहीं है, पवित्र कर नहीं है। और इस शरीर में महाराज क्या क्या निश्चरण होता रहता है, कोई भी एक चीज जो शरीर से निकलता है रखने लायक है, थोड़ा सा अलमारी में, शोकेस में रखने लायक, डिश में, प्लेट में, अपवित्र कर, स्यंदनाद निधनान अपी। और इस शरीर का जब नाश हो जाता है वो उतना ही अपवित्र कर, भयंकर बन जाता है। भगवान शंकर उस तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि कौन है जिनकी उपस्थिति से अपवित्र कर भी पवित्र बन गया है, कौन है जिसको तुम दूर हटने के लिए बोल रहे हो, क्या इस अन्नमय उपादान भूत जो शरीर है, अन्नमय कोष है, इसको, शरीर को अथवा चैतन्य को। इसलिए भगवत भक्तजन ये जो प्रश्न है भगवान शंकर के जीवन में, भगवान आदि सांब सदा शिव ने दिया, एक दृष्टि दिए। टीकाकार लिखते हैं संस्कार परवशाद एव मनुष्य जीवंती, संस्कार के परवश होकर के ही मनुष्य जीते हैं, और उस संस्कार को शोधन करना सर्वप्रथम साधना है। इसीलिए ये जो अंतिम में इनके प्रश्न सुन करके फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि ये बताओ, तुम तो लगते हो बड़े ज्ञानी, वो चांडाल पूछ रहे कि देखने में तो तुमको लगते हो बड़ा विद्वान है, ज्ञानी हो, अच्छा ये एक छोटा सा शंका का समाधान करो कि ये जो अंबर मणौ, ये जो अंबर स्थित मणि, सूर्य, सूर्य के जो प्रकाश है वो क्या गंगा जी में, घट में, सुवर्ण पात्र में, मिट्टी के पात्र में, और चांडाल बापी पया, स्वयं करे वो जो मेरे घर में जो तालाब है जिसमें मैं चमड़े को धोता हूं, बड़ा गंदा है, तो सूर्य के जो प्रतिबिंब है क्या मेरे घर के जो तालाब है गंदा पवित्र तालाब, उसमें जब पड़ता है और गंगा जी में जो पड़ता प्रतिबिंब, अथवा एक मिट्टी निर्मित मृत निर्मित घट में जो प्रतिबिंब पड़ता है, अथवा सुवर्ण पात्र में जो प्रतिबिंब पड़ता है, कोई अंतर है क्या लगता है? ये जो हम लोग व्यवहार दशा में आप स्वीकार कर सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक मन कि कौन किसके साथ आप सारे व्यवहार कर रहे हैं, ये जो भी आकार है, जो भी आकृति है, जो भी प्रकार है, ये तो अलग है, परंतु उसके आकार प्रकार के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं कि उनके इस आकारों को जिन्होंने पकड़ के रखा, कौन है वो? प्रत्येक आकार को किसने उभरने के सामर्थ्य दिया है? वो जो अदृश्य शक्ति है, अदृश्य चेतना है, जिसको आप आत्मा के, परमात्मा के चैतन्य रूप, उसकी ओर ध्यान देना चाह रहे हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, और ये जब प्रश्न पूछा कि सूर्य के प्रकाश सर्वत्र प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु सूर्य जो है उस प्रतिबिंब से, उस अपवित्र स्थानों से वो गंदा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार है आचार्य शंकर, तुम जो विद्वान बने हो तो तुम्हारे अंदर अभी भी वो भाव है, अरे ये शरीर चांडाल के हो सकते परंतु वही चैतन्य मौजूद है, और तुम ब्राह्मण हो सकते हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, परंतु उस तुम्हारे अंदर भी वही चैतन्य विद्यमान है, तो चैतन्य और चैतन्य में कोई भिन्नता नहीं है, शरीर को जाने दो, शरीर तो मेरा शरीर जितना पवित्र है तुम्हारा शरीर भी उतना ही अपवित्र है। तो दूरी कर्तुम बांछसी किम ब्रूही ब्रूही गच्छेति, तो किसको दूर भगाना चाहते हो, दूर हटाना चाहते हो भगवत भक्तजन? और ये प्रश्न और वार्ता सुन करके आचार्य के मन में आया कि देखने में तो चंडाल है और बात तो बहुत गहन गंभीर, और ध्यान मग्न होकर के देखा कि अरे सामने तो वही वादी शंकर विश्वनाथ उपस्थित है, और उनको वो संस्कार को दूर करने के लिए वो एक घटना। और फिर आचार्य शंकर कहते हैं आप कोई भी हो, ये जो एक समर्पण, और वो संस्कार से निकल आता है कि आप चांडाल हो चाहे द्विज हो, चांडालस्तु सतु द्विजोस्तु गुरु रित्तिशा, आप चांडाल हो अथवा ब्राह्मण हो, अगर ये ज्ञान जिसके पास भी है जिनके पास भी है वो मेरे गुरु है। इसलिए भगवत भक्तजन कई बार हम भी विचार करते हैं कि ब्राह्मण है अब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है, कभी भी ज्ञान के लिए किसी के बाधक है जाति नहीं। अगर योग्यता भक्ति में सबके अधिकार है, ज्ञान में सबके अधिकार है नारायण, संस्कार को परिशोधन करते हुए अगर आप जीवन में समर्पण कर सके हैं इस मन और बुद्धि को, फिर तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। और यही समर्पण आचार्य शंकर करके अब निश्चय बताते हैं तेषा मणिषा मम, यही मेरा मणिषा है, मन की इच्छा है मन की निश्चय है, चाहे वो चंडाल हो चाहे वो ब्राह्मण हो वो मेरे गुरु है। तो इसीलिए भगवत भक्तन कल जो मैंने कहा कि निश्चिंत निश्चय आचार्य शंकर तो कर गए कर दिया, वो निश्चय हमें भी प्राप्त करना है। निश्चय के लिए दो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मई एव मन याधत्स्व मई बुद्धिम निवेशया, मन और बुद्धि को अर्पण करो। कई निश्चय हम जीवन में प्रस्तुत करते हैं लेते हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन के लिए ऐसा कुछ निश्चय चाहिए जो व्यक्ति जीवन को पूर्ण रूप से अलग कर देता है। सारा जीवन आप जो कुछ भी करते हैं, आप क्यों कोई भी क्यों करते हैं भाई क्यों करते हैं, चाहे आपके सामने उत्तर सुख हो शांति हो, घुमा फिरा करके आप कोई भी उत्तर दीजिए, परंतु अल्टीमेट आपके पास एक उत्तर आएगा कि मैं जीवन में एक निश्चय चाहिए, मुझे निश्चिंत चाहिए। तो वो निश्चिंतता कब आ सकती है, जब जिस पर जैसे हम निश्चय ये है ये मेरे हैं, जब इसको आप मेरे करके उठाने से आप निश्चिंत होते हैं और साथ साथ उस अनिश्चय को भी भोगते हैं कि क्या पता ये रहने वाला है कि नहीं। तो सांसारिक वस्तु व्यक्ति विषयों के निश्चयता से निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। तो जिस प्रकार सांसारिक भोगों के प्रति चीजों के प्रति अपनापन है, वही अपनापन वही मेरा संबंध जब ईश्वर के साथ होता है वो निश्चिंत कर सकते हैं। मकान मेरा है एक शांति, जो जो भोग्य वस्तु अपना नहीं होता है तो लगता है कि अपना हो जाए तो शांति सुख। कभी भी हम प्रयत्न नहीं करते कि ईश्वर को भी अनुभव करें कि ये मेरा है, ईश्वर है इसमें कोई संदेह नहीं है, ईश्वर है परंतु ईश्वर मेरे है, ये भाव अभी तक शायद हम कर नहीं पाए। और जिस दिन ईश्वर मेरे है, इस मेरेपन ईश्वर के साथ आप बना सकते हैं, उस दिन आप निश्चिंत हो सकते हैं। अन्यथा हम कितना भी कोशिश करें नारायण, वो निश्चय भले ही कर ले परंतु हम निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि कर्तव्य मुझे करना है, करना मुझे है। उनकी तरफ से कितना भी वचन, कितना भी आश्वासन, कितना भी प्रतिबद्धता क्यों ना हो, निश्चिंत चूंकि मुझे होना है इसलिए निश्चय हमें करना है कि वो है, वो मेरा है। और जिस दिन इस मन और बुद्धि के द्वारा ऐसा निश्चय हो जाए कि प्रभु वो मेरे हैं, उस दिन व्यक्ति जीवन में छोटे मोटे कोई समस्या जो उनके व्यक्तित्व को हिला नहीं सकते। राहुल सांक्रंतायन में 2 मिनट एक कथा का सत्य घटना बोल करके समाप्त करता हूं। विद्यानिवास मिश्र के नाम सुने होंगे, बहुत बड़े विद्वान मनीषी रहे और VHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर रहे, वहीं से उन्होंने अध्ययन किया। और वो फिलोसोफर राहुल सांक्रंतायन जब वो दोनों अध्ययन करते थे VHU में तो एक ही साथ रहते थे हॉस्टल में, फिर दोनों का जीवन अलग अलग होता है। तो विद्यानिवास मिश्र जी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए और संतान संतति, और इधर राहुल सांक्रंतायन बाहर चले गए, लेकिन कभी कभी आते थे उनके पास, बनारस में आते थे, काशी में तो उनके घर में ठहरते थे, मित्र थे। तो अनेक बहुत दिन बीत गया, विद्यानिवास मिश्र जी बूढ़े हो गए। वो अपने संस्करण में लिखते हैं और मैंने उनका दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। उनके कई ग्रंथों को पढ़ करके ऐसे मन में आया कि उनका एक बार उनसे मिले। तो वो संस्करण में लिखते हैं कि राहुल सांक्रंतायन हम लोगों के यौवन के बाद कम से कम 35 साल बाद एक बार काशी में आए, वो भी बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ा हो गया। और VHU में कुछ काम करके वो ढूंढने लगे मुझे कि मेरे मित्र यहां थे, और ढूंढते ढूंढते जो है सामने घाट बोल के एक जगह है काशी में, वहां पहुंचे विद्यानिवास मिश्र के घर और मिले दोनों मित्र। बहुत बातचीत हुई महाराज, पूर्व स्मृति। फिर वो राहुल सांक्रंतायन पूछते हैं कि अरे भाई, तुम्हारे घर में एक नौकर था और वो बहुत प्यार करते थे मुझे, अभी कहां है वो, तुमको पता है? बोला अरे वो बहुत पुरानी बात है, अभी याद नहीं है। और मेरे घर से निकलने के बाद विद्यानिवास मिश्र राहुल सांक्रंतायन को कह रहे हैं, निकलने के बाद मैंने सुना कि उनको घर वालों ने निकाल दिया था, और कारण यही था कि वो लाचार हो गए थे, आंखों से नहीं दिखाई पड़ते थे, अंधा हो गया था। बोला अच्छा, तो उसके बाद तुम खबर नहीं लिया, कहां गए, क्या हुआ उसको? राहुल सांक्रंतायन पूछते हैं। बोले ना, मैंने तो खबर नहीं लिया। और इधर दोनों में एक वेश था कि राहुल सांक्रंतायन जो घोर नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। और तब उन्होंने बोला, तुम लोग ये विश्वनाथ को इतना कुछ कहते थे ना हमको, तो देखो बुढ़ापे में उसको देखा नहीं ना। और दोनों परस्पर विचार करते हुए, वार्ता करते हुए निकले कि देखो, मन में बड़ा इच्छा कि एक बार मिले उनसे, परंतु कहां है क्या पता। और बात करते करते 80 घाट पहुंचे, कहते कि चलो हम लोग दशाश्वमेध तक जो है घाटों घाट चलते हैं। और 80 घाट में उतर करके दोनों जो है दशाश्वमेध की ओर बढ़ने लगे और तुलसी मानस घाट पर पहुंचे तो दोनों के आवाज सुन करके कोई ऊपर से सीढ़ी के ऊपर से जो गए उनको पता है ऊपर से आवाज देते राहुल हो राहुल। वो घूम करके देखते हैं कि अरे वही बुड्ढे, तो दोनों मिलकर चौंका ला रही वही तो है। रामू रामू करके बुलाते थे, बोले वही तो रामू। दोनों उठ करके गए, देखते हैं कि एक बिस्तरा वो पोटला टाइप के बांध करके रखा और वो बैठा है। तो राहुल संकेतन पूछते हैं कि क्या हुआ, कहते हैं कि बस है हूं गंगा तट पर हूं आनंद से हूं और उनके कष्ट उनके चेहरा उनके उनको देख करके राहुल संकेतन के मन में इतना चोट पहुंचा। कहते कि तुम कहते थे ना कि ईश्वर है, हम लोगों को कहते थे कि भगवान सबको रक्षा करते हैं रामू, और आज तुम्हारी ये दशा, अगर है तो तुम्हारी ये दशा क्यों है? तुम जब लाचार हो गए, आंख से तुम दिखने में असमर्थ हो गए, घर वालों ने निकाल दिया और तुम्ही लोग कहते थे कि ईश्वर है, तब तक वो बुढ़े जो है उनके मुंह ऐसे दबाते कि बोलो मत, और उस बूढ़े के आंखों से आंसू झरने लगे कि वो है तभी अभी हूं। नारायण उस राहुल संक्रंतायन उस विद्यानिवास मिश्र जी लिखते हैं कि मैं आज लिख रहा हूं परंतु मेरे इस लेखन में प्रत्येक अश्रुबिंद उस बूढ़े के चरणों में अर्पण करना चाहता हूं जिनके हृदय में वो विश्वास है। मैं भी आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक ग्रंथों का लेखन किया परंतु उस प्रकार के विश्वास को अभी भी स्थान नहीं दे पाया, और मुझे आज ऐसा लगता है कि बाबा विश्वनाथ उनके हाथों को पकड़ के रखा। भले ही हम ऊपर से देखें कि वो कष्ट में है, घाटों में पड़ा है, कोई स्थान नहीं है, परंतु उसको बाबा विश्वनाथ ही रक्षा करे। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवत भक्तजन वो जो वृद्ध इतना कष्ट पा रहे, स्थान नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आंखों से शरीर से लाचार है, हिल नहीं सकते, फिर भी उनके मन में कौन सी भाव है कि वो है। तो फिर हमारे जीवन में क्या नहीं मिला वो तो हम भगवान से बहुत कोसते हैं कि तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये मांगा था, परंतु क्या अनायास मिला कभी भी हमने याद किया उनको कि हमने कभी जाना ही नहीं, हमने कभी मांगा ही नहीं और तुमने ये दिया। कभी ये लिस्ट तो बनाइए कि जो मिला बिन मांगे जो मिला उसके कोई वैल्यू कोई मूल्य हम नहीं देना चाहते, और जो तुच्छ चीज मांगे वो अगर वो नहीं दिया उसमें अगर मेरी भलाई है तो उसको हम दोष देने में लांछन लगाने में कोसने में कोई हम कसर नहीं छोड़ते हैं। जिनके हृदय में वो निश्चय हो जाता है उस रामू बुड्ढे की तरह कि वो है, तो उनके जीवन में कोई भी बाधा कोई भी विपत्ति कोई भी आपत्ति जीवन में आ नहीं सकता है। और आचार्य शंकर के जीवन में वो जो निश्चय निश्चिंत प्रकट करके दिखाया भगवत भक्तजन, इसलिए विश्वनाथ से हम भी वही कहते हैं प्रार्थना करते हैं कि आपने जीवन को विकास करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, इस जीवन को यहां तक लाने में आपकी कृपा अगर न होती तो संभव नहीं था, परंतु हे ईश्वर इतना कृपा और आवश्यक है कि एक निश्चिंत एक निश्चय हो जाए कि आप है और आप अपना है, आप मेरे हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
1: ओम शिवाय नमः। Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Manakkanjara Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. Bhaktos, aaj hum sunenge aur ek Nayanmar Yasant ki kahani, jinka naam hai Manakkanjara. तमिलनाडु के आधुनिकता आनंद तांडवपुरम का पुराना नाम कंचारूर प्रसिद्ध था। इस कंचारूर में वीर सेनानियों के एक प्रतिष्ठित वेलालर या सेनापति कुल में मानकंचारूर का जन्म हुआ। इस वंश के लोग नरेशों के सेनापति रहते रहे हैं। मानकंचारूर भी एक सुयोग्य और सफल सेनानायक थे, परंतु व्यवहार में विनम्रता से एक प्रतिमूर्ति थे। उनका मन संतों और भक्तों की सेवा में आनंद का अनुभव करता था। शिव भक्तों की सेवा करना इनके जीवन का व्रत बन गया था। मानकंचारूर को चिरकाल एक संतान सुख की कामना थी। कई वर्ष बाद प्रभु कृपा से उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। रूप सौंदर्य में अद्वितीय विविध गुणों से युक्त इस कन्या के घने काले दीर्घ केश उसका विशेष आकर्षण थे। जब कन्या युवा हुई तो अपने संबंधियों में से एक योग्य युवक जिनका नाम एना था, उनके साथ मानकंचारूर की युवती का विवाह निश्चय किया गया। विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई थी। विवाह उत्सव का दिवस आ पहुंचा। विवाह मंडप में आमंत्रित लोग बड़ी धूमधाम से आनंद ले रहे थे। प्रभु शिव तभी स्वयं तपस्वी का वेश धारण कर वहां आ पहुंचे। शरीर में पवित्र भस्म का लेप, पुत्राक्ष की मालाएं और शीश पर जटा समूह सज्जित, उनका वेश उत्तर भारत के शैव मार्गी महाविधि शाखाओं के संत जैसा था। मानकंचारूर उसे उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनका उन्होंने खूब आदर सत्कार किया। बड़ूबनी बेटी को भी उनके पास ले गया और आशीर्वाद लेने को कहा। उनकी बेटी के लंबे केश को देखकर मानो तपस्वी आश्चर्यचकित रह गए। महाव्रती मुनिश्रेष्ठ की आंखें नववधु की विशेष केश पर अटक गईं। वे उनकी केश से मुग्ध हो गए। बिना किसी को संबोधित किए हुए मुनि ने विचार व्यक्त किया, श्यामल मेघ के समान सुशोभित यह केश अगर मिल जाए तो हमारी पंचसूत्री पंचवती बनाने के काम आएंगी। साधु की यह इच्छा जानकर मानकंचारूर ने तत्काल अपनी तलवार निकाली और बेटी के सौभाग्य सज्जित केश काट डाले और उन्हें मुनि के कर कमलों में अर्पित कर दिया। लेकिन आश्चर्य, सभी लोगों ने देखा कि महाव्रती अंतर्धान हो गए और आकाश में पार्वती के साथ खड़े शिव स्वयं दर्शन दे रहे थे। कन्या की वेणी का केश यथावत हो गई। प्रथम दृष्टि में इस कथा में कोई अद्भुत त्याग नजर नहीं आता, परंतु ये याद रखें, विवाह मंडप में पधारे मुनिवर की वेशभूषा शैव मार्ग के महाभक्तियों जैसी थी। इस प्रकार के साधु तमिलनाडु के नहीं होते, अपितु इस संप्रदाय विशेष के लोग उत्तर भारत में होते हैं। कन्या के विवाह समारोह में अपने संप्रदाय से बाहर के साधु के आ जाने पर इतना विशेष सत्कार करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु मानकंचारूर ने शिव भक्त के रूप में उनका विशेष आदर सम्मान किया। किसी उत्तर भारतीय साधु द्वारा नववधु की केश मांगने पर उसे तुरंत काट कर दे देना एक तथ्य को उजागर करता है। संत श्रेणी या नायना श्रेणी के ये शैव संत जाति धर्म और क्षेत्र के भेदभाव के ऊपर उठ चुके थे। उनके लिए शिव चिन्ह ही प्रमुख था। उसे धारण करने वाले की जाति धर्म और क्षेत्र से कोई अंतर नहीं पड़ता। पुत्री के केश काटने के साथ ही मानकंचारूर ने मानो अपने समस्त सांसारिक बंधनों को काट फेंका था। स्पष्ट है कि संत अपना सर्वस्व शिव भक्तों की संपत्ति मानते हैं, अतः इनके लिए ऐसी घटनाएं अपनी दिनचर्या जीवन की घटनाओं के समान साधारण सी बात है। इसीलिए मानकाचार्य एक उच्च कोटि के संत हैं। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shaivam.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி இன் ஹிந்தி, பிரசன்டட் பை மகாமண்டலேஸ்வர் சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
5: बैठकर आधा घंटा आसन लगाकर बैठकर ओम नमः शिवाय करने की क्षमता घुटने और कमर में नहीं होती है, तब बुढ़ौती में कर लो जब है। ले जी। हाँ, फिर जवाब क्या देते हैं पता है बूढ़े लोग? महाराज ये शरीर से क्या लेना है, भक्ति थोड़ी शरीर से करनी है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं मन से करनी है। कुर्सी में बैठे तो भी ठीक है, खड़े हो तो भी ठीक है, सोए सोए भी ठीक है, बूढ़ा तो शरीर हुआ है, मन से हम भक्ति कर रहे हैं महाराज। यदि मन से भक्ति कर रहे हो तो शरीर के दर्द कैसे पता चला तुमको? सर से मन से यदि भक्ति कर रहे, मन यदि भगवान के चरण में समर्पित है, लग रहा है मन से भक्ति कर रहे हो, तो कमर का दर्द तुम्हें पता चला कैसे? आखिर मन से ही चलेगा ना। तो भगवान की भक्ति कर रहे हो कि कमर के दर्द का स्मरण कर रहे हो? भगवत स्मरण हो रहा है कि कमर के दर्द स्मरण हो रहा है? कहने तो कह दो भाई, भक्ति तो मन से होता है महाराज। मन चंगा तो कटौती में गंगा बोल देते हो कि नहीं? मन से हो भगवान की भक्ति करना है तो हम भी कह रहे मन से ही करनी चाहिए, लेकिन मन को स्थिर रखने के लिए तन को स्थिर रखना जरूरी है। तन को स्थिर रखने के लिए प्राण को स्थिर रखना जरूरी है। तन और प्राण स्थिर होगा तब फिर मन स्थिर होगा। प्राण चंचल होगा तो तन चंचल होगा, और प्राण और शरीर चंचल होगा तो स्वाभाविक रूप में मन चंचल हो जाएगा। तो ये साधना की बात करते हैं। तो आप यदि मन से भक्ति करो तो ये तो अच्छी बात है, करना तो उसी से ही है, शरीर के हिसाब नहीं लगाओ। बटुर्वागे ही वा यतिरपि जटी वा तदितरो, अथवा इतर चार वर्ण चार आश्रम, तदितर और भी हो सकते हैं, चांडाल आदि वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और शूद्र से भी भिन्न चांडाल। शूद्र तक वैदिक है, हाँ, शूद्र से भी और गया गुजरा है चांडाल। बटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति। कोई भी अवस्था जीवन में आवे तो वो भले आवे, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। भक्ति करने के लिए सन्यासी होना ही चाहिए ये जरूरी नहीं, भक्ति करने के लिए ब्रह्मचारी होना ही चाहिए ये जरूरी नहीं, भक्ति करने के लिए गृहस्थ होना चाहिए जरूरी नहीं, वानप्रस्थ ही होना चाहिए जरूरी नहीं है, मनुष्य ही होना चाहिए यह जरूरी नहीं, पहले भी कह दिया है। नरो वा यह कश्चित, चाहे जो कोई भी हो, भवतु भवा, ये शरीर आदि की अवस्था जो कुछ भी होता है होने दो, उससे हमको कुछ लेना नहीं देना नहीं। बूढ़ा होता है होने दो, रोगी होता है होने दो, शरीर रोगी होता है होने दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कश्चित भवतु भव किम तेन भवति, इन शरीर से क्या लेना देना है, इन वर्ण से क्या लेना देना है, इन आश्रमों से क्या लेना देना है। यदि यम हृत पद्मम, यदि किसी का हृदय रूपी कमल, यदि यम हृत पद्म, यह मेरा हृदय कमल या मेरा हृदय, यदि यम हृत पद्मम यदि भवत अधीनम पशुपते, हे पशुपते यम हृत पद्मम यदि भवत अधीनम, आपके अधीन हो गया तो मेरा जो हृदय कमल है वो आपके अधीन हो गया तो शरीर बूढ़ा हो तो कोई मतलब नहीं, सन्यासी हो तो कोई मतलब नहीं, न हो तो कोई मतलब नहीं, वानप्रस्थी हो तो ठीक है, न हो तो भी ठीक है, ब्रह्मचारी हो ठीक है, गृहस्थ हो तो ठीक है, न हो तो भी ठीक है, जो कुछ भी हो शरीर, क्योंकि वर्ण आश्रम का विधान अन्नमय कोष पर आधारित है। ब्राह्मण ये जो कहते हैं वह स्थूल शरीर पर आधारित है, ब्राह्मणत्व सूक्ष्म शरीर में ब्राह्मणत्व नहीं रहता। वेद ने ब्राह्मण ये संज्ञा की है किसी को, वह स्थूल शरीर को ही ब्राह्मण कहा है, सूक्ष्म शरीर को ब्राह्मण नहीं कहा है। वेद ने क्षत्रिय कहा है तो स्थूल शरीर को ही क्षत्रिय संज्ञा दी है वेद ने, सूक्ष्म शरीर को क्षत्रिय नहीं कहा है। वेद ने यदि किसी को वैश्य कहा है तो भी स्थूल शरीर को वैश्य कहा है, सूक्ष्म शरीर को नहीं। वेद ने यदि शूद्र कहा है, वेद ने यदि चांडाल कहा है तो स्थूल शरीर में ही वर्ण आश्रम का विधान है, सूक्ष्म शरीर में वर्ण आश्रम का विधान नहीं है। समझे ना, चांडाल स्थूल शरीर हो सकता है लेकिन हो सकता है कि उसका हृदय शुद्ध हो। ब्राह्मण स्थूल शरीर का हो सकता है कि उसका हृदय परम चांडाल से भी गया गुजरा हो सकता है। जैसे उदाहरण मैंने कल दिया था, रावण तो ब्राह्मण का कुल का है ना, वो आखिर पौलस्त है, पुलह ऋषि का नाती है रावण, शरीर तो ब्राह्मण खानदान का है, क्या फर्क पड़ा, लेकिन उसमें असुरपना आया कहां से, असुर का बेटा तो है ही नहीं रावण, असुर का बेटा तो था नहीं ना, बोलो तो असुरपना आया कहां से। आसुरी भाव अंतकरण की दोषता से उसमें आसुरी भाव आ गया, इसलिए अंतकरण अशुद्ध के चलते उसमें आसुर भाव आ गया है, लेकिन उसका हृदय यदि अंतकरण यदि शुद्ध होता, भगवत अधीन होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे खानदान से तो प्रहलाद का शरीर असुर का बेटा है, शरीर के दृष्टि से वह असुर है वो, लेकिन हृदय इतना शुद्ध हो गया कि वह भगवत अधीन हो गया। किसका हृदय, प्रहलाद का हृदय भगवत अधीन हो गया, नारद का हृदय भगवत अधीन हो गया, ध्रुव का हृदय भगवत अधीन हो गया, हमारा हृदय विषय अधीन हो गया, भगवत अधीन नहीं हो रहा है, तो हम ब्राह्मण भी हैं तो विषय अधीन हो गया हमारा हृदय, इसलिए भक्त नहीं हो पाए, वानप्रस्थी भी हो गए तो हमारा हृदय विषय अधीन हो गया इसलिए भक्त नहीं हो पाए, वानप्रस्थी तो हो गए, शरीर से वानप्रस्थी तो हो गए, हृदय विषयाधीन हो गया, शरीर से सन्यासी तो हो गए लेकिन हृदय विषयाधीन हो गया, शरीर से गृहस्थ तो हो गए लेकिन हृदय विषयाधीन हो गया, शरीर से ब्रह्मचारी तो है लेकिन हृदय विषयाधीन हो गया। तो होना क्या चाहिए था, भगवत अधीन होना चाहिए था, हो गया विषयाधीन। तब क्या हुआ, ध्याय तो विषयान पुंस्त संगत से वायुर्गंधा निवासया हरति तदस्य प्रज्ञाम वायुर्गंधा निवासया। देखो बाहर के विषय इस तरह चित्त के वृत्ति को निकाल कर ले गए, विषयों में खींच लिया, जैसे फूल में रहने वाला सुगंधि को वायु फूल में से निकालकर बाहर ले जाता है, उसी तरह विषय क्या करने लग गए, हृदय को, हृदय के भाव को हृदय से निकालकर बाहर ले गए। देख लो तो फिर वो विषय में भटकने लग गए। वो अब होना चाहिए था हृदय को भगवान के चरण में पहुंचावे। तो यही कहते हैं शंकराचार्य जी, बटुर्वाग्ये ही वा यतिरपि जटीवा तदितरो नरो वा कश्चित भवती भवतु। जो कुछ भी हो शरीर से कोई मतलब नहीं उससे, भव किम तेन भवती, उससे क्या प्रयोजन है, कुछ नहीं।

परोक्ष नहीं है। हमने एक दिन कहा था ना, तब नीचे कथा में सुनाया था, कहां सुनाया था, यहीं सुनाया कहां सुनाया भूल गए, बूढ़े हो गए। एक बंदर की और मगरमच्छ की कहानी सुनाया था ना, यहीं सुनाया था। एक मगरमच्छ ने कहा कि नदी के उस किनारे बहुत बढ़िया जामुन का पेड़ है, बहुत बढ़िया फल लगा है। बंदर को कहा, ये मित्र हम दोनों मित्रता कर लेते हैं, मित्र भी शत्रु बनता है, मित्र कैसे शत्रुता करता है, ये उदाहरण। बोले वहां बढ़िया है तो हम ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं, तो तुम पेड़ में चढ़ सकते हो, और तुम ये बड़ा नदी का पार्ट है वो पार नहीं कर सकते हो, हम पार कर सकते हैं, दोनों मित्रता कर लेते हैं। तुम आओ मेरे पीठ में चढ़ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगा, उसके बाद तुम पेड़ में चढ़ना, फल भी तोड़ना, आप भी खाना हमको भी खिलाना, मित्र होने का फायदा यही तो है, आओ महाराज। बंदर ने विश्वास कर लिया कि अच्छा तुम अच्छी बात कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, हम तुमको फल तोड़ के भी दे देंगे, हम भी खाएंगे। वो नीचे उतर गया और मगरमच्छ के पीठ में बैठ गया। बीच धार में पहुंचने के बाद मगरमच्छ ने विचार किया, अब ये न बंदर न उछल के उधर जा पाएगा, न उछल के इधर आ पाएगा, ठीक सेंटर है, अब ये फंस गया। मगरमच्छ ने सिर उठाया और बंदर को खाने की कोशिश करने लग गया। बंदर ने कहा कि अई क्या बात है। बोले महाराज मित्र हमको भूख लगी है। तो भूख लगी है तो क्या करोगे। बोले तुम्हारा जो हृदय है ना उसको खाने की इच्छा हो रही है। बंदर ने कहा कि अच्छा हृदय के खाने की इच्छा हो गई, ये बात तुमको पहले ही कह देनी चाहिए थी, यदि पहले कहा होता तो वो हृदय में तुमको वहीं दे देता, अब तो हम इधर जब आने लगे तो हृदय को हमने वही पेड़ में सुरक्षित रख दिया है, इस समय हृदय नहीं है। देखो ना हृदय होता तो पेड़ एक पेड़ से उस पेड़ में हम ऐसे उछल पाते, डर जाते हैं। हृदय होता तो डर लगता कि नहीं, तुमने देखा ना, हमको हृदय की जरूरत नहीं है, बिना हृदय के हमारा काम चल जाता, इसलिए इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस, बचपन में हमको ये कहा करते थे हमारी दादी नानी। तो हम कहते थे कि इतना इस पेड़ से उस पेड़, उसको डर नहीं लगता है, पेड़ के एक छोटे से शाखा में चल पड़ता है, डर नहीं लगता है। तो हमको सुनाती थी उसका हृदय नहीं होता है, अब बंदर का हृदय नहीं होता है, हम उसका उस समय तो मान गए, क्योंकि बचपन में तो दादी नानी जो कहे वही मानना पड़ता है कि नहीं है? अब हृदय ही नहीं होगा तो वो जी कैसे रहा है, अगर जी रहा है तो हृदय के कारण ही जी रहा है। तो उस बंदर ने कह दिया कि भाई मेरा हृदय यहां नहीं, वो पेड़ में लगा हुआ है, तुम्हें हृदय चाहिए तो चलो उधर ले चलो, हम निकाल के दे देंगे, हमको तो जरूरत है ही नहीं। मगरमच्छ फिर आ गया किनारे में, अच्छा तो लाए किनारे जाओ मित्र हृदय ला के दे दो। तो बांदर ने एक लात मारी मगरमच्छ को और जाके ठेंगा दिखा दिया, ले खा हृदय। तो हृदय की बात है। तदीयमृत पद्मम यदि भवत अधीनम, हे पशुपति, इसलिए कहने का मतलब हृदय परोक्ष नहीं है, हृदय प्रत्यक्ष है, इसलिए ईयम हृदय भीरत पद्मम हृदय कमल, यदि यदि कह रहे हैं, यदि कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि भगवान के चरण में हृदय लगना बहुत दुर्लभ है, कठिन है। इस कठिनता को दुर्लभता को बताने के लिए यहां यदि कहा, दुर्लभ है, कोई कोई व्यक्ति का हृदय भगवान के चरण में समर्पित हो सकता है, सभी का यदि हृदय सहज में आसान से भगवत

0: चरण के या भगवत आधीन हो जाता तो शंकराचार्य जी यदि एक कंडीशन न रखते, शर्त न रखते, यदि हो गया तो होना मुश्किल है, असंभव नहीं है। यदि ये भी बात ध्यान रखना, भगवत चरणाधीन होना असंभव नहीं, संभव तो है। प्रहलाद का संभव हुआ, ध्रुव का संभव हुआ, नारद का संभव हुआ, नचिकेता का संभव हुआ है, मीरा का संभव हुआ, अनेक उदाहरण है। शंकराचार्य जी खुद का संभव हुआ, असंभव नहीं है, कठिन जरूर है। हाँ, इसी कठिनता को संकेत करने के लिए शंकराचार्य जी ने यहां यदि ये शर्त रखा है। अपने आप नहीं होगा, आपको लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। हमसे पूछते हैं, महाराज जब कभी ध्यान में बैठते हैं थोड़ी देर तो ध्यान लग जाता है, थोड़ी देर के बाद फिर मन कहां जाता है, कहां जाता है, हट जाता है, क्या करें महाराज? तो हम उनको सुनाते हैं कि तुम छोटे बच्चों को घर में खिलाया है कि नहीं, परवरिश की है कि नहीं? तो तुम्हारा बेटा छोटा था या तुम्हारा नाती, तुम्हारा पोता छोटा था, छोटे थे, तो उनको दूध खिला फिला के उसको सुला दिया और थोड़ी देर के बाद वह खिसकते खिसकते किनारे में जाने लग गया। एक तरफ जहां सुलाया था वहां से वह खिसक कर हट के वह एक तरफ चल पड़ा, बिस्तरा छोड़कर जमीन में जाने लगा। तब तुम क्या करते हो, बोलो क्या करते हो? जाने देते हो कि फिर पकड़ के लाकर वहीं रखते हो? हैं? क्या करते हो? क्या किया था, बोलो ना। अभी भी कर रहे होंगे, हैं? अभी भी कर रहे हो ना। अपने बेटे को भले ही ना करते हो, बेटे के बेटे को, पोतों को तो कर रहे हो ना अभी भी। प्राय करके हमारी माताएं अमेरिका जाते हैं, कब मालूम है? इनको वीजा मिलता है अमेरिका कब पता है? या बेटी को बेटा होना हो या बहू को बेटा होना हो, तब फिर इन माताओं को वीजा तुरंत मिल जाता है। हाँ, वो सब वहां से मेडिकल सबमिट करें, वो सब प्रमाण करें तो इनको वीजा मिल ही जाएगा। और नहीं, यदि अपने तरफ से वीजा अप्लाई करें तो किसी हालत में नहीं मिलेगा। अब वहां क्यों जाते हो? इसी के लिए ना जाते हो? हम पूछते हैं कि क्यों जा रहे हो अमेरिका? महाराज मेरे बहू को बेटा आने वाला है, आने वाला है तो आने दो, तुम क्यों जाती हो? बोलो, और क्यों जाते हैं? उसी के लिए जाते हैं, उन्हीं को संभालना है। संभाल लिया, तुम्हारा मन तो संभाला नहीं जा रहा और बच्चों को संभालने जा रहे हो, हैं? यहां तुम्हारा हृदय संभाला नहीं जा रहा है तुमसे, अब उनके बच्चों को संभालने जा रहे हो, बड़ा भारी ले हो जी। हाँ, तो करते क्या हो? वो खिसकते खिसकते किनारे में जाने लग गया, बिस्तरा छोड़ दिया, खाट में सुलाया, किनारे में आ गया, फिर क्या करते? फिर पकड़ के वहां लाते हो, फिर किनारे में आता, फिर पकड़ के वहीं सुलाते हो। इसी तरह यदि ध्यान साधना अभ्यास काल में तुम्हारा मन बार बार इधर उधर जाता है तो गया करके छोड़ना नहीं, फिर पकड़ के लाओ। जब तुमको पता चला कि यह निकल गया, फिर लाओ। फिर जब पता चला तो पता चला कि लाओ, पता ना चले तो जहां जाए जाए, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है, बिना पता चले गया। लेकिन तुमको पता चल गया तो फिर ये मन एक जगह बच रहता नहीं, जाने दो करके छोड़ते हो। ये पोता एक जगह सोता नहीं, जाने दो, जहां जाता है जाए, छोड़ते हो। तुम्हें पता है ना कि ये यदि नीचे इधर उधर चला गया तो इसको चोट लगेगा, नुकसान होगा, है? तुम्हें पता है ना, इसीलिए मन भी इधर उधर विषय में लग गया तो तुम फिर लाओ। अभ्यास काल में तो यही ही करना पड़ेगा। तो हम यही समझाते हाँ कि मन तो एक भूत है, हम हमेशा ही समझाते हैं वो है, मन तो भूत है, इसको कुछ न कुछ काम देना पड़ता, इतना चंचल है, इतना चंचल है। उपमा दी गई है किससे, बंदर से, कौन से बंदर से, भांग पिलाया हुआ बंदर से। बंदर भी कैसा है, भांग पिया हुआ बंदर जैसा है। एक तो बंदर उसमें भी भांग पिए, बोलो क्या चंचल होगा वो, तुम्हारा मन ठीक इसी तरह का है। कोई ना कोई आलम्बन चाहिए, कोई ना कोई विषय चाहिए, कोई ना कोई काम चाहिए। तो फिर संतों ने उस बात को जानते हुए कि ये काम के बिना रहता नहीं, इसीलिए इसको जो काम करानी हो करा लो, और जब तुम्हें आराम करनी हो, ये भगवान के नाम ही काम है, ले। तो हम कहते हैं ना, हमने एक दृष्टांत अक्सर हम दिया करते हैं, लोग जब ये कहते हैं कि मन चंचल है, मन एक जगह नहीं रहता, मन भटकता रहता है, उसके लिए हम एक दृष्टांत दिया थे, कह देते हैं कि नाम का बांस गाड़ दो, बांबो है, भगवान का कोई प्रिय नाम का बांबू गाड़ दो, बांस गाड़ दो, और मन को कहो बेटा जब तक मैं दूसरा काम न बताऊं तब तक इसी में ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ओम नमः शिवाय, ऊपर चढ़ गया ना, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है। तो एक को कहा, हमने कहा ओम नमः शिवाय करो, बोले हम तो अन्यथा नहीं लेना, वो हम तो जय नहीं महाराज, ओम नमः शिवाय कैसे करें। दूसरे ने कहा हम वैष्णव है, ओम नमः शिवाय कैसे करें है? तो बोले श्री कृष्ण शरणम कहो, और क्या ओम हरिहंतारम कहो, क्या फर्क पड़ता है। जिसको परमात्मा मान रहे हो उसी का नाम सतत, उसको को मन को, ये बम्बो है इसी में चढ़ उतर, यही रिपीट कर, यही तेरा काम है, तो मन उसी में लगा रहेगा। भटक गया फिर लगाओ उसमें, भटक गया फिर लगाओ, भटक गया फिर लगाओ, इसी को तो साधना कहते हैं भाई। बटुर्वागे ही वा यतिरपि जटी वा यदि तरो नरो वा यह कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति यदि अमृत पद्मं यदि भवद अधीनं पशुपते त्वदीयस्त्वं शंभो भवसी भवभारम च वहसी। क्या सुंदर शब्द कह दिया, जिसका मन आपके अधीन हो जाता है। देखो ये शब्द यहां कितना सुंदर प्रयोग किया है शंकर, जिसका मन आपके अधीन हो जाता है आप उसके अधीन हो जाते हो। ये देखो, जिसका मन आपके अधीन हो गया आप उसी के अधीन हो गए। तो क्या करते हैं, किसी ने कहा होगा कि ये क्या बात करते हो कि हमेशा मन भगवान के चरण में लगाए रखो, मन भगवान के चरण में लगे रहेगा तो हम अपने जीवन के लिए योगक्षेम के लिए काम कैसे करें है? समझ रहे कि नहीं, गोपियों का मन भगवान में लग गया था, ब्रजबालाओं का मन भगवान में लग गया था, तब न वो गाय का दूध पूरा दू पावे, गाय को दूने के लिए बाल्टी लेकर निकले, उसके मन में कृष्ण आ गया, कोई खेल खेल में लग गए, वो ले जी भावना में वो कृष्ण आ गए, तो गाय दूना है वो भूल गई। हमेशा चित्तवृत्ति भगवान में लगा है तो विषय में तो लगा ही नहीं, तो व्यवहार ही बड़ा गड़बड़ हो रहा था, हाँ, बहुत गड़बड़ हो रहा था। दाल में नमक डालने की जगह चीनी डाल दिया, ले जी है, दाल में डालने की जगह भात में डाल दिया, वृत्ति ठीक है ही नहीं, क्या करोगे, मन तो उधर लगा हुआ है। और ये जो भोजन पकाने के जो काम हो रहा है ये सब मन उधर लगने से पहले का जो अभ्यास है उसी से हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, विचार पूर्वक तो हो नहीं रहा है। बड़े दुखी हो गए, रोज उनके पति डांटे, तेरा मन कहां चला गया था, तेरा ध्यान कहां चला गया था, गोपी कहे कृष्ण में चला गया था, तो उसका पति कहे कि जाओ उसी के पास। एक माताजी कहने लगी वो हमेशा सत्संग में आवे है, तो घर का काम अव्यवस्थित हो गया, पति को ऑफिस जाने के टाइम में टिफिन तैयार ना होवे, चाय और ब्रेकफास्ट तैयार ना होवे, तुझे सत्संग ही सत्संग लगते, जा महात्मा के पीछे जा, छोड़ दे घर। तो हमसे आके कहा, मेरा पति ने ऐसा कहा, क्या करूं महाराज, अब हम क्या कहेंगे, बोलो चल कहे है, बोलो चल कहे। यदि हम कहेंगे कि ठीक है तू आ जा, तो पति तो खुश हो जाएगा, वाह महात्मा ने बड़े भारी हमारी समस्या का समाधान कर लिया, मुसीबत तो अपने ले लिया जिम्मा है। अब उसी के लिए जो मुसीबत हो रही थी, तो फिर वो हमको आ जा कहेंगे तो फिर हमारे मुसीबत नहीं होगी। हमने कहा छोड़ना नहीं बेटा, छोड़ना नहीं। बोले फिर तो सत्संग छोड़, उसने तो चुनौती दे दी, या तो घर छोड़ या फिर सत्संग छोड़। मैं क्या करूं महाराज, अब आजकल होता तो मैं कह देता इंटरनेट सुन, प्रेमपुरी आश्रम का वेबसाइट। आजकल होता तो मैं कह देता घर मत छोड़, उसके सिर में चढ़ के बैठ।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: इसके पूर्व भगवान जो निर्गुण निर्विशेष हैं, जैसा उपनिषद में हम लोग सुनते आए हैं, देवाव ब्रह्मणे रूपे, जो परमात्मा का दो रूप है, मूर्तंच अमूर्तंच। अमूर्त तो निर्गुण निराकार निर्विशेष है, जो कि मन वाणी का विषय नहीं है, लक्षणा के द्वारा अतद व्यावृत्या जिसको निषेध मुख कहते हैं उसके द्वारा समझा समझाया जाता है, और दूसरा है विधि मुख का विषय। परंतु जो मूर्त रूप है उसके भी दो हैं, सगुण साकार और सगुण निराकार। तो सगुण साकार स्वरूप का यहां प्रतिपादन करने जा रहे हैं कि भगवान ने किस प्रकार से अपनी दिव्य लीलाओं को किया ताकि भक्तों के मन वाणी का विषय बन सके। 17 श्लोक के पहले बताया था कि अज्ञान का अध्यारोप, मायावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव और मायावच्छिन्न चैतन्य का नाम ईश्वर, और दोनों के अधिष्ठान को ब्रह्म कहते हैं या अधिष्ठान तत्व भी कहते हैं। यह माया और अंतःकरण दो उपाधियां हैं, परंतु अन्य आचार्य के मत से माया में अविद्या में थोड़ा फर्क किया है। शुद्ध सत्व प्रधान का नाम है माया, मलिन सत्व प्रधान का नाम अविद्या है। तो मायोपाधिक ईश्वर, अविद्योपाधिक जीव, ऐसी भी परिभाषा है। जो अविद्योपाधिक है वह तो जीव है और मायोपाधिक ईश्वर है। परंतु जो भामति प्रस्थान के आचार्य वाचस्पति मिश्र है, इनका बहुत ही संक्षेप में और तर्क संगत अनुभूति पूर्व लक्षण है, सीधा मायावच्छिन्न चैतन्य का नाम ईश्वर, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव है, जो अनुभव में भी आता है। अंतःकरण छोटा होने से हमारी उपाधि छोटी है, सामर्थ्य छोटा है। जैसे कि गंगा जी में नावें चल सकती है, मनुष्य तैर सकता है, परंतु एक घड़े जल में नाव नहीं चल सकती, न कोई तैर सकता है। पर जलत्वेन दोनों जल एक ही है, जल में अंतर नहीं, बस उपाधि छोटी है। घट उपाधि छोटी है, नदी की उपाधि बड़ी है। ऐसे ईश्वर की माया उपाधि बड़ी है, जीव का अंतःकरण उपाधि छोटा है, इसलिए इसमें थोड़ा सामर्थ्य है। पर यदि घड़े के जल को नदी में छोड़ दें तो फिर आप यही जल है इस प्रकार से अलग करके नहीं समझ सकते। इसी प्रकार से जीव का विलय, जो उपाधियां हैं, उपाधियों कारण से जीव संज्ञा हुई, उपाधियों के रहने से ही सारी समस्या है, उपाधियों के विलय से ही निरुपाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसी निर्गुण निर्विशेष में जब माया का अध्यारोप किया तो वह ईश्वर कहलाया, और ईश्वर बनने के बाद जगत का वह पालन करता है, संहार करता है, विस्तार करता है। तो पहले तो माया का आरोप किया, बाद में कामना के नाश के लीला को बतलाया, और 16वें श्लोक में तांडव नृत्य का वर्णन किया था कि भगवान शंकर ने तांडव नृत्य। तांडव शब्द की निष्पत्ति तदि आघाते धातु से होती है। ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा अपने मन के साथ, शरीर के साथ, और भी आगे बढ़ो तो पुत्र, मित्र, पति, पत्नी, मकान, दुकान सबसे चिपका हुआ है। इतना चिपक गया है इनसे अलग करके नहीं समझता है। तो भगवान जब आघात करते हैं ना, तो जरा इनसे ये जो चिपका हुआ है अलगाव होता है। हालांकि जो ब्रह्म का स्वरूप है वही जीव का भी है, जीवो ब्रह्म ही बना पर रहा, परंतु हम लोगों ने जो देहाध्यास कर लिया, इस प्रकार से अपने मकान से चिपक जाते हैं कि एक क्षण के लिए भी अलग होना मुश्किल पड़ता है। यदि मान लो यहां से हरिद्वार गए तो हरिद्वार मोबाइल साथ में होता है ना आजकल, वहां तो गए कि आराम से शांति से भजन करेंगे, परंतु जैसे ही गंगा जी में गोता लगाकर और बैठे माला घुमाने, तुरंत फोन आ गया, जल्दी आ जाओ, बड़ा जो है आप बिना काम बिगड़ रहा है। पत्नी ने पूछा कि आपने गंगा स्नान कर लिया? आपने कहा बिल्कुल ठीक ठाक कर लिया। अब पत्नी बोली क्या करे? बोली भगवान का जप कर रहा। बोले वो जप तो यहां भी हो जाएगा, गंगा स्नान हो गया, सीधे आ जाओ। अब बताओ, आराम से बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, मन भी लगा था, परंतु अब इधर से फोन गया तो आना ही पड़ेगा, और मोबाइल नहीं होता तो आराम से 10-20 दिन रहते शांति से। ये जो अत्याधुनिक आविष्कार हैं, ये जितना सुविधाजनक है उतना दुविधाजनक भी है, उतना ही संशय और समस्या खड़ा करते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने बड़ा इस पर विचार किया कि जो अत्याधुनिक विज्ञान है इसके आविष्कार करने से क्या फायदा और क्या नुकसान है। योग दर्शन में बड़ा मूल्यांकन किया महर्षि पतंजलि जी के जमाने में, मतलब लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है। तो उस समय सभी ऋषियों को आमंत्रित किया और विचार किया कि भाई अत्याधुनिक इस विज्ञान के आविष्कार से समाज के समक्ष रखने से क्या नुकसान होगा। तो बताया कि समाधो अंतराय वित्थाने सिद्धया, योग दर्शन में ये बात लिखी हुई है, समाधो अंतराय वित्थाने सिद्धया। समाधि का तो अंतराय है, अंतराय बोलते विघ्न को, बाधा, और अभ्युत्थान में सिद्धि है। व्यवहारिक जगत के लिए ये तो अच्छी बात है, जैसे आपको हरिद्वार जाने में बहुत समय लगता है, विमान बैठे 2 घंटा में पहुंच गए आराम से, या जो है मोबाइल से तत्काल संपर्क हो गया, बात हो गया, यहां तक तो ठीक है, परंतु आपको व्यवहारिक जगत से हट करके भगवान में मन लगाना हो, समाधि में बैठना हो, भजन करना हो, उस समय ही बाधक बन जाता है। इसलिए कह दिया समाधो अंतराय, ये भजन ध्यान समाधि सत्संग का बड़ा भारी अंतराय है, विघ्न है, और शांति का भी अंतराय है। व्यवहारिक जगत में चाहे कितना भी भौतिक संसाधन सम लाभ उठा लें, परंतु पारमार्थिक जो सत्ता है, आध्यात्मिक जगत है, उसका किसी भी अंश में इसका उपयोग नहीं है। प्राचीन काल में लोग तीर्थाटन करते थे, तीर्थाटन से बड़ी शांति महसूस होती थी, पूरा उनका अंतःकरण परिवर्तित हो जाता था, जीवन बदल जाता था। पर आजकल हजार बार बद्रीनाथ दर्शन कर क्या कोई नहीं बदलाव, कुछ नहीं, जस का तस रहते, क्योंकि जब आप यहां से पैदल चल के जाएंगे, पहुंचने में जब महीना 2 महीना लगेगा, तो एक तो शारीरिक तपस्या होती है, ऐन्द्रिक तपस्या होती है, तपस्या से कलमश क्षीण होता है, जो जन्मांतर के पाप है वे नष्ट होते हैं। जैसे कोई मूर्ति धातु की बनी हो, सोने चांदी की, वह दूषित हो जाती है तो अग्नि में तपाकर शुद्ध करते हैं। घृत भी जब उसमें कोई दुर्गंधी आता है तो लोग अग्नि में तपाकर शुद्ध कर लेते हैं, ऐसे ही तपसा किल्बिषम हन्ति, भगवान शंकराचार्य कहते हैं तपसा किल्बिषम हन्ति, तपस्या से जन्मांतरीय और ऐहिक, चाहे पूर्व जन्म का पाप हो या इस जन्म का किल्बिष हो, वे नष्ट होते हैं। जब आप यहां से पैदल चलेंगे तो आपको हर तरह की समस्या का मतलब की समस्या से जूझना पड़ेगा, यहां की तरह व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो अपने आप भगवान का सुमिरन होगा। आजकल के महीने में जो गंगा स्नान करते हैं प्रयागराज या हरिद्वार, स्वभाव से भगवान याद आते हैं, गर्मी में एक बार भी नहीं आते हैं, पर जब डुबकी लगाता है ना तो नास्तिक से नास्तिक जो भी राम राम श्याम श्याम चिल्लाएगा, शिव शिव पुकारता है, महादेव, जब ठंडी लगती है जब पीड़ा होती है तो अपने आप जोर से सब चिल्लाते हैं। प्रयागराज जब जाना माघ महीने में तो सब जोर से लेते, उससे जो तपस्या से उपाप जब भगते हैं ना, तो देखो जब हम पैदल जाएंगे तो पग पग में भगवान के नाम का सुमिरन होगा, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। और यदि हम विमान से 2 घंटे पहुंच जाए बद्रीनाथ, तो फिर न भगवान का सुमिरन होता है, न वैराग्य होता है, न विवेक जगता है, बस गए दर्शन की आ गए, तो जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो पाता है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो भौतिक संसाधन विकास है, इनका आपके सुख शांति परमात्मा के प्राप्ति में जरा भी उपयोग नहीं है। हाँ, व्यवहारिक जगत में बड़ा भारी उपयोग है, इस बात को प्राचीन मनुष्यों ने भी स्वीकारा है कि समाधौ अंतराय वित्थाने सिद्ध्या, वित्थान मतलब व्यवहारिक जगत में उपलब्धियां बहुत ही कामयाब है। तो यहां पर भी जब आघात होता है, आघात बोलते हैं चोट, किसी का भी जीवन तभी उज्जवल होता है जब जीवन में आघात ठेस लगता है। वाल्मीकि जी को भी आघात लगा, और आघात दूसरे से नहीं लगा, उन्हीं के परिवार से। वाल्मीकि जी का कृत्य था प्रातः काल उठना, धनुष बाण लेके जंगल में जाना, प्राणियों का शिकार करना, और रास्ते में कोई मिले तो बस लूटपाट करके महीनों दिन फिर शिकार करने की जरूरत नहीं। संजोग बस एक दिन बाबा ये टकराए, वे थे नारद जी। नारद जी ने कहा भाई तो लूटपाट करता है, इतना हत्या करता है, इसके पाप को के फल को विचार किया? बोला कि सो तो विचार नहीं किया। बोले कि तू इतना जो लूटपाट चोरी हत्या करके परिवार का पोषण करता है, ये तेरे परिवार वाले जो पत्नी है बच्चे हैं इस पाप के फल के भागी बनेंगे? बोला वो तो मुझे पता नहीं। बोले तू पूछ क्या? वाल्मीकि ने कहा बहुत होशियार हो, मैं पूछने जाऊंगा आप तब तक चलते बनोगे। नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि तू मुझे पेड़ से बांध दे, जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं टस से मस नहीं होऊंगा। वाल्मीकि गए, घर वालों से पूछा, पहले पत्नी से पूछा, फिर बच्चों से पूछा, सबसे पूछा कि मैं जो इतनी हिंसा करता हूँ, चोरी करता हूँ, निरीह निरीह प्राणियों का वध करता हूँ, इससे जो पाप हो रहा है, इस पाप के फल को आप लोग भोगेंगे कि नहीं? कुछ इसमें भी हिस्सा आप लोगों का होगा कि नहीं? पत्नी ने कहा कि देखो तुम वो भरता पति, चाहे तुम चोरी करके भरण पोषण करो या कमा करके, हम तुम्हारे पाप में भागी नहीं बनने वाले। बच्चे भी यही जवाब दिए। वाल्मीकि को बड़ा वैराग्य हुआ, आघात लगा, चोट लगा, जिस पर भरोसा था कि हमारे अपने हैं, हमें हमेशा साथ देंगे, कभी हमारे से अलग नहीं होंगे, जब उन्होंने सीधा जवाब दिया कि हम तुम्हारे पाप के हिस्सेदार नहीं बनने वाले, तत्काल आकर चरणों में गिर पड़े। और नारद जी ने बस राम मंत्र का उपदेश दिया। वे भी बेचारे जीवन में तो राम नाम कभी जपे नहीं, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जैसे जो इस्कोन वाले हैं ना प्रारंभ में, इनको जब कृष्ण कहते हैं ते कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कृष्ण को जल्दी नहीं आता। दो चार वर्ष, दो चार दिन नहीं, वो तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहते कहते फिर कृष्ण कृष्ण हो जाता है उच्चारण। यह टेढ़ा है ना कृष्ण शब्द, हम लोग तो आराम से बोल लेते हैं कृष्ण, परंतु वे बेचारे कृष्ण कहते हैं पहले। ऐसे वाल्मीकि जी को जब आघात लगा तो जो परिवार से चिपके थे या जो देहाध्यास था और समाप्त तो बिखर गया, तो जीव जो अहंता ममता कर लेता है शरीर के साथ, शरीर के संबंधियों के साथ, और इस पर जब तक आघात नहीं लगता है तब तक वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य ही भगवत प्राप्ति का प्रथम सोपान है, चाहे किसी का जीवन हो। आप देख लीजिए, चाहे तुलसीदास जी हो या सूरदास हो, कोई महापुरुष हो, जब तक आघात नहीं लगता है तब तक वैराग उत्पन्न नहीं होता है, और बिना वैराग के विवेक नहीं जगता है। चाहे आप वेदांत के रास्ते से चलें या भक्ति से या योग से, वेदांत भी कहता है कि साधन चतुष्टय प्रथम सोपान है, योग दर्शन भी कहता यम नियम प्रथम सोपान है। यम नियम भी वही बात है जो विवेक वैराग्य है। साधन चतुष्ट में जब आघात लगता है तो वैराग्य होगा, वैराग्य के बाद विवेक करते हैं। विवेक मतलब नित्यानित्य का विवेचन, क्या नित्य क्या अनित्य है, ये जो संसार है जो शरीर है ये नित्य है कि अनित्य है। जब आप विचार करते हैं तो विचार करने के बाद फिर ज्ञान का अवतरण होता है। यहां पर 16वें श्लोक में तांडव नृत्य जब भगवान शंकर करते हैं तो प्राणियों को आघात लगता है। जब आघात को आप हजम कर जाएं तब जाकर के ज्ञान में एक तरह से निखार आता है। ज्ञान तो सबके अंदर है पर वह ज्ञान है वृत्त्यात्मक। वृत्त्यात्मक को सुखाचार्य जी कहते हैं आपात रमणीय ज्ञान है। ये आपात रमणीय का अर्थ होता है बिना विचारा हुआ ज्ञान है, अविचारित ज्ञान है। ये जो अविचारित ज्ञान है, आपात रमणीय जो ज्ञान है, जिससे कि अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि हो रही है, इस दुख में संसार में सुखत्व प्रकारिका बुद्धि हो रही है, और इसी ज्ञान को आपात रमणीय कहा है। और जैसे ही विवेक जगता है तो आप विवेचन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि वास्तव में ये ज्ञान सत्य है या वह सत्य है। महाराज भोज को जब स्वप्न हुआ, स्वप्न में देखते हैं कि मैं एक भिखारी बन गया हूं, दर दर भटक रहा हूं, लोग मुझे भिक्षा नहीं दे रहे हैं। संजोग से भिक्षा मिल भी गई तो एक सांड आता है और सांड आक्रमण करके उस हड़िया को गिरा देता है। अब बेचारे जोर से चिल्लाए, कई दिन के भूखे, मुश्किल से भिक्षा मिली, वो भी सांड जो हड़िया गिराकर खाने लग गया, भूख के मारे चिल्लाए, नींद खुल गई। प्रातः कालीन सभा लगी तो सभा के समक्ष सभी विद्वानों से एक ही सवाल करते थे, यह सत्य की वह सत्य। अंत में अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया कि न यह सत्य न वह सत्य, स्वाप्निक प्रपंच जैसे मिथ्या है वैसे जागृत प्रपंच भी मिथ्या है। ये मिथ्या शब्द से जरा घबराना नहीं है आप लोग, मिथ्या शब्द का जो है ना झूठा नहीं होता है, मिथ्या में झूठा में अंतर है। जो सीपी में चांदी दिखाई दे रहा वह और जो प्रत्यक्ष चांदी है, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। एक जगह कहीं बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में द्वैतवादी अद्वैतवादी को हरा दिया, परंतु राजा बड़ा विवेकी था। राजा ने कहा कि हमारा पक्ष भले हार गया परंतु अब मुझे कोई निर्णय करना चाहिए, जब हार गए तो राजा ने कहा कि आपने अपने तर्क बल से, बुद्धि बल से द्वैत मत को सिद्ध कर दिया। द्वैत मतलब कि सब कुछ सत्य है, झूठ कुछ नहीं। सीपी का चांदी भी उनके मत से सत्य है, ध्यान रखना। सीपी में जो चांदी है, रश्मि जो सांप है, वह भी सत्य है। सत्य मतलब कि अन्यत्र वस्तु थी, यहां पर उसकी प्रतीति मात्र है, पर वस्तु सत्य है। हाँ, व्यवहार झूठा है। व्यवहार अंश को तो असत्य मानते हैं, पर ज्ञान अंश में वे यथार्थत्व की सिद्धि करते हैं। क्योंकि जब ज्ञान हुआ तो मन में लोभ हुआ, लोभ होने के बाद लेने गए। तो ज्ञान अंश में सत्य है, व्यवहार अंश में उसका बाद होता है। व्यवहार मतलब जब लेने गए तो उपलब्ध नहीं हुआ तो लौट आए। तो तर्क बल से जो सत्य सिद्ध कर दिया तो राजा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं आपके तर्क से, आपने सीपी में चांदी सिद्ध कर दिया है। हमारे राज्य में जितनी भी सीपियां हैं उन सारे सीपी को मैं इकट्ठा करता हूं और आपको इनाम में वह चांदी से भेंट देता हूं। बेचारे पंडित जी पछताने लगे, बोले आपको तो इतनी चांदी कभी नहीं मिली होगी, जितना सीपी उस सीपी से आप चांदी निकाल कर ले जाइए, यही आपको इनाम दे रहा हूं। तो देखो, तर्क से भले आप संसार को सत्य सिद्ध कर दें, परंतु ये सत्य नहीं। मिथ्या शब्द का अर्थ है व्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब कि जब भूख लगती है तो आप सीधा भोजन करते हैं, ठंड लगने के बाद गर्म कपड़े पहनते हैं, और मान लो यदि गर्मी लगती है तो गर्म कपड़ा पहनेंगे। आप सारे कपड़ों को उतार कर एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। ऐसे ही जो व्यवहारोपयोगी है, जीवन से मृत्यु पर के बीच में जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, ये केवल व्यवहारिक है। ये आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं, यह शरीर भी आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। इसी व्यवहारिक को वेदांत के आचार्यों ने मिथ्या शब्द से कथन किया है। सत्य केवल एक मेवा द्वितीय आत्मा है, जिसका कभी बाध नहीं होता है। कभी मतलब कि न देश से, न काल से, न अवस्था से, न व्यवस्था से, जिसका परिवर्तन न हो वही सत्य है। जो मैं इस बंबई के प्रेमपुरी सत्संग में है वही मैं बद्रीनाथ जाने पर रहेगा। देश में बदलने से कोई अंतर नहीं हुआ, देश बदल गया। यहां से बद्रीनाथ की दूरी हजारों किलोमीटर है, पर वहां भी जाएंगे तो मैं बोलेंगे जैसा मैं यहां बोल रहे। तो देश के बदलने से मैं में बदलाव नहीं आया। काल देखिए, जो बचपना में मैं था वही बुढ़ापे में मैं है, जो बाल्यावस्था में मैं था वही वृद्धावस्था में, तो अवस्था से परिवर्तन नहीं हुआ। और व्यवस्था मतलब कि जो अमीरी में मैं था वही जब आप गरीब हो गए तो भी वही मैं रहा। तो मैं पद का जो लक्ष्यार्थ है, जिसको कूटस्थ आत्मा कहते हैं, वह अपरिवर्तनीय है, वह अबाध्य है, उसी को परमार्थिक सत्य कहते, वही आपका अपना स्वरूप है। यह आपका सत्य विवेक है। परंतु जब आपात रमणीय विवेक होता है, अविचारित ज्ञान होता है, तो आप मैं पद के वाच्यार्थ को आत्मा मान लेते हैं। बस दोनों में फर्क इतना ही है। समझदार व्यक्ति तो मैं के लक्ष्यार्थ को आत्मा समझता है, और ना समझ मैं के वाच्यार्थ को आत्मा। अब ऐतिहासिक तथ्य पर विचार करते हैं। प्राचीन काल में राजा सगर बहुत मशहूर हो चुके हैं। उन्होंने एक बड़ा भारी सांप अश्वमेध याग किया। सम्राट पद पाने के लिए ये परंपरा थी कि राजा लोग अश्वमेध याग किया करते थे। अश्वमेध में याज्ञ अश्व को छोड़ा जाता था और वह जिस राज्य से गुजरता था यदि वहां का राजा उसको आदर दे तो समझा जाता था कि यहां की प्रजा और राजा प्रभुत्व स्वीकारते हैं। यदि कोई उसे पकड़ ले तो उसके साथ संग्राम करना पड़ता था। इधर अश्व चारों तरफ घूमते हुए बंगाल की खाड़ी में जब पहुंचा तो वहां इंद्र अश्व को चुरा करके भागने लगे। भृगु ऋषि की प्रेरणा से सगर पुत्रों को मालूम पड़ा, उन्होंने इंद्र का सामना किया। इंद्र अश्व के साथ अंतर्धान हो जाते हैं और वहां से पुनः उस अश्व को लेकर छुपते हुए महर्षि कपिल के आश्रम में अश्व को बांधकर अंतर्धान हो जाते हैं। इधर सगर पुत्रों ने चारों तरफ अश्व को ढूंढा, जब अश्व नहीं मिला।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 3, Sukta 4. Thank you.

0: நமசிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ஓம் நம சிவாய்.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shaivam.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரிய உபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பக்தி சக்தி சமிதா வாசல் மெய் மாதா வஸ்னி மெய் பெஹனோ ஆத் சரோபந்து. தைத்திரிய उपनिषद को लेकर के प्रसंग मंगलाचरण को लेकर चल रहा है, जिसके अंतर्गत चर्चा ये की जा रही है कि यह जो तैत्तिरीयक उपनिषद है, वैसे तो उपनिषद का ही बड़ा विशिष्ट अर्थ है। आप जानते हो उपनिषद किसे कहते हैं, तो ये सब आप सुनते रहते हो। जो हमारे अज्ञान को सर्वथा अवसादित कर देता है, शिथिल कर देता है, उसका नाम ही है उपनिषद। और हमें उस आत्म तत्व तक समीपता करा देता है, उसका नाम है उपनिषद। इसलिए इसे वेदांत आदि शब्दों से भी कहा गया। ऐसा जो उपनिषद, और उपनिषद में भी कहां से है, तो आरण्यक से है। वेदों के आरण्यक से ली गई उपनिषद है। और आप जानते हो मंत्र ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ। मंत्र और ब्राह्मण आदि ग्रंथों में उपासना और कर्म की विधि को बतलाया। कर्म का अधिकारी कौन है और उसे किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, उपासना का अधिकारी कौन है और उसे किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए, ये सब उन ब्राह्मण और मंत्र ग्रंथों में बतलाया। आरण्यक ग्रंथ के अंतर्गत उपासना और मंत्रों को बहुत ही कहीं कहा है तो बड़े ही गौड़ रूप से कहा। और गौड़ रूप का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हो एक मुख्य और एक गौड़। तो जैसे आप देखते हो एक क्रिया होती है मुख्य और एक क्रिया होती है गौड़, एक कर्म होता है मुख्य और एक कर्म होता है गौड़। यह इकोनॉमिक्स की तरह से कहें तो इसको कैसे कह देते हैं, कहा एक होती है आवश्यकता और एक होती है आवश्यक आवश्यकता। तो आवश्यकता और एक आवश्यक आवश्यकता, क्योंकि आवश्यक आवश्यकता जो है उसके बगैर तो जीवन ही नहीं होगा। आवश्यकता को हम टाल सकते हो तो ठीक है, न हो तो ठीक, लेकिन आवश्यक आवश्यकता को टाला नहीं जा सकता। तो मुख्य वो जो है नहीं हटाया। अब जैसे उदाहरण के लिए, तो आप जानते हो भोजन क्या है, आवश्यक आवश्यकता। ग्रह हो आवश्यक तो है ग्रह, लेकिन आवश्यक आवश्यक नहीं, लेकिन भोजन क्या है, आवश्यक आवश्यकता। ठीक है, ऐसे ही और उदाहरण देखें। व्याकरण में एक प्रयोग आता है, कहा वहां क्रिया को बतलाने के लिए आया, मुख्य क्रिया क्या होती है और गौड़ क्रिया क्या होती है। तो दोनों क्रियाओं को प्रयोग किया, मुख्य क्रिया और गौड़ क्रिया के अर्थ को वहां प्रदर्शित करते हुए कहा, देवदत्त ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति। देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, कहां जा रहा है? कहा गांव को जा रहा है। तो गांव जाना, गांव की प्राप्ति करना उसकी आवश्यकता है, माने मुख्य क्रिया है। तो गच्छन वहां क्रिया जो है, जाना चलना रूप क्रिया है, क्योंकि बगैर चले हुए तो गांव पहुंचेगा नहीं। तो चलना रूप क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया है, है? तो ग्रामम गच्छन, लेकिन गांव को जा रहा है, चलना रूप उसकी मुख्य क्रिया है, लेकिन वही एक क्रिया और हो रही है। कहा वो कौन सी क्रिया है? वो है गौण। वो हो तो ठीक और न हो तो ठीक। वो क्या है? तृणम स्पर्शती है। तो कहने लगे उसी का खड़ी है जिस रास्ते से वह जा रहा है, कच्चा रास्ता है, तो उसके किनारे जो है उसी का खड़ी। अब जब उस रास्ते से चलेगा तो उसी का उसको स्पर्श करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। अब जो है गांव को जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है? उन तिनकों को स्पर्श करता हुआ। तो स्पर्श करना भी एक क्रिया है और चलना भी एक, लेकिन वहां मुख्य क्रिया क्या है? चलना रूप। और छूना रूप जो है, स्पर्श करना रूप जो है, वो उसकी मुख्य क्रिया। वहां वो न हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता और हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो इसी प्रकार से एक मुख्य क्रिया होती है, गौड़ क्रिया होती है। तो यहां आरण्यक के अंतर्गत वहां मुख्य क्या है? यदि उपासना है तो गौड़ रूप से है। थोड़ी बहुत उपासना की जहां आरण्यक उपनिषदों के अंतर्गत चर्चा उपासनाओं की आई है, तो वहां पर जो उपासना की चर्चा है वो कैसी है? गौड़ रूप से। लेकिन मुख्य उसका अर्थ क्या है? तो मुख्य कर्ता, मुख्य अर्थ है कि उस परात्पर परब्रह्म को प्राप्त कर लेना। तो इसके लिए उपाय क्या है, साधन क्या? ज्ञान। तो ज्ञान ही उसकी वहां पर मुख्य क्रिया है। तो उपनिषदों में जितनी भी उपनिषदें हैं उनका मुख्य जो लक्ष्य है, मुख्य जो तात्पर्य है, मुख्य उनकी जो क्रिया है वो क्या है? ज्ञान। क्या है? ज्ञान। लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जैसे गांव को प्राप्त करने के लिए चलना रूपाद क्रिया की आवश्यकता पड़ती, जब गांव प्राप्त हो जाता है तो फिर कोई चलने की आवश्यकता नहीं, इतना ही, इतनी क्रिया को स्वीकार करते हुए और उसको लेकर के ही चर्चा की। वो कैसे होती है? तो कहने लगे उसके लिए ज्ञान तक पहुंचने के लिए अन्य साधनों प्रसादियों के द्वारा बतलाया गया। तो इसमें कहा कि उस ज्ञान में गति कब होगी, ज्ञान में कब पहुंचोगे, तो उसके लिए क्या कहा? कहा मुमुक्षता, जिज्ञासा। लेकिन मुमुक्षता और जिज्ञासा मात्र से वह प्राप्त होने वाला नहीं, ध्यान रखना। जीवन में मुमुक्षा माने मुक्त होने की इच्छा किसी के अंदर हो गई, उसे जानने की इच्छा हो गई, लेकिन ये जानने की इच्छा भी हो जाए, तीव्र भी हो जाए, लेकिन प्राप्ति कब होती है? तब आगे संकेत किया, मुमुक्षा जिज्ञासा अधिकारी। क्या कहा? अधिकारी। आपको उसे प्राप्त करने की इच्छा है, मुक्त होने की इच्छा है, लेकिन इतनी इच्छा मात्र से काम नहीं चलेगा, उसके लिए क्रिया करनी पड़ेगी मध्य, फिर उसके आप अधिकारी बन पाए हो अथवा नहीं। जब तक अधिकारिता नहीं आती है, पात्रता नहीं आती है, तब तक वह प्राप्त भी नहीं होती। अब उस अधिकारिता को, पात्रता को प्राप्त करने के लिए भी साधनों की चर्चा की। हमारी जो मुमुक्षा हो, हमारी जो जिज्ञासा हो, तो उस जिज्ञासा में साथ में भी कुछ धर्म बतलाए गए। वो धर्म क्या है? तो विवेक और वैराग्य। अब विवेक हो श्रवण के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम विवेक कर लेते हैं, लेकिन विवेक मात्र से भी काम चलने वाला नहीं, तब क्या चाहिए? कहा वैराग्य चाहिए। कहने की वैराग्य, तो वैराग्य के भी फिर रूप बतलाए। क्या है वैराग्य? तो वैराग्य की चर्चा करते हुए कहा कि वैराग्य एक होता है मंद वैराग्य। क्या कहते हो? जिसे शमशान वैराग्य भी कहते हो, है लेकर के शमशान में पहुंचे तो वैराग्य सबको हो जाता, नास्तिक को भी वैराग्य हो जाता। वो भी कहता संसार मिथ्या है, उससे पहले उसे मिथ्या नहीं प्रतीत होता, लेकिन शमशान भूमि में जाकर के सबको सो है संसार कैसा प्रतीत होता है, का संसार मिथ्या है। लेकिन वहां से आकर के और फिर वही स्थिति हो जाती, इसे मरकट आदि वैराग्य भी कह देते हो। तो अब जो है मंद वैराग्य, और उसके बाद फिर मध्यम वैराग्य भी कह देते, फिर तीव्र वैराग्य कह देते। तो मंद वैराग्य, मध्यम वैराग्य, तीव्र वैराग्य। मंद वैराग्य केवल उस घटना पर्यंत रहता है, हमारे जीवन में घटना घटी, उस घटना से उस दुख से हमारे जीवन में वैराग्य आया, लेकिन वो वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। मध्यम वैराग्य कुछ समय तक टिकता, लेकिन वो भी स्थायी नहीं रहता। फिर तीव्र वैराग्य, तीव्र वैराग्य होता है, लेकिन तीव्र वैराग्य में भी यदि प्रयास न हो तो वो भी फिसल जाता है ना। इसलिए क्या चाहिए, तीव्र वैराग्य, उत्तम वैराग्य, जिसे उत्तम शब्द से भी कहा। और उत्तम वैराग्य के बाद में वो कब जो है फिसलना नहीं होगा, तो आगे कहा वशीकार वैराग्य। क्या संकेत किया, वशीकार वैराग्य। और वशीकार वैराग्य का मतलब है अब उसके अंदर फिसलना नहीं, अब उसने अपने है, जो फिसलने वाली चीज है वो क्या, तो संकेत कर दिया है, प्रसवम ही हरंति मन। हमारी इंद्रियां क्या करती, हमारे मन को जबरदस्ती खींच लेती, और मन भी खींच के चला जाता तो क्या हो गया, फिसलना हो गया। इसलिए संकेत किया गया कि अब जिसने जो है वशीकार का मतलब है जिसने अपने अंतःकरण को अपनी इंद्रियों को सर्वथा वश में कर लिया, तो वशीकार वैराग्य हो जाता। और वशीकार वैराग्य के पश्चात आता है पर वैराग्य, और जब पर वैराग्य आ जाता है तो विवेक और वैराग्य के द्वारा वो सर्वथा अधिकारी बन जाता। अब उसके लिए भी मध्य में साधन बतलाए कि इस वैराग्य को दृढ़ करने के लिए क्या चाहिए, तो उसी के लिए सटक संपत्ति

मानो वो जो इसका सार है, लेकिन वो सार कैसे प्राप्त होगा तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे प्राप्त नहीं होता। अब जो है कैसे प्राप्त होगा तो उसके लिए संकेत किया गया कि आचार्य प्रसाद तह। पहले तो इस चीज का हम निर्णय कब कर पाएंगे, जब विवेक होगा और निश्चय की स्थिति में पहुंचेंगे, तब कहीं मुमुक्षा जागृत होगी, तब कहीं रुचि बनेगी। इसलिए कहा आचार्य प्रसाद तह, अर्थात आचार्य का मतलब जो उसे अच्छी तरह से जानने वाला है और वो हमें बतलाए। लोक में हम लोग देखते हैं कि बहुधा हम सभी चर्चा करते हैं और दूसरे पर ही प्रत्यारोपण करते हैं। आजकल महाराज बच्चे तो बात मानते ही नहीं, ये हम लोग कहते हैं, लेकिन विचार किया बच्चे बात क्यों नहीं मानते? क्या बच्चों का दोष है? बच्चों का दोष नहीं, प्राणी मात्र जब परमात्मा की कृति है और परमात्मा की कृति है तो परमात्मा की कृति सबके साथ एक जैसी है, उसने कोई भेद नहीं रखा। इसलिए जो बुद्धि रूपी उसने जो निर्णय की, समझने की, विचार करने की सामर्थ्य दी है, वो प्राणी मात्र की बुद्धि कैसी है? तो बुद्धेर धर्मो अनाग्रह। बुद्धि का धर्म क्या है, बुद्धि का स्वभाव क्या है? अनाग्रहता। यदि उसमें आग्रह है, दुराग्रह है, तो कहीं न कहीं दोष को लेकर के है। वास्तव में बुद्धि का धर्म क्या है? अनाग्रहता। क्यों? आप विचार करो, हम बच्चे से कहते हैं कि ऐसा तुम्हें मानना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये हमने कहा, लेकिन बच्चा वैसा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बच्चे की अपनी जो मान्यता है, जो उसने निर्णय लिया, जो उसकी समझ है, उस समझ, उसकी मान्यता और तुम जो कह रहे हो, उन दोनों में अभी साम्यता नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि बच्चा जो मान रहा है वह और तुम जो कह रहे हो वह, दोनों में युक्तियों के द्वारा, तर्क के द्वारा अभी सिद्धि नहीं। आप ठीक उस तरह नहीं समझा पा रहे हो कि तू जो मान रहा है वह और मैं जो कह रहा हूं वह उससे उत्तम है, ये हम समझाने में समर्थ नहीं। और जब समझाने में समर्थ नहीं होते हैं तो वो उसे मान भी नहीं पा। और जिस दिन उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं जो मान रहा हूं वह और जो सामने वाला कह रहा है वह, तो मेरी मान्यता की अपेक्षा ये उत्तम है, और जब इसकी समझ में ये आ जाता है तो उसकी बुद्धि चट से उसे ग्रहण कर लेती, ये नियम है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य प्रसादता शब्द का मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमें ये समझा सके कि हमारी जो मान्यता है वह और शास्त्र जिस बात का निर्वचन कर रहा है वह, दोनों में उत्तम कौन है, और जब ये समझ में आ जाता है तो वो उसे स्वीकार। हजारों वर्षों से हमारी जो मान्यता चली आ रही है हम मानते हैं, लेकिन और अचानक हमारी समझ में आ जाए जो मैं ये मान रहा हूं वो भूल से मान रहा हूं, ये हमारी भूल है। और ये जिस दिन समझ में आ जाता है तो हजारों वर्ष की मान्यता को तुम एक क्षण मात्र में त्याग देते, कोई भी व्यक्ति। तो इसका मतलब क्या? ये अनाद्य विद्या आदि जो भी कही जाती है, जिस दिन हमारी समझ में ये आ जाता है कि ये हमारी भूल है, तो व्यक्ति भूल को सुधारने के लिए तत्पर हो जाता। अब इसको बतलाने वाला युक्तियों के द्वारा, शास्त्र के माध्यम से प्रमाण पुरस्सर कौन? कहा आचार्य। तो ऐसे आचार्य की प्रसादता, इसलिए आप जानते हो
जहां पर

0: भगवान शंकराचार्य ने ये कहा और सर्वत्र सभी शास्त्रों दुर्लभम त्रयमेवै तत्, ये तीन चीजें इसका दुर्लभ है, क्या मनुष्यत्व मुमुच्छत्व और तीसरा क्या कहा महापुरुष, ये कैसे होते हैं तो देवानुग्रह हेतुकम, ये भी प्राणी के पूर्व पुराकृत संस्कारों से ही संयोग बनता, योग वियोग भोग बल मंदा करके संकेत किया। तो ये जो चीज है जब सामने आती है तो क्या होता है तो कहने लगे उस श्रवण के द्वारा उस कथन के द्वारा हमारे जीवन में विवेक आता है, दो पदार्थों के गुण धर्मों का हमें ज्ञान होता है। यही तो है शास्त्र क्या बतलाते हैं कि संसार के गुण धर्म क्या हैं और संसार का जो अधिष्ठान है आश्रय है उसके गुण धर्म क्या, यही शास्त्र बतलाता और युक्ति पूर्वक बतलाता। और वो युक्तियां जब हमारी समझ में आ जाती हैं तो उन युक्तियों के समझ में आ जाने पर हमें विवेक हो गया, क्या हो गया विवेक हो गया, विवेक मतलब हमने जान लिया ये चीज क्या है और ये चीज क्या, अलग अलग उसके गुण धर्मों के द्वारा हमने उसको पहचान लिया, इसका नाम है विवेक। लेकिन जान ही तो लिया, अब जानने के बाद क्या चाहिए कि जो हमारे लिए उपयोगी है उसे हम ग्रहण करें और जो हमारे लिए अनुपयोगी है उसे, जो गौण है उससे आसक्ति हटा लें, अपने आप आसक्ति हट जाए, ये बात निश्चय हो। तो अब जब ये स्थिति होती है तो पहले विवेक, और विवेक होने पर विवेक होगा श्रवण के द्वारा, सुनेंगे वस्तु की महिमा को जानेंगे या सुनेंगे पढ़ेंगे कैसे भी जाने, तो वो होगा किसी न किसी निर्देशक के द्वारा। और वो चीज जब हमें प्राप्त हो गई तब क्या होगा, तभी तो हमारी रुचि बनेगी, तभी तो हमारी इच्छा होगी, उससे पहले इच्छा हो सकती नहीं। तो जो तैतिरिक सारस्य करके कह रहे हैं कि सार है तत्व तो है और वो तत्व तो ही हमारे जीवन के लिए प्राणी मात्र के जीवन के लिए उपाधि, और जब ऐसा आचार के प्रसाद से ज्ञान विवेक होता है तो रुचि होती है, पहले इच्छा होती है जिज्ञासा को, लेकिन जिज्ञासा मात्र से काम तो नहीं चल जाएगा, इसके लिए क्या चाहिए, तब इसलिए शब्द जोड़ा, अभी तक चर्चा उसकी नहीं, विस्पष्टार्थ रुचि नाम, रुचि तो है लेकिन रुचि कैसी होनी चाहिए, तो शब्द दिया विस्पष्टार्थ, जो अर्थ स्पष्ट ही नहीं विशेष रूप से स्पष्ट है। और विशेष रूप से स्पष्ट का मतलब एक होता है परोक्ष ज्ञान, एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान और एक होता है अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान हमें हो चुका है श्रवण के द्वारा, प्रत्यक्ष ज्ञान भी हमारे जीवन में है हो रहा है, लेकिन अपरोक्ष नहीं होता, समस्या क्या है अपरोक्ष। और जब तक अपरोक्ष नहीं होगा, जब तक साक्षात्कार नहीं होगा, तो तब तक सुख कैसे मिलेगा। भई आपने किसी के विषय में सुन रखा, सुन करके ज्ञान तो हो गया लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, अपरोक्ष चाहिए, साक्षात्कार चाहिए। तब कहा विस्पष्टार्थ रुचि, रुचि तो है प्राणी मात्र की रुचि, ऐसा नहीं, कौन नहीं चाहता कि मैं सुखी हो जाऊं, कौन नहीं चाहता कि मैं दुखों से निवृत्त हो जाऊं, कौन नहीं चाहता कि मैं मृत्यु से रहित हो जाऊं और मैं अमरता को प्राप्त कर लूं, सभी चाहते, इच्छा तो है। अब इच्छा कैसी, ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक है कैसी है, तो किसी की विवेक पूर्वक है कम की है, है? लेकिन अविवेक पूर्वक ज्यादा। तो जब तक अविवेक पूर्वक है तब तक जो संसार के पदार्थ असत पदार्थ हैं उनमें आसक्ति रहेगी, और जब विवेक पूर्वक होगी तब उसके लिए वह प्रयास करेगा। तो ये रुचि, अब जो रुचि कैसी होनी चाहिए, तो अब इसके लिए कह रहे विस्पष्टार्थ, वह अर्थ स्पष्ट ही नहीं विशेष रूप से स्पष्ट। और स्पष्टता का मतलब जिसमें कोई छिपाव न हो वही तो स्पष्ट होगी, का स्पष्ट दिख रहा है। स्पष्ट दिखने का मतलब बीच में कोई अवरोध नहीं, कोई आवरण नहीं, आवरण से रहित देखने का नाम है क्या? स्पष्ट देखना। तो वैसे ही विस्पष्टार्थ रुचिना, ध्यान देना। अब जो जिस यहां पर तैतरीय उपनिषद है जिसमें जिसकी चर्चा करने जा रहे, तो उसके लिए कैसी रुचि वाला है जो? तो सामान्य केवल जिज्ञासु मुमुच्छु नहीं कहा, इसके लिए तो उस एक तरह से अधिकारी की बात कही थी। क्या? विस्पष्टार्थ माने जो अब जो है श्रवण मनन आदि करके, साधना करके, उपासना करके, कर्म आदि सब कर चुका है, अब वो क्या चाहता है कि हमें उसका साक्षात्कार, हमारे और उसके बीच में कोई भी अवरोध न रह जाए। तो विस्पष्टार्थ रुचि नाम है ना, क्या है उसके लिए कहा हम जो क्या कर रहे हैं, व्याख्येयम, इयम व्याख्या संप्रदीयते। व्याख्या करता हूं इतना ही नहीं, यह जो व्याख्या है यह पूर्वेशम नस्तद विचतक्षिरे, जो हमारे पूर्व आचार्यों ने हमको जो है निर्दीप करके दी है, ऐसी उस व्याख्या को ध्यान देना, व्याख्या कर रहा हूं ऐसा ही अर्थ नहीं, ऐसी उस व्याख्या को ही संप्रदीयते, सम्यक रूप से हम उसका, जैसे श्वास का प्रणयन परमात्मा ने कर दिया जन्म के साथ, वैसे ही जो है हम जिज्ञासु के लिए, अधिकारी के लिए क्या कर रहे हैं, कहा उसका प्रणयन करते माने उसमें भी वो चलने लगे, चलने लगे का मतलब उसका जीवन बन जाए, उसका जीवन बन जाए। और ये जैसे ही जीवन बनेगी तो सारे दुखों से वो निवृत हो जाए। ये सब तो ऐसे जो उपनिषद का सार अब इस पर लेकर के दृष्टांतों के माध्यम से जो चर्चा आपसे कर रहे थे, किसके लिए? पहले तो हम जब श्रवण करते हैं किसी भी वस्तु के विषय में, तो श्रवण करने से उस वस्तु के गुण धर्मों का हमें ज्ञान होता है, और जब गुण और धर्मों का ज्ञान होता है तो उन गुण धर्मों की वैशिष्टता को लेकर के हमारे हृदय में उस वस्तु को देखने, प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है, और जब जागृत हो जाती है और धीरे धीरे जो है फिर क्या है वो उसके लिए हम प्रयास करना भी शुरू कर देते हैं, और प्रयास करना शुरू करते हैं तो यदि हमारी सच्ची लगन हो जाती है, धीरे धीरे वो प्रयास हमें क्या करता है, अधिकारी बना देता, हमें श्रद्धा तक पहुंचा देता। जहां भी शास्त्रों में देखो तो सर्वत्र श्रद्धा शब्द जरूर आया, आपने कैवल्य उपनिषद स्वाध्याय में पढ़ी होगी, तो वहां भी क्या कहा, परमेष्ठी ब्रह्मा से जाकर के आश्लायन ऋषि ने जब पूछा है, अधीय भगवन ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम, सामान्य विद्या हम नहीं पढ़ना चाहते, ऐसी श्रेष्ठ विद्या जिससे श्रेष्ठ कोई विद्या है ही नहीं, ऐसी विद्या को मैं पढ़ना चाहता हूं, उसे पढ़ा दो मुझे, तो भगवान ने क्या कहना कि? तो कहने लगे श्रद्धा भक्ति ज्ञान योगाद अवेही। कैसे प्राप्त करोगे तुम, तो तुम्हारे जीवन में क्या आनी चाहिए पहले? तो पहले कहा श्रद्धा, फिर श्रद्धा के साथ में श्रद्धा से युक्त भक्ति, और श्रद्धा भक्ति से युक्त है श्रद्धा भक्ति, फिर ज्ञान, वो जो ज्ञान होगा, और ऐसे योग के द्वारा अवे ही तुम प्राप्त कर।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri ഉമേഷാനന്ദജി മഹാരാജ്. താങ്ക് യു. ഓം നമ ശിവായ.
3: ശ്വേതാശ്വതര ഉപനിഷത് നോമ

0: ये क्या बतला रहे है? आपने नाड़ी शुद्ध किया, पहले में नाड़ी शुद्ध बताया कि नहीं? नाड़ी शुद्ध करो, फिर आसन सिद्ध करो, फिर आसन सिद्ध करके समाधि में बैठो। आनी बात तो कल के प्रसंग में जो हमने कोई बताया ना, ये श्लोक इतना वो करना नहीं, इतना श्लोक छोड़ दिया ना, तो उसमें और कुछ नहीं बताया, प्राणायाम के विषय में ही बताया। उसके अंतिम श्लोक देख लेना, उसमें बताया था आने बात नाड़ी शुद्धि आदि करने के बाद में इसका फल क्या है, अन्य फल शुद्धि बताया। त्रिभीर वर्षैर नहीं हो नहीं कहाँ चला गया। ध्यान है ना ईश्वरन गुणान प्राणायाम सतम स्नात्वा इह करोति दिने दिने माता पितृ गुरुघ्नोपि त्रिभीर वर्षैर व्यापोहति। ये फल बता रहा है। तुम तो जब प्राणायाम करोगे ना, प्रतिदिन ध्यान करके 100 बार प्राणायाम करोगे तो कितना बार करोगे? 100 बार प्राणायाम करो तो 100 बार जो प्राणायाम करता है पुरुष, माता का, पिता का, गुरु का, कोई भी है, तो मैंने मुख्य मुख्य लिया, अच्छा पंच महापाप होता है, मातृघात, पितृघात, भ्रूण हत्या, सुवर्ण चोर आने बात, ये सब जो है ना महापाप। तो महापाप अति पापो भी तुम बच जाओगे, मुक्त हो जाओगे पापों से। ये योग दर्शन का क्या बतला रहा है? फल बता रहा है, यदि ऐसा करोगे तो, समझ गए नहीं? और वेदांतों का अलग है, याद रखना। योग दर्शन करते करते करते करते नाड़ी शुद्धि होगी ना, नाड़ी शुद्धि, हाँ चित्त शुद्ध, हाँ हाँ नहीं मतलब क्या है, देखो इससे एक बात तो सिद्ध हो जाता है, ऐसे मातृघात, पितृघात, गुरुघात पहले से चले आ रहा है। प्राप्ते सति निषेध, निषेध कब होता है? जब प्राप्त होगा तब निषेध होगा। जैसे सरकार कानून बनाती है, अबे ये जो है ना, ये आतंकवादियों को करने के लिए कौन सा कानून बनाया? नहीं, मौका। तो मौका कानून का भी सुना किसी ने? अभी बनाया। क्यों बनाया? वर्तमान कानून से उसको पकड़ा नहीं जा रहा है, दंड नहीं दिया जा रहा है, दे पाते नहीं, वकील लोग उसको छुड़ा देते हैं, इसीलिए ऐसा कानून बना जो छूटे नहीं। तो प्राप्ते सत्य निषेध, जो प्राप्त होगा तब उसको निषेध कर जाएगा। तो मतलब ये सब बातें पहले से ही है। क्यों? वेद अपुरुषीय है, वेद में ऐसा बात जो है ना, वो पूर्व कल्प का भी था, इस कल्प का भी था, उस कल्प का भी था, पहले परंपरा आ रहा है। अनेक कल्पों से परंपरा चले आ रहे हैं। तो महापाप जो है ना पहले से ही है, और महापाप ने से पाप से बचने की उपाय भी बताया, तो उपाय बचने के जो उपाय बताया तो पाप है तब ना, पाप नहीं होता बचने के उपाय क्यों बताता? पाप है तभी बताया, चोरी नहीं करो, फलाना चोरी करोगे तो फलाना दंड मिलेगा, फलाना काम करोगे तो फलाना दंड मिलेगा, अमुक काम करोगे पुरस्कार मिलेगा, तो इसे पहले से ही है दंडवार पुरस्कार। तो यहां जो बता रहे हैं फल सिद्धि जो बता रहे हैं, माता पितृ गुरु घ्नो भी त्रिभीर वर्षेर व्यापहते, 3 साल के अंदर अथवा 3 महीने के अंदर अथवा छह महीने का तक तुम ऐसा अभ्यास करोगे, नाड़ी शुद्धि आदि प्राणायाम का अभ्यास करोगे तो इससे मुक्त हो जाओगे। एक दो तीन करके मात्रा गिनते चले जाओ। हाँ, एक मात्रा दो मात्रा प्राणायाम करते करते गिनते जाओ कितने मात्रा तक तुम कर सकते हो, और फिर उसको करते करते डबल मात्रा से करो, ऊपर ले जाओ, श्वास भीतर करो फिर बाहर करो। आनी बात, इसको अनुलोम विलोम कहते, अनुलोम से ले जाओ और विलोम से निकालो। हाँ, अरे ये सब तो बीज मंत्र, इसका के छोड़ो ना, अभी ईद नहीं आता है उधर बीज मंत्र में जाते हो। भंग पृथ्वी में, पृथ्वी कहा है, हंग आकाश बीज है, भंग पृथ्वी बीज है, इसे बीज मंत्र में कहाँ से जाओगे तुम, जब इससे स्थूल प्राणायाम नहीं हो रहा है वहां चले जाओगे। हाँ, जाना हुआ होता था कभी भी। हाँ, तो वहां वहां लिखा हुआ है, देख लेना। हाँ, तो समझ नहीं पड़ते कि कैसे समझोगे, समझाने पर भी नहीं समझोगे, फिर बंग बीज, अंग बीज, पृथ्वी बीज नहीं, ये सब पृथ्वी बीज है। हाँ, जल बीज है, आनी बात, फिर आकाश बीज है, वायु बीज है, तम बीज है, पांचों बीज मंत्र है। बीज मंत्र का ध्यान करो, कैसे करोगे, बोले पृथ्वी बीज है, पृथ्वी से देखो, तुम पृथ्वी का ध्यान करो, तो पृथ्वी का ध्यान कैसे करोगे? हाँ, हाँ, सब पृथ्वी में है, तो पृथ्वी का ध्यान करो, तो पृथ्वी का ध्यान करोगे, पहले पृथ्वी का विकार क्या है देखो, पृथ्वी का विकार क्या, वृक्ष लता गुल्म आदि पृथ्वी का विकार, तुम्हारा शरीर पृथ्वी का विकार है, यह पशु पक्षी कीट पतंग देव दानव सब पृथ्वी का विकार है। आनी बात, ये विकार का ध्यान करो, तो विकार को फिर कारण में लीन करो, फिर जल बीज या पृथ्वी के बीज में लीन करो, पृथ्वी बीज को जल बीज में लीन करो, जल का विकार की देखो, जल का विकार क्या, मच्छी मात्रा 11 लाख दुनिया जल बीज है, 11 लाख दुनिया जो है ना जल की प्राणी है, इसको ध्यान करो, ये सब देखो, इस सब में तुम हो, फिर जल बीज को तुम है, वायु बीज 23 बीज में वो करो, लय करो, करते करते करते करते सब हो, तुम सहस्राधार में चले जाओ, सहस्राधार में है ना। हाँ, आप इसमें चले जाओ, तो इसमें भी आप तुम्हारा सहस्त्रधार में जाने के लिए नेत्र है, एक 500 ज्ञानेन्द्रिय है, 500 ज्ञानेन्द्रियों का जो कारण है उसमें जो रहने अधिष्ठाती देवता है, अधिष्ठाती देवताओं का एक दूसरे में लीन करो, दूसरे में लीन करते करते चले जाओ, ब्रह्म में चले जाओ। ऐसा है क्या, आसान है क्या? हाँ, कोई योग्यता है, समय है, समय की बात होती है। अभी यहाँ तो ऐसे लिखता है अनुलोम विलोम से होगा, इसमें तो ऐसा लिखता है अनुलोम विलोम करो, अभी 1 महीना नहीं 6 महीना तो रोज 3 बार करो, सुबह दोपहर शाम, फिर रात्रि में एकांत में करो, और कितना बार तक करना है, कितना बार तक अनुलोम करोगे, विलोम करोगे, खेसरी मुद्रा करोगे, प्राणायाम अब हमारे वेदांत कहते, जब तुम वेदांत में चलोगे, ये सब क्रियाजोग में, ये सब क्रियाजोग है, आप तुम क्रियाजोग में लागोगे तो वेदांत चिंतन क्या करोगे, कैसे करोगे? आप वेदांत में पहला साधन है श्रवण, आनी बात, वेदांत क्या बोलते, आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निर्देशितव्य, आत्मा के विषय में श्रवण करो, दर्शन करो, आत्मा दर्शन करो। दर्शन कब करोगे? जो श्रवण करोगे। श्रवण कब करना चाहिए? श्रोत किससे करना चाहिए, कब करना चाहिए? तो आत्मा वारे श्रोतव्य हाँ कस्मा श्रोतव्य श्रोतव्यम वेदांत वाक्येषु, वेदांत वाक्यों के द्वारा श्रवण करो। श्रोतव्यम वेदांत वाक्येषु मंतव्यम से युक्ति भी, मनन के मनन कैसे करोगे? युक्ति के द्वारा मनन करो। मंतव्य से सततम देहे, मनन करके जो निश्चय करोगे उसको ध्यान करते रहो। तो आत्मा बारे श्रोतव्य यहाँ है ना, दृष्टिव्य पहले आता है। आत्मा बारे दृष्टिव्य श्रुति का निर्देश आयो, जिज्ञासु हो मुक्ष हो हाँ, आत्मा दर्शन करो, आत्मा दर्शन करो, आत्मा दर्शन करो। श्रुति पुकारती है, जिल्लाती है, ढिंडुरा बेती है, आत्मा दर्शन करो, आत्मा दर्शन करो। तो भाई आत्मा दर्शन करो, चिल्लाते हो आत्मा दर्शन कैसे किया जाए? कहते सुनो सुनो सुनो, आत्मा के विषय में सुनो सुनो सुनो। तो सुने तो किससे सुने? कौन सुनाएगा? टीवी सुनाएगा, रेडियो सुनाएगा, वीडियो सुनाएगा, लेफ्ट सुनाएगा, फेफ्ट सुनाएगा, कौन सुनाएगा? वेदांत वाक्य श्रवण करो। श्रोतव्यम वेदांत वाक्यभ्य हाँ। आज सुनना क्या से जाए, श्रवण क्या से जाए? तो श्रवण का भी एक यह है, वेदांतानाम अशेषाणाम आधिमध्य अवसान तो परमात्मन्येव तात्पर्य इति धि श्रवणम भवेत। वेदांतानाम अशेषाणाम तमाम वेदांतों का, जितना भी वेदांत है, अशेषाणाम शेष नहीं रहे, वेदांतानाम अशेषाणाम आदिमध्य अवसान तो आदि मध्य और अंत में क्या है, क्या बतला? वेदांत का आदि क्या है, अंत क्या, मध्य क्या है? ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम, जो भी जितना भी वेदांत है, वेदांतों का तात्पर्य है आनी बात, ब्रह्म और आत्मा में एकता। जीव ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, ये तात्पर्य है। ये तात्पर्य जिस शास्त्र में बतलाते हैं उसका नाम है वेदांत। जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन जहां करते हैं ना, उसका नाम बागी शास्त्र वेदांत नहीं है। यदि धी श्रवणम भवे, ऐसा जो धी है, बुद्धि वृत्ति है, तुम्हारा बुद्धि जिसमें भी है ना, जीव ब्रह्म की एकता में स्थित हो जाती है, उसका नाम है श्रवण। श्रवण करो, श्रवण करो, सुनो सुनो। तो सुनना किससे चाहिए? वेदांत वाक्य श्रवण करो। वेदांत क्या चीज है? ये ब्रह्म की एकता का नाम वेदांत है। जिस शास्त्र में जी ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया, ऐसे शास्त्रों का श्रवण करो। समझे कि नहीं? यहाँ क्रिया प्रधान नहीं है, योग क्रिया प्रधान है, कर्म क्रिया प्रधान है, पूर्वेक्षा क्रिया प्रधान है। समझे कि ना? कौन? वेदांत, वेदांत नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण अन्य साधन है, यथा पदार्थ भानाभि प्रकाशम बिना क्वचित। ऐसे ज्ञान कब होगा? नो विचार बिना विचार से, यानी बात नोत्पद्यते बिना ज्ञानम, ज्ञानम नोत्पद्यते है कदा? विचारेण अन्य साधन है, विचारम बिना अन्य साधन है, ज्ञानम न उत्पद्यते है। ज्ञान करना हो तो आपको विचार करना ही पड़ेगा। अभी समझो आप लाखों का हिसाब करते हो, आपका हिसाब में गड़बड़ हो गया, हिसाब नहीं मिल रहा है, बार बार देख रहे हो, तो उस अवस्था में क्या करोगे? धूप दोगे, दीप दोगे, हनुमान चालीसा पाठ करोगे, हाँ गीता पाठ करोगे, गायत्री पाठ करोगे, हिसाब मिलाने के लिए क्या करोगे? तो उस समय मान लो रात्रि के समय आप सोते सोते 10 बार 20 बार विचार किया, नहीं बना तो बंद कर रख दोगे कि नहीं? सुबह देखेंगे और सुबह देखते ही यहाँ गलती हो गई, मिल गया है नहीं बात? हाँ जी, तो कहने का मतलब है ज्ञान होता है विचार से। विचार क्या है, देखो विचार शब्द है कि नहीं, एक शब्द है विचार तीन अक्षर का, चार चरते थे चार, चार माने बाहर जाना, चरते थे चार बाहर जाते हो, हाँ विचार माने विपरीत चार, उल्टा आओ, जैसे बाहर गए हो ऐसे भीतर आ जाओ, हाँ चार बात नहीं है, चार वाक्य तो है देह आत्मवाद, देह को आत्मा मानना, देहो हम, हाँ चार वाक्य कहता है खाओ पियो मौज करो। तो विचार मतलब होता है उल्टा चाल, जिस चाल से तुम बाहर गए हो वहां से फिर करके आप कहाँ जाओगे, वहां पहुंच जाओ, हाँ तो तुम किस चाल से बाहर गए, सुबह उठते हो, उठने के बाद में किसको देखते हो, सुबह उठते हैं कोष ने दर्शन होता है, पहले ब्रह्म को दर्शन करते हो तो जानते नहीं, क्यों प्रकाश देखते हो कि नहीं, प्रकाश या प्रकाश के बिना देखोगे, आम को देखोगे, कराग्र बसती लक्ष्मी देखोगे, सबसे पहले क्या देखते हो, ब्रह्म दर्शन होते हैं, आत्मदर्शन होते हैं, क्यों प्रकाश क्या है, ज्योतिषाम अभी तज्योतिष तमसा परम इच्छते, भगवान ने गीता में बताया ना ज्योतियों का मैं ज्योति हूं, तो ज्योति का देखते हो, प्रकाश का देखते हो कि नहीं, रोशनी को देखते हो कि नहीं, रोशनी क्या चीज है, तो फिर परंतु मालूम नहीं यही ब्रह्म है नहीं बात, हमको मालूम नहीं है कि ब्रह्म का ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, आत्म ज्योति है, स्वयं ज्योति है, यह हमको मालूम नहीं है, दर्शन रोज करते हैं, हम तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, ब्रह्म दर्शन के बाद लक्ष्मी का दर्शन होता है, ईश्वर जहां वहां ना लक्ष्मी रहेगी ना, इसीलिए जो श्रवण है आत्मा बारे श्रोतव्य, तो श्रवण पहले है, द्रष्टव्य जो लिखा है ना, ये अर्थक्रम है, कुछ शब्द होता है वर्णक्रम, कुछ होता है अर्थक्रम, पहले क्रम देखा या द्रष्टव्य, अगर आत्मा का दर्शन हो जाए तो श्रवण करने की जरूरत क्या है, पहले द्रष्टव्य आ गया तो श्रोतव्य का अर्थ क्या है, दर्शन के बाद सुनना चाहिए कि सुनने के बाद दर्शन करना चाहिए, तो ऐसा दोनों सिद्धांत है, याद रखना, एक सिद्धांत कहेगा पहले श्रवण करो फिर दर्शन करो, दूसरा के लिए पहले दर्शन करो फिर श्रवण करो मनन करो, पहले होना तो चाहिए क्या श्रोतव्य, देखो पेट भर गया फिर खाओगे क्या, खाने के पेट भरने के लिए खाना है कि खाने के लिए पेट भरना है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ஓம் சிவாய நம. நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சிவ கீர்த்தனைகள். இதில் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் பாடல் மயிலாபுரியில் பாடியிருப்பவர் ஸ்ரீ ராஜாராம் ஐயர் அவர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நம.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज शिव स्तोत्र। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव शिव बोल, प्रेजेंटेड बाय प्रमिला मानिक एंड जंबालिनी मानिक। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

ॐ कपटवर्जिताय नमः, ॐ कमनीयाय नमः, ॐ कलानाथशेखराय नमः, ॐ कम्बुगन्धराय नमः, ॐ गन्धर्वकोटिसदृशाय

नमः ॐ समस्त भुवन व्यापिने नमः ॐ समृद्धये नमः ॐ सततोदिताय नमः ॐ सूक्ष्मात् सूक्ष्मतराय नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ सूक्ष्म स्थूलत्ववर्जिताय नमः ॐ जह्नुकन्याधराय नमः ॐ जन्मजरामृत्यु निवारकाय नमः ॐ शूरसेनाय नमः ॐ शुभाकाराय नमः ॐ शुभ्रमूर्तये नमः ॐ शुचिस्मिताय नमः ॐ अनर्घरत्न खचितकिरीटाय नमः ॐ निकटे स्थिताय नमः ॐ सुधारूपाय नमः ॐ सुराध्यक्षाय नमः ॐ सुब्रुवे नमः ॐ सुखगणाय नमः ॐ सुधिये नमः ॐ भद्राय नमः ॐ भद्रप्रदाय नमः ॐ भद्र

अमतु बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतु मज्जनेषु यद्दीदयच्छवासरित प्रजात तदस्मा सुद्रवीणन् धेहि चित्रम्।

उपयामगृहीतोऽसि वैश्वानराय त्वैषते योनिर्वैश्वानराय त्वा वैश्वानरो न ऊतय आप्रयातु परावताः अग्निरुक्थेन वाहासा।

जठरे मध्वा ऊर्मिन्वग्ने राजा आसि प्रति पत्सुतानाम् उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वा त एष तेयो निरि

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

विभाणुं विश्वसादनते आणो मित्रावरुणाघतैर्गव्योऽधिमुक्षतम् मध्वा रजा।

0: अगासिषः अयमेनामिदाह्योपीपेमेह वज्रिणम् तस्मादो अद्य सवाणे सूतम् भारानूनम् भोषतः श्रुते।
1: ॐ ॐ नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Shri Gurubhyo Namah Hari Om. Om Sahanavatu Sahanobhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shantihi. Bijasyantarivankuro Jagadidam Pranirvikalpam Punaha Maya Kalpita Deshakala Kalanavaichitra Chitrikrutam मायावीव विजृंभयत्यपि महायोगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्य अंतर इव अंकुरः जगत इदं प्राक् निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पित देशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम्। मायावी इव विजृंभयति अप अपि महायोगी इव यः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्य अंतः इनसाइड द बीज इनसाइड द सीड इव अंतः इव अंकुरः दि स्प्राउट एग्जिस्ट इनसाइड द बीज। As the sprout, the power to sprout exists inside the seed. Jagat idam, this jagat also. Prag nirvikalpam, before this creation it was nirvikalpa, without any changes, without any choices, without any transformation in the seed form, avyakta form. पुनः अगेन माया कल्पित देश काल कलना बिकॉज ऑफ द माया द सुपर इंपोजिशन कल्पित बिकॉज ऑफ द इमेजिनेशन सुपर इंपोजिशन ऑफ माया ऑन द माया व्हाट व्हाट आर सुपर इंपोज्ड देश काल कलना ऑल दिस डिफरेंट वेरिड थिंग्स देश काल द टाइम स्पेस all these picture they can they are superimposed on the maya because of what vaichitra vichitrikritam and how is this desha kala kalana this group of desha and kala this space time this variety how is this vaichitra vichitrikritam it is painted in different varied form vaichitra vaichitra means vichitrasya bhava vaichitra it is a Vichitra, very strange, different varieties, so many varieties

0: Namashivaya. Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Manisha Panchakam, presented by Swami Sri Avadesh Chaitanya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: आपके पास जो श्लोक है उसमें नहीं है, इसमें टीकाकारों ने उठाया, उसको मैं देखता हूं। द्विजवर दूरी कर्तुम वांछसी किम। हे द्विजवर, संबोधन कर रहे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दूरी कर्तुम वांछसी, तुम दूर करना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है कि हट जाओ ऐसा कह रहे हो, लेकिन मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। अन्नमयात अन्नमयम उत चैतन्यमेव चैतन्यम। तुम दूर करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, किसको दूर करना चाहते हो? अन्नमय शरीर से अन्नमय शरीर को, इस शरीर से इस शरीर को हटाना चाहते हो? उत अथवा चैतन्य जो कॉन्शसनेस है, उस चैतन्य से चैतन्य को हटाना चाहते हो, किसको हटाना चाहते हो? भगवत भक्तजन व्यवहार में बाह्य पोशाक को हम सब देखते हैं, परंतु आप अपने मन को देखिए, मन के जो भी भाव है उस भावों को देखिए। अगर ये परिधान वस्त्र न हो, अगर मन ऐसा ही दिखता रहे, तो सभ्य समाज में सोसाइटी में हम जाने लायक है? मन के हरेक भावों को देखिए। अगर सच्चाई से कोई लिख सकता है कि मन में ये भाव आया, ये भाव आया, जो भी आया उसी को अगर आप लिख सकते हैं, तो वो मन सोसाइटी के लायक नहीं है। वो तो हम ऊपर से बहुत कुछ आवरण ओढ़ करके आते हैं, संवार करके सवार करके आते हैं और समाज में जाते हैं। इसलिए दूर करने की जो बात है, किसको आप दूर करना चाहते हैं? भगवान शंकर पूछते हैं, शरीर से शरीर को? तो ये शरीर जितना अपवित्र है, चांडाल वेशधारी शिव कह रहे हैं, वही तुम्हारा शरीर भी उतना ही अपवित्र है। स्थानाद वीजाद उपष्टम्भात स्यंदनाद निधनाद्यपि। पांच कारण बता रहे। स्थानाद कहते ये शरीर जहां से निकला महाराज, मातृगर्भ, वो बड़ा पवित्र स्थान रहा होगा, है? साफ सफाई नित्य प्रतिदिन होता रहा होगा, आप जहां थे महाराज। स्थान देखो, वो अपवित्र है। बायोलॉजी को भी अगर आप देखते हैं, तो उसमें भी आपके जितने भी मातृगर्भ में जो जो स्थान है, इधर महाराज मलत्वली है, इधर महाराज मूत्र थली है, और बीच में आपका स्थान है, कितना पवित्र स्थान में आप रहे। और आज हम बड़ा अभिमान करते हैं स्थान को देखो, कि वो स्थान देखने से नहीं लगता है कि ये बड़ा पवित्र कर है। बीज उपादान भूत तत्व को अनुसंधान करें, कि भाई इस शरीर के मूल मैटर क्या है, उपादान क्या है, किससे ये बना है, अगर उस उपादान को अगर देखा जाए तो वो भी ग्रहणीय नहीं है, पवित्र कर नहीं है। और इस शरीर में महाराज क्या क्या निश्चरण होता रहता है, कोई भी एक चीज जो शरीर से निकलता है रखने लायक है, थोड़ा सा अलमारी में, शोकेस में रखने लायक, डिश में, प्लेट में, अपवित्र कर, स्यंदनाद निधनान अपि। और इस शरीर का जब नाश हो जाता है वो उतना ही अपवित्र कर, भयंकर बन जाता है। भगवान शंकर उस तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि कौन है जिनकी उपस्थिति से अपवित्र कर भी पवित्र बन गया है, कौन है जिसको तुम दूर हटने के लिए बोल रहे हो, क्या इस अन्नमय उपादान भूत जो शरीर है, अन्नमय कोष है, इसको, शरीर को अथवा चैतन्य को। इसलिए भगवत भक्तजन ये जो प्रश्न है भगवान शंकर के जीवन में, भगवान आदि सांब सदा शिव ने दिया, एक दृष्टि दिए। टीकाकार लिखते हैं संस्कार पर वशाद एव मनुष्य जीवंती, संस्कार के परवश होकर के ही मनुष्य जीते हैं, और उस संस्कार को शोधन करना सर्वप्रथम साधना है। इसीलिए ये जो अंतिम में इनके प्रश्न सुन करके फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि ये बताओ, तुम तो लगते हो बड़े ज्ञानी, वो चांडाल पूछ रहे कि देखने में तो तुमको लगते हो बड़ा विद्वान है, ज्ञानी हो, अच्छा ये एक छोटा सा शंका का समाधान करो कि ये जो अंबर मणौ, ये जो अंबर स्थित मणि, सूर्य, सूर्य के जो प्रकाश है वो क्या गंगा जी में, घट में, सुवर्ण पात्र में, मिट्टी के पात्र में, और चांडाल बापी पय, स्वयं करे वो जो मेरे घर में जो तालाब है जिसमें मैं चमड़े को धोता हूं, बड़ा गंदा है, तो सूर्य के जो प्रतिबिंब है क्या मेरे घर के जो तालाब है गंदा पवित्र तालाब, उसमें जब पड़ता है, और गंगा जी में जो पड़ता प्रतिबिंब, अथवा एक मिट्टी निर्मित मृत निर्मित घट में जो प्रतिबिंब पड़ता है, अथवा सुवर्ण पात्र में जो प्रतिबिंब पड़ता है, कोई अंतर है क्या लगता है? ये जो हम लोग व्यवहार दशा में आप स्वीकार कर सकते हैं, परंतु कहीं न कहीं एक मन कि कौन किसके साथ आप सारे व्यवहार कर रहे हैं, ये जो भी आकार है, जो भी आकृति है, जो भी प्रकार है, ये तो अलग है, परंतु उसके आकार प्रकार के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं कि उनके इस आकारों को जिन्होंने पकड़ के रखा, कौन है वो, प्रत्येक आकार को किसने उभरने के सामर्थ्य दिया है, वो जो अदृश्य शक्ति है, अदृश्य चेतना है, जिसको आप आत्मा के, परमात्मा के चैतन्य रूप, उसकी ओर ध्यान देना चाह रहे हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन, और ये जब प्रश्न पूछा कि सूर्य के प्रकाश सर्वत्र प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु सूर्य जो है उस प्रतिबिंब से, उस अपवित्र स्थानों से वो गंदा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार है आचार्य शंकर, तुम जो विद्वान बने हो तो तुम्हारे अंदर अभी भी वो भाव है, अरे ये शरीर चांडाल के हो सकते परंतु वही चैतन्य मौजूद है, और तुम ब्राह्मण हो सकते हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, परंतु उस तुम्हारे अंदर भी वही चैतन्य विद्यमान है, तो चैतन्य और चैतन्य में कोई भिन्नता नहीं है, शरीर को जाने दो, शरीर तो मेरा शरीर जितना अपवित्र है तुम्हारा शरीर भी उतना ही अपवित्र है। तो दूरी कर्तुम बांछसी किम ब्रूही ब्रूही गच्छेति, तो किसको दूर भगाना चाहते हो, दूर हटाना चाहते हो भगवत भक्तजन? और ये प्रश्न और वार्ता सुन करके आचार्य के मन में आया कि देखने में तो चंडाल है और बात तो बहुत गहन गंभीर, और ध्यान मग्न होकर के देखा कि अरे सामने तो वही वादी शंकर विश्वनाथ उपस्थित है, और उनको वो संस्कार को दूर करने के लिए वो ये घटना। और फिर आचार्य शंकर कहते हैं आप कोई भी हो, ये जो एक समर्पण और वो संस्कार से निकल आता है कि आप चांडाल हो चाहे द्विज हो, चांडालस्तु सतु द्विजोस्तु गुरु रित्तिशा, आप चांडाल हो अथवा ब्राह्मण हो, अगर ये ज्ञान जिसके पास भी है जिनके पास भी है वो मेरे गुरु है। इसलिए भगवत भक्तजन कई बार हम भी विचार करते हैं कि ब्राह्मण है अब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है, कभी भी ज्ञान के लिए किसी के बाधक है याति नहीं। अगर योग्यता भक्ति में सबके अधिकार है, ज्ञान में सबके अधिकार है नारायण, संस्कार को परिशोधन करते हुए अगर आप जीवन में समर्पण कर सके हैं इस मन और बुद्धि को, फिर तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। और यही समर्पण आचार्य शंकर करके अब निश्चय बताते हैं तेषा मणीषा मम, यही मेरा मणीषा है, मन की इच्छा है, मन की निश्चय है, चाहे वो चंडाल हो चाहे वो ब्राह्मण हो वो मेरे गुरु है। तो इसीलिए भगवत भक्तन कल जो मैंने कहा कि निश्चिंत निश्चय आचार्य शंकर तो कर गए कर दिया, वो निश्चय हमें भी प्राप्त करना है। निश्चय के लिए दो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मई एव मन याधत्स्व मई बुद्धिम निवेशया, मन और बुद्धि को अर्पण करो। कई निश्चय हम जीवन में प्रस्तुत करते हैं लेते हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन के लिए ऐसा कुछ निश्चय चाहिए जो व्यक्ति जीवन को पूर्ण रूप से अलग कर देता है। सारा जीवन आप जो कुछ भी करते हैं, आप क्यों कोई भी क्यों करते हैं भाई क्यों करते हैं, चाहे आपके सामने उत्तर सुख हो शांति हो, घुमा फिरा करके आप कोई भी उत्तर दीजिए, परंतु अल्टीमेट आपके पास एक उत्तर आएगा कि मैं जीवन में एक निश्चय चाहिए, मुझे निश्चिंत चाहिए। तो वो निश्चिंतता कब आ सकती है, जब जिस पर जैसे हम निश्चय ये है ये मेरे हैं, जब इसको आप मेरे करके उठाने से आप निश्चिंत होते हैं और साथ साथ उस अनिश्चय का भी भोगते हैं कि क्या पता ये रहने वाला है कि नहीं। तो सांसारिक वस्तु व्यक्ति विषयों के निश्चयता से निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। तो जिस प्रकार सांसारिक भोगों के प्रति चीजों के प्रति अपनापन है, वही अपनापन वही मेरा संबंध जब ईश्वर के साथ होता है वो निश्चिंत कर सकते हैं। मकान मेरा है एक शांति, जो जो भोग्य वस्तु अपना नहीं होता है तो लगता है कि अपना हो जाए तो शांति सुख। कभी भी हम प्रयत्न नहीं करते कि ईश्वर को भी अनुभव करें कि ये मेरा है, ईश्वर है इसमें कोई संदेह नहीं है, ईश्वर है परंतु ईश्वर मेरे है, ये भाव अभी तक शायद हम कर नहीं पाए। और जिस दिन ईश्वर मेरे है, इस मेरेपन ईश्वर के साथ आप बना सकते हैं, उस दिन आप निश्चिंत हो सकते हैं। अन्यथा हम कितना भी कोशिश करें नारायण, वो निश्चय भले ही कर ले परंतु हम निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि कर्तव्य मुझे करना है, करना मुझे है। उनकी तरफ से कितना भी वचन, कितना भी आश्वासन, कितना भी प्रतिबद्धता क्यों ना हो, निश्चिंत चूंकि मुझे होना है इसलिए निश्चय हमें करना है कि वो है, वो मेरा है। और जिस दिन इस मन और बुद्धि के द्वारा ऐसा निश्चय हो जाए कि प्रभु वो मेरे हैं, उस दिन व्यक्ति जीवन में छोटे मोटे कोई समस्या जो उनके व्यक्तित्व को हिला नहीं सकते। राहुल सांक्रंतायन में 2 मिनट एक कथा कहा, सत्य घटना बोल करके समाप्त करता हूं। विद्यानिवास मिश्र के नाम सुने होंगे, बहुत बड़े विद्वान मनीषी रहे और VHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर रहे, वहीं से उन्होंने अध्ययन किया। और वो फिलोसोफर राहुल सांक्रंतायन जब वो दोनों अध्ययन करते थे VHU में तो एक ही साथ रहते थे हॉस्टल में, फिर दोनों का जीवन अलग अलग होता है। तो विद्यानिवास मिश्र जी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए और संतान संतति, और इधर राहुल सांक्रंतायन बाहर चले गए, लेकिन कभी कभी आते थे उनके पास, बनारस में आते थे, काशी में तो उनके घर में ठहरते थे, मित्र थे। तो अनेक बहुत दिन बीत गया, विद्यानिवास मिश्र जी बूढ़े हो गए। वो अपने संस्करण में लिखते हैं और मैंने उनका दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। उनके कई ग्रंथों को पढ़ करके ऐसे मन में आया कि उनका एक बार उनसे मिले। तो वो संस्करण में लिखते हैं कि राहुल सांक्रंतायन हम लोगों के यौवन के बाद कम से कम 35 साल बाद एक बार काशी में आए, वो भी बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ा हो गया। और VHU में कुछ काम करके वो ढूंढने लगे मुझे कि मेरे मित्र यहां थे, और ढूंढते ढूंढते जो है सामने घाट बोल के एक जगह है काशी में, वहां पहुंचे विद्यानिवास मिश्र के घर और मिले दोनों मित्र। बहुत बातचीत हुई महाराज, पूर्व स्मृति। फिर वो राहुल सांक्रंतायन पूछते हैं कि अरे भाई, तुम्हारे घर में एक नौकर था और वो बहुत प्यार करते थे मुझे, अभी कहां है वो, तुमको पता है? बोला अरे वो बहुत पुरानी बात है, अभी याद नहीं है। और मेरे घर से निकलने के बाद विद्यानिवास मिश्र राहुल सांक्रंतायन को कह रहे हैं, निकलने के बाद मैंने सुना कि उनको घर वालों ने निकाल दिया था, और कारण यही था कि वो लाचार हो गए थे, आंखों से नहीं दिखाई पड़ते थे, अंधा हो गया था। बोला अच्छा, तो उसके बाद तुम खबर नहीं लिया, कहां गए, क्या हुआ उसको? राहुल सांक्रंतायन पूछते हैं। बोले ना, मैंने तो खबर नहीं लिया। और इधर दोनों में एक वेश था कि राहुल सांक्रंतायन जो घोर नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। और तब उन्होंने बोला, तुम लोग ये विश्वनाथ को इतना कुछ कहते थे ना हमको, तो देखो बुढ़ापे में उसको देखा नहीं ना। और दोनों परस्पर विचार करते हुए, वार्ता करते हुए निकले कि देखो, मन में बड़ा इच्छा कि एक बार मिले उनसे, परंतु कहां है क्या पता। और बात करते करते 80 घाट पहुंचे, कहते कि चलो हम लोग दशाश्वमेध तक जो है घाटों घाट चलते हैं। और 80 घाट में उतर करके दोनों जो है दशाश्वमेध की ओर बढ़ने लगे और तुलसी मानस घाट पर पहुंचे तो दोनों के आवाज सुन करके कोई ऊपर से सीढ़ी के ऊपर से जो गए उनको पता है ऊपर से आवाज देते राहुल हो राहुल। वो घूम करके देखते हैं कि अरे वही बुड्ढे, तो दोनों मिलकर चौंका ला रही वही तो है। रामू रामू करके बुलाते थे, बोले वही तो रामू। दोनों उठ करके गए, देखते हैं कि एक बिस्तर है वो पोटला टाइप के बांध करके रखा और वो बैठा है। तो राहुल संकेतन पूछते हैं कि क्या हुआ, कहते हैं कि बस है हूं गंगा तट पर हूं आनंद से हूं और उनके कष्ट उनके चेहरा उनके उनको देख करके राहुल संकेतन के मन में इतना चोट पहुंचा। कहते कि तुम कहते थे ना कि ईश्वर है, हम लोगों को कहते थे कि भगवान सबको रक्षा करते हैं रामू, और आज तुम्हारी ये दशा, अगर है तो तुम्हारी ये दशा क्यों है? तुम जब लाचार हो गए, आंख से तुम दिखने में असमर्थ हो गए, घर वालों ने निकाल दिया और तुम ही लोग कहते थे कि ईश्वर है, तब तक वो बुड्ढे जो है उनके मुंह ऐसे दबाते कि बोलो मत, और उस बूढ़े के आंखों से आंसू झरने लगे कि वो है तभी अभी हूं। नारायण उस राहुल संक्रंतायन उस विद्यानिवास मिश्र जी लिखते हैं कि मैं आज लिख रहा हूं, परंतु मेरे इस लेखन में प्रत्येक अश्रुबिंद उस बूढ़े के चरणों में अर्पण करना चाहता हूं जिनके हृदय में वो विश्वास है। मैं भी आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक ग्रंथों का लेखन किया, परंतु उस प्रकार के विश्वास को अभी भी स्थान नहीं दे पाया, और मुझे आज ऐसा लगता है कि बाबा विश्वनाथ उनके हाथों को पकड़ के रखा। भले ही हम ऊपर से देखें कि वो कष्ट में है, घाटों में पड़ा है, कोई स्थान नहीं है, परंतु उसको बाबा विश्वनाथ ही रक्षा करे। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवत भक्तजन वो जो वृद्ध इतना कष्ट पा रहे, स्थान नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आंखों से शरीर से लाचार है, हिल नहीं सकते, फिर भी उनके मन में कौन सी भाव है कि वो है। तो फिर हमारे जीवन में क्या नहीं मिला वो तो हम भगवान से बहुत कोसते हैं कि तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये मांगा था, परंतु क्या अनायास मिला कभी भी हमने याद किया उनको, कि हमने कभी जाना ही नहीं, हमने कभी मांगा ही नहीं और तुमने ये दिया। कभी ये लिस्ट तो बनाइए कि जो मिला बिन मांगे जो मिला उसके कोई वैल्यू कोई मूल्य हम नहीं देना चाहते, और जो तुच्छ चीज मांगे वो अगर वो नहीं दिया उसमें अगर मेरी भलाई है तो उसको हम दोष देने में लांछन लगाने में कोसने में कोई हम कसर नहीं छोड़ते हैं। जिनके हृदय में वो निश्चय हो जाता है उस रामू बुड्ढे की तरह कि वो है, तो उनके जीवन में कोई भी बाधा कोई भी विपत्ति कोई भी आपत्ति जीवन में आ नहीं सकता है। और आचार्य शंकर के जीवन में वो जो निश्चय निश्चिंत प्रकट करके दिखाया भगवत भक्तजन, इसलिए विश्वनाथ से हम भी वही कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपने जीवन को विकास करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, इस जीवन को यहां तक लाने में आपकी कृपा अगर न होती तो संभव नहीं था, परंतु हे ईश्वर इतना कृपा और आवश्यक है कि एक निश्चिंत एक निश्चय हो जाए कि आप है और आप अपना है, आप मेरे हैं, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
1: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज हिंदी स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन नायनमार पुराणम। द टाइटल इज मानकंजार नायनार पुराण, प्रेजेंटेड बाय श्री सिंगापुर शंकर नारायणन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम सुनेंगे और एक नायनमार या संत की कहानी, जिनका नाम है मानकंजार। तमिलनाडु के आधुनिकता आनंद तांडवपुरम का पुराना नाम कंचारूर प्रसिद्ध था। इस कंचारूर में भी सेनानियों के एक प्रतिष्ठित वेलालर या सेनापति कुल में मानकंचारर का जन्म हुआ। इस वंश के लोग नरेशों के सेनापति रहते रहे हैं। मानकंचारर भी एक सुयोग्य और सफल सेनानायक थे, परंतु व्यवहार में विनम्रता से एक प्रतिमूर्ति थे। उनका मन संतों और भक्तों की सेवा में आनंद का अनुभव करता था। शिव भक्तों की सेवा करना इनके जीवन का व्रत बन गया था। मानकंचारर को चिरकाल एक संतान सुख की कामना थी। कई वर्ष बाद प्रभु कृपा से उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। खूब सौंदर्य में अद्वितीय विविध गुणों से युक्त इस कन्या के घने काले दीर्घ केश उसका विशेष आकर्षण थे। जब कन्या युवा हुई तो अपने संबंधियों में से एक योग्य युवक, जिनका नाम एना था, उनके साथ मानकंचारर की युवती का विवाह निश्चय किया गया। विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई थी। विवाह उत्सव का दिवस आ पहुंचा। विवाह मंडप में आमंत्रित लोग बड़ी धूमधाम से आनंद ले रहे थे। प्रभु शिव तभी स्वयं तपस्वी का वेश धारण कर वहां आ पहुंचे। शरीर में पवित्र भस्म का लेप, पुत्राक्ष की मालाएं और शीर्ष पर जटा समूह सज्जित, उनका वेश उत्तर भारत के शैव मार्गी महावती शाखाओं के संत जैसा था। मानकंचारर उसे उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने खूब आदर सत्कार किया। बड़ी बेटी को भी उनके पास ले गए और आशीर्वाद लेने को कहा। उनकी बेटी के लंबे केश को देखकर मानो तपस्वी आश्चर्यचकित रह गए। महाव्रती मुनिश्रेष्ठ की आंखें नववधु की विशेष केश पर अटक गईं। वे उनकी केश से मुग्ध हो गए। बिना किसी को संबोधित किए हुए मुनि ने विचार व्यक्त किया, श्यामल मेघ के समान सुशोभित यह केश अगर मिल जाए तो हमारी पंचसूत्री पंचवती बनाने के काम आएंगी। साधु की यह इच्छा जानकर मानकंचारर ने तत्काल अपनी तलवार निकाली और बेटी के सौभाग्य सज्जित केश काट डाले और उन्हें मुनि के कर कमलों में अर्पित कर दिया। लेकिन आश्चर्य, सभी लोगों ने देखा कि महावती अंतर्धान हो गए और आकाश में पार्वती के साथ खड़े शिव स्वयं दर्शन दे रहे थे। कन्या की वेणी का केश यथावत हो गई। प्रथम दृष्टि में इस कथा में कोई अद्भुत त्याग नजर नहीं आता, परंतु ये याद रखें, विवाह मंडप में पधारे मुनिवर की वेशभूषा शैव मार्ग के महाभक्तियों जैसी थी। इस प्रकार के साधु तमिलनाडु के नहीं होते, अभी तो इस संप्रदाय विशेष के लोग उत्तर भारत में होते हैं। कन्या के विवाह समारोह में अपने संप्रदाय से बाहर के साधु के आ जाने पर इतना विशेष सत्कार करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु मानकंचारर ने शिव भक्त के रूप में उनका विशेष आदर सम्मान किया। किसी उत्तर भारतीय साधु द्वारा नववधु की केश मांगने पर उसे तुरंत काटकर दे देना एक तथ्य को उजागर करता है। संत श्रेणी या नायना श्रेणी के ये शैव संत जाति धर्म और क्षेत्र के भेदभाव के ऊपर उठ चुके थे। उनके लिए शिव चिन्ह ही प्रमुख था। उसे धारण करने वाले की जाति धर्म और क्षेत्र से कोई अंतर नहीं पड़ता। पुत्री के केश काटने के साथ ही मानकंचारर ने मानो अपने समस्त सांसारिक बंधनों को काट फेंका था। स्पष्ट है कि संत अपना सर्वस्व शिव भक्तों की संपत्ति मानते हैं, अतः इनके लिए ऐसी घटनाएं अपनी दिनचर्या जीवन की घटनाओं के समान साधारण सी बात है। इसीलिए मानकाचार्य एक उच्च कोटि के संत हैं। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shaivam.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி இன் ஹிந்தி, பிரசன்டட் பை மகா மண்டலேஸ்வர் சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
5: बैठकर आधा घंटा आसन लगाकर बैठकर ओम नमः शिवाय करने की क्षमता घुटने और कमर में नहीं होती है, तब बुढ़ौती में कर लो जब है? ले जी। हाँ, फिर जवाब क्या देते हैं पता है बूढ़े लोग? महाराज ये शरीर से क्या लेना है, भक्ति थोड़ी शरीर से करनी है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं मन से करनी है। कुर्सी में बैठे तो भी ठीक है, खड़े हो तो भी ठीक है, सोए सोए भी ठीक है, बुढ़ा तो शरीर हुआ है, मन से हम भक्ति कर रहे हैं महाराज। यदि मन से भक्ति कर रहे हो तो शरीर के दर्द कैसे पता चला तुमको? सर से मन से यदि भक्ति कर रहे हो, मन यदि भगवान के चरण में समर्पित है, लग रहा है मन से भक्ति कर रहे हो, तो कमर का दर्द तुम्हें पता चला कैसे? आखिर मन से ही चलेगा ना। तो भगवान की भक्ति कर रहे हो कि कमर के दर्द का स्मरण कर रहे हो? भगवत स्मरण हो रहा है कि कमर के दर्द स्मरण हो रहा है? कहने तो कह दो भाई, भक्ति तो मन से होता है महाराज। मन चंगा तो कठौती में गंगा, बोल देते हो कि नहीं? मन से हो भगवान की भक्ति करना है तो हम भी कह रहे मन से ही करनी चाहिए, लेकिन मन को स्थिर रखने के लिए तन को स्थिर रखना जरूरी है। तन को स्थिर रखने के लिए प्राण को स्थिर रखना जरूरी है। तन और प्राण स्थिर होगा तो फिर मन स्थिर होगा। प्राण चंचल होगा तो तन चंचल होगा, और प्राण और शरीर चंचल होगा तो स्वाभाविक रूप में मन चंचल हो जाएगा। तो ये साधना की बात करते हैं। तो आप यदि मन से भक्ति करो तो ये तो अच्छी बात है, करना तो उसी से ही है, शरीर के हिसाब नहीं लगाओ। बटुर्वागेहिवा यतिरपि जटिवा तदितरो, अथवा इतर, चार वर्ण चार आश्रम, तदितर और भी हो सकते हैं, चांडाल आदि वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और शूद्र से भी भिन्न चांडाल। शूद्र तक वैदिक है, हाँ, शूद्र से भी और गया गुजरा है चांडाल। बटुर्वा गेहि वा यतिरपि जटि वा तदितरो नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति। कोई भी अवस्था जीवन में आवे तो वो भले आवे, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। भक्ति करने के लिए सन्यासी होना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं। भक्ति करने के लिए ब्रह्मचारी होना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं। भक्ति करने के लिए गृहस्थ होना चाहिए, जरूरी नहीं। वानप्रस्थ ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। मनुष्य ही होना चाहिए, यह जरूरी नहीं, पहले भी कह दिया है। नरो वा य कश्चित, चाहे जो कोई भी हो, भवतु भव, ये शरीर आदि की अवस्था जो कुछ भी होता है होने दो, उससे हमको कुछ लेना नहीं देना नहीं। बूढ़ा होता है होने दो, रोगी होता है होने दो, शरीर रोगी होता है होने दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कश्चित भवतु, भव किम तेन भवती, इन शरीर से क्या लेना देना है, इन वर्ण से क्या लेना देना है, इन आश्रमों से क्या लेना देना है। यदि यम हृत पद्मम, यदि किसी का हृदय रूपी कमल, यदि यम हृत पद्म, यह मेरा हृदय कमल या मेरा हृदय, यदि यम हृत पद्मम यदि भवत अधीनम पशुपते, हे पशुपते यम हृत पद्मम यदि भवत अधीनम, आपके अधीन हो गया तो मेरा जो हृदय कमल है वो आपके अधीन हो गया तो शरीर बूढ़ा हो तो कोई मतलब नहीं, सन्यासी हो तो कोई मतलब नहीं, न हो तो कोई मतलब नहीं, वानप्रस्थी हो तो ठीक है, न हो तो भी ठीक है, ब्रह्मचारी हो ठीक है, गृहस्थ हो तो ठीक है, न हो तो भी ठीक है, जो कुछ भी हो शरीर, क्योंकि वर्ण आश्रम का विधान अन्नमय कोष पर आधारित है। ब्राह्मण ये जो कहते हैं वह स्थूल शरीर पर आधारित है, ब्राह्मणत्व सूक्ष्म शरीर में ब्राह्मणत्व नहीं रहता। वेद ने ब्राह्मण ये संज्ञा की है किसी को, वह स्थूल शरीर को ही ब्राह्मण कहा है, सूक्ष्म शरीर को ब्राह्मण नहीं कहा है। वेद ने क्षत्रिय कहा है तो स्थूल शरीर को ही क्षत्रिय संज्ञा दी है वेद ने, सूक्ष्म शरीर को क्षत्रिय नहीं कहा है। वेद ने यदि किसी को वैश्य कहा है तो भी स्थूल शरीर को वैश्य कहा है, सूक्ष्म शरीर को नहीं। वेद ने यदि शूद्र कहा है, वेद ने यदि चांडाल कहा है तो स्थूल शरीर में ही वर्ण आश्रम का विधान है, सूक्ष्म शरीर में वर्ण आश्रम का विधान नहीं है। समझे ना, चांडाल स्थूल शरीर हो सकता है लेकिन हो सकता है कि उसका हृदय शुद्ध हो। ब्राह्मण स्थूल शरीर का हो सकता है कि उसका हृदय परम चांडाल से भी गया गुजरा हो सकता है। जैसे उदाहरण मैंने कल दिया था, रावण तो ब्राह्मण का ही कुल का है ना, वो आखिर पौलस्त है, पुलह ऋषि का नाती है रावण, शरीर तो ब्राह्मण खानदान का है, क्या फर्क पड़ा, लेकिन उसमें असुरपना आया कहां से, असुर का बेटा तो है ही नहीं रावण, असुर का बेटा तो था नहीं ना, बोलो तो असुरपना आया कहां से। आसुरी भाव अंतकरण की दोषता से उसमें आसुरी भाव आ गया, इसलिए अंतकरण अशुद्ध के चलते उसमें आसुर भाव आ गया है, लेकिन उसका हृदय यदि अंतकरण यदि शुद्ध होता, भगवत अधीन होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे खानदान से तो प्रहलाद का शरीर असुर का बेटा है, शरीर के दृष्टि से वह असुर है वो, लेकिन हृदय इतना शुद्ध हो गया कि वह भगवत अधीन हो गया। किसका हृदय, प्रहलाद का हृदय भगवत अधीन हो गया, नारद का हृदय भगवत अधीन हो गया, ध्रुव का हृदय भगवत अधीन हो गया, हमारा हृदय विषय अधीन हो गया, भगवत अधीन नहीं हो रहा है, तो हम ब्राह्मण भी हैं तो विषय अधीन हो गया हमारा हृदय, इसलिए भक्त नहीं हो पाए, वानप्रस्थी भी हो गए तो हमारा हृदय विषय अधीन हो गया इसलिए भक्त नहीं हो पाए, वानप्रस्थी तो हो गए, शरीर से वानप्रस्थी तो हो गए, हृदय विषयाधीन हो गया, शरीर से सन्यासी तो हो गए लेकिन हृदय विषयाधीन हो गया, शरीर से गृहस्थ तो हो गए लेकिन हृदय विषयाधीन हो गया, शरीर से ब्रह्मचारी तो है लेकिन हृदय विषयाधीन हो गया। तो होना क्या चाहिए था, भगवत अधीन होना चाहिए था, हो गया विषयाधीन। तब क्या हुआ, ध्याय तो विषयान पुंसत संगत वायुर्गंधा निवासया हरति तदस्य प्रज्ञां वायुर्गंधा निवासया। देखो बाहर के विषय इस तरह चित्त के वृत्ति को निकाल कर ले गए, विषयों में खींच लिया, जैसे फूल में रहने वाला सुगंधि को वायु फूल में से निकालकर बाहर ले जाता है, उसी तरह विषय क्या करने लग गए, हृदय को, हृदय के भाव को हृदय से निकालकर बाहर ले गए। देख लो, तो फिर वो विषय में भटकने लग गए। वो अब होना चाहिए था हृदय को भगवान के चरण में पहुंचावे। तो यही कहते हैं शंकराचार्य जी, बटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा य कश्चित भवति भवतु। जो कुछ भी हो शरीर से कोई मतलब नहीं उससे, भव किम तेन भवति, उससे क्या प्रयोजन है, कुछ नहीं, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। फिर महाराज प्रयोजन किससे सिद्ध होगा, यदि इयम हृत पद्मम, यदि यह हृदय कमल, यह हृदय कमल यानी अनुभव में अनुभव गम्य जो हृदय है, आपको सबको अपना हृदय तो अनुभव में है कि नहीं बोलो, हृदय तो प्रत्यक्ष है ना, परोक्ष तो है ही नहीं, परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, आपका हृदय आपके पास है या आपको प्रत्यक्ष है कि नहीं बोलिए, इसलिए ईएम परोक्ष नहीं है। हमने एक दिन कहा था ना, तब नीचे कथा में सुनाया था, कहां सुनाया था, यहीं सुनाया कहां सुनाया भूल गए, बूढ़े हो गए, एक बंदर की और मगरमच्छ की कहानी सुनाया था ना, यहीं सुनाया था। एक मगरमच्छ ने कहा कि नदी के उस किनारे बहुत बढ़िया जामुन का पेड़ है, बहुत बढ़िया फल लगा है। बंदर को कहा, ये मित्र हम दोनों मित्रता कर लेते हैं, मित्र भी शत्रु बनता है, मित्र कैसे शत्रुता करता है, ये उदाहरण। बोले वहां बढ़िया है तो हम ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं, तो तुम पेड़ में चढ़ सकते हो, और तुम ये बड़ा नदी का पार्ट है वो पार नहीं कर सकते हो, हम पार कर सकते हैं, दोनों मित्रता कर लेते हैं, तुम आओ मेरे पीठ में चढ़ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगा, उसके बाद तुम पेड़ में चढ़ना, फल भी तोड़ना, आप भी खाना हमको भी खिलाना, मित्र होने का फायदा यही तो है, आओ महाराज। बंदर ने विश्वास कर लिया कि अच्छा तुम अच्छी बात कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, हम तुमको फल तोड़ के भी दे देंगे, हम भी खाएंगे। वो नीचे उतर गया और मगरमच्छ के पेट में बैठ गया। बीच धार में पहुंचने के बाद मगरमच्छ ने विचार किया, अब ये न बंदर न उछल के उधर जा पाएगा न उछल के इधर आ पाएगा, ठीक से अंतर है, अब ये फंस गया। मगरमच्छ ने सिर उठाया और बंदर को खाने की कोशिश करने लग गया। बंदर ने कहा कि भाई क्या बात है। बोले महाराज मित्र हमको भूख लगी है। तो भूख लगी है तो क्या करोगे। बोले तुम्हारा जो हृदय है ना उसको खाने की इच्छा हो रही है। बंदर ने कहा कि अच्छा हृदय खाने की इच्छा हो गई, ये बात तुमको पहले ही कह देनी चाहिए थी, यदि पहले कहा होता तो वो हृदय में तुमको वहीं दे देता, अब तो हम इधर जब आने लगे तो हृदय को हमने वही पेड़ में सुरक्षित रख दिया है, इस समय हृदय नहीं है। देखो ना हृदय होता तो पेड़ एक पेड़ से उस पेड़ में हम ऐसे उछल पाते, डर जाते हैं, हृदय होता तो डर लगता कि नहीं, तुमने देखा ना, हमको हृदय की जरूरत नहीं है, बिना हृदय के हमारा काम चल जाता, इसलिए इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस, बचपन में हमको ही कहा करते थे हमारी दादी नानी, तो हम कहते थे कि इतना इस पेड़ से उस पेड़, उसको डर नहीं लगता है, पेड़ के एक छोटे से शाखा में चल पड़ता है, डर नहीं लगता है। तो हमको सुनाती थी उसका हृदय नहीं होता है, अब बंदर का हृदय नहीं होता है। हम उसका उस समय तो मान गए, क्योंकि बचपन में तो दादी नानी जो कहे वही मानना पड़ता है कि नहीं है? अब हृदय ही नहीं होगा तो वो जी कैसे रहा है? अगर जी रहा है तो हृदय के कारण ही जी रहा है। तो उस बंदर ने कह दिया कि भाई मेरा हृदय यहां नहीं, वो पेड़ में लगा हुआ है, तुम्हें हृदय चाहिए तो चलो उधर ले चलो, हम निकाल के दे देंगे, हमको तो जरूरत है ही नहीं। मगरमच्छ फिर आ गया किनारे में, अच्छा तो लाए किनारे, जाओ मित्र हृदय ला के दे दो। तो बांदर ने एक लात मारी मगरमच्छ को और जाके ठेंगा दिखा दिया, ले खा हृदय। तो हृदय की बात है। तदीयम् मृत पद्मम् यदि भवत अधीनम्, हे पशुपति। इसलिए कहने का मतलब हृदय परोक्ष नहीं है, हृदय प्रत्यक्ष है। इसलिए ईयम हृदय भीरत पद्मम्, हृदय कमल। यदि यदि कह रहे हैं, यदि कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भगवान के चरण में हृदय लगना बहुत दुर्लभ है, कठिन है। इस कठिनता को, दुर्लभता को बताने के लिए यहां यदि कहा। दुर्लभ है, कोई कोई व्यक्ति का हृदय भगवान के चरण में समर्पित हो सकता है। सभी का यदि हृदय सहज में आसान से भगवत चरण के या भगवत आधीन हो जाता तो शंकराचार्य जी यदि एक कंडीशन न रखते, शर्त न रखते, यदि हो गया तो होना मुश्किल है, असंभव नहीं है। यदि ये भी बात ध्यान रखना, भगवत चरणाधीन होना असंभव नहीं, संभव तो है। प्रहलाद का संभव हुआ, ध्रुव का संभव हुआ, नारद का संभव हुआ, नचिकेता का संभव हुआ है, मीरा का संभव हुआ, अनेक उदाहरण है, शंकराचार्य जी खुद का संभव हुआ। असंभव नहीं है, कठिन जरूर है। हाँ, इसी कठिनता को संकेत करने के लिए शंकराचार्य जी ने यहां यदि ये शर्त रखा है। अपने आप नहीं होगा, आपको लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। हमसे पूछते महाराज जब कभी ध्यान में बैठते हैं, थोड़ी देर तो ध्यान लग जाता है, थोड़ी देर के बाद फिर मन कहां जाता है, कहां जाता है, हट जाता है, क्या करें महाराज? तो हम उनको सुनाते हैं कि तुम छोटे बच्चों को घर में खिलाया है कि नहीं, परवरिश की है कि नहीं? तो तुम्हारा बेटा छोटा था या तुम्हारा नाती, तुम्हारा पोता छोटा था, छोटे थे, तो उनको दूध खिला पिला के उसको सुला दिया, और थोड़ी देर के बाद वह खिसकते खिसकते किनारे में जाने लग गया। एक तरफ जहां सुलाया था वहां से वह खिसक कर हट के वह एक तरफ चल पड़ा, बिस्तरा छोड़कर जमीन में जाने लगा। तब तुम क्या करते हो, बोलो क्या करते हो? जाने देते हो कि फिर पकड़ के लाकर वहीं रखते हो? हैं? क्या करते हो? क्या किया था, बोलो ना। अभी भी कर रहे होंगे, हैं? अभी भी कर रहे हो ना? अपने बेटे को भले ही ना करते हो, बेटे के बेटे को, पोतों को तो कर रहे हो ना अभी भी। प्राय करके हमारी माताएं अमेरिका जाते हैं, कब मालूम है? इनको वीजा मिलता है अमेरिका कब पता है? या बेटी को बेटा होना हो या बहू को बेटा होना हो, तब फिर इन माताओं को वीजा तुरंत मिल जाता है। हाँ, वो सब वहां से मेडिकल सबमिट करें, वो सब प्रमाण करें तो इनको वीजा मिल ही जाएगा। और नहीं यदि अपने तरफ से वीजा अप्लाई करें तो किसी हालत में नहीं मिलेगा। अब वहां क्यों जाते हो? इसी के लिए ना जाते हो? हम पूछते हैं कि क्यों जा रहे हो अमेरिका? महाराज मेरे बहू को बेटा आने वाला है, आने वाला है तो आने दो, तुम क्यों जाती हो? बोलो, अब क्यों जाते हैं? उसी के लिए जाते हैं, उन्हीं को संभालना है। संभाल लिया, तुम्हारा मन तो संभाला नहीं जा रहा है और बच्चों को संभालने जा रहे हो, हैं?

0: उतरा ही नहीं, तो व्यवहार ही बड़ा गड़बड़ हो रहा था। हाँ, बहुत गड़बड़ हो रहा था। दाल में नमक डालने की जगह चीनी डाल दिया, ले जी। हाँ, दाल में डालने की जगह भात में डाल दिया, वृत्ति ठीक है ही नहीं, क्या करोगे, मन तो उधर लगा हुआ है। और ये जो भोजन पकाने के जो काम हो रहा है, ये सब मन उधर लगने से पहले का जो अभ्यास है उसी से हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, विचार पूर्वक तो हो नहीं रहा है। बड़े दुखी हो गए, रोज उनके पति डांटे, तेरा मन कहां चला गया था, तेरा ध्यान कहां चला गया था। गोपी कहे कृष्ण में चला गया था, तो उसका पति कहे कि जा उसी के पास। एक माताजी कहने लगी, वो हमेशा सत्संग में आवे है, तो घर का काम अव्यवस्थित तो हो गया, पति को ऑफिस जाने के टाइम में टिफिन तैयार ना होवे, चाय और ब्रेकफास्ट तैयार ना होवे, तुझे सत्संग ही सत्संग लगते, जा महात्मा के पीछे जा, छोड़ दे घर। तो हमसे आके कहा, मेरा पति ने ऐसा कहा, क्या करूं महाराज, अब हम क्या कहेंगे, बोलो चल कहेंगे है, बोलो चल कहे। यदि हम कहेंगे कि ठीक है तू आ जा, तो पति तो खुश हो जाएगा, वाह महात्मा ने बड़े भारी हमारी समस्या का समाधान कर लिया, मुसीबत तो अपने ही ले लिया जिम्मा है। अब उसी के लिए जो मुसीबत हो रही थी, तो फिर वो हमको आ जा कहेंगे तो फिर हमारी मुसीबत नहीं होगी। हमने कहा छोड़ना नहीं बेटा, छोड़ना नहीं, बोले फिर तो सत्संग छोड़। उसने तो चुनौती दे दी, या तो घर छोड़ या फिर सत्संग छोड़। मैं क्या करूं महाराज, अब आजकल होता तो मैं कह देता इंटरनेट सुन, प्रेमपुरी आश्रम का वेबसाइट आजकल होता तो मैं कह देता घर मत छोड़, उसके सिर में चढ़ के बैठ।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Bhagavan ki kripa se hum log मुंबा पुरिस्थ प्रेमपुरी आश्रम में सुनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज का स्वर्ण निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में सत्संग स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले उच्चारण 17वां श्लोक। व्यापी तारा गणगुणित फेनोद्गम रुचि प्रवाहो आराम्य प्रिखत लघु दृष्ट शिरसिते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमी

0: इसके पूर्व भगवान जो निर्गुण निर्विशेष हैं, जैसा उपनिषद में हम लोग सुनते आए हैं, देवाव ब्रह्मणे रूपे, जो परमात्मा का दो रूप है, मूर्तंच अमूर्तंच, अमूर्त तो निर्गुण निराकार निर्विशेष है, जो कि मन वाणी का विषय नहीं है, लक्षणा के द्वारा अतत व्यावृत्या जिसको निषेध मुख कहते हैं उसके द्वारा समझा समझाया जाता है, और दूसरा है विधि मुख का विषय। परंतु जो मूर्त रूप है उसके भी दो हैं, सगुण साकार और सगुण निराकार। तो सगुण साकार स्वरूप का यहां प्रतिपादन करने जा रहे हैं कि भगवान ने किस प्रकार से अपनी दिव्य लीलाओं को किया ताकि भक्तों के मन वाणी का विषय बन सके। 17 श्लोक के पहले बताया था कि अज्ञान का अध्यारोप, मायावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव और मायावच्छिन्न चैतन्य का नाम ईश्वर, और दोनों के अधिष्ठान को ब्रह्म कहते हैं या अधिष्ठान तत्व भी कहते हैं। यह माया और अंतःकरण दो उपाधियां हैं, परंतु अन्य आचार्य के मत से माया में विद्या में थोड़ा फर्क किया है। शुद्ध सत्व प्रधान का नाम है माया, मलिन सत्व प्रधान का नाम अविद्या है। तो मायोपाधिक ईश्वर, अविद्योपाधिक जीव, ऐसी भी परिभाषा है। जो अविद्योपाधिक है वह तो जीव है और मायोपाधिक ईश्वर है। परंतु जो भामती प्रस्थान के आचार्य वाचस्पति मिश्र है, इनका बहुत ही संक्षेप में और तर्क संगत अनुभूति पूर्व लक्षण है सीधा, मायावच्छिन्न चैतन्य का नाम ईश्वर, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव है, जो अनुभव में भी आता है। अंतःकरण छोटा होने से हमारी उपाधि छोटी है, सामर्थ्य छोटा है। जैसे कि गंगा जी में नावें चल सकती है, मनुष्य तैर सकता है, परंतु एक घड़े जल में नाव नहीं चल सकती, न कोई तैर सकता है। पर जलत्वेन दोनों जल एक ही हैं, जल में अंतर नहीं, बस उपाधि छोटी है। घट उपाधि छोटी है, नदी की उपाधि बड़ी है। ऐसे ईश्वर की माया उपाधि बड़ी है, जीव का अंतःकरण उपाधि छोटा है, इसलिए इसमें थोड़ा सामर्थ्य है। पर यदि घड़े के जल को नदी में छोड़ दें, तो फिर आप यही जल है इस प्रकार से अलग करके नहीं समझ सकते। इसी प्रकार से जीव का विलय, जो उपाधियां हैं, उपाधियों कारण से जीव संज्ञा हुई, उपाधियों के रहने से ही सारी समस्या है, उपाधियों के विलय से ही निरुपाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसी निर्गुण निर्विशेष में जब माया का अध्यारोप किया तो वह ईश्वर कहलाया, और ईश्वर बनने के बाद जगत का वह पालन करता है, संहार करता है, विस्तार करता है। तो पहले तो माया का आरोप किया, बाद में कामना के नाश के लीला को बतलाया, और 16वें श्लोक में तांडव नृत्य का वर्णन किया था कि भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया। तांडव शब्द की निष्पत्ति तदि आघाते धातु से होती है। ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा अपने मन के साथ, शरीर के साथ, और भी आगे बढ़ो तो पुत्र, मित्र, पति, पत्नी, मकान, दुकान सबसे चिपका हुआ है। इतना चिपक गया है कि इनसे अलग करके नहीं समझता है। तो भगवान जब आघात करते हैं ना, तो जरा इनसे ये जो चिपका हुआ है अलगाव होता है। हालांकि जो ब्रह्म का स्वरूप है वही जीव का भी है, जीवो ब्रह्म ही बना पर रहा, परंतु हम लोगों ने जो देहाध्यास कर लिया, इस प्रकार से अपने मकान से चिपक जाते हैं, एक क्षण के लिए भी अलग होना मुश्किल पड़ता है। यदि मान लो यहां से हरिद्वार गए, तो हरिद्वार मोबाइल साथ में होता है ना आजकल, वहां तो गए कि आराम से शांति से भजन करेंगे, परंतु जैसे ही गंगा जी में गोता लगाकर और बैठे माला घुमाने, तुरंत फोन आ गया, जल्दी आ जाओ, बड़ा जो है आप बिना काम बिगड़ रहा है। पत्नी ने पूछा कि आपने गंगा स्नान कर लिया? आपने कहा बिल्कुल ठीक ठाक कर लिया। अब पत्नी बोली क्या करे? बोली भगवान का जप कर रहा। बोले वो जप तो यहां भी हो जाएगा, गंगा स्नान हो गया, सीधे आ जाओ। अब बताओ, आराम से बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, मन भी लगा था, परंतु अब इधर से फोन गया तो आना ही पड़ेगा, और मोबाइल नहीं होता तो आराम से 10-20 दिन रहते शांति से। ये जो अत्याधुनिक आविष्कार है, ये जितना सुविधाजनक है उतना दुविधाजनक भी है, उतना ही संशय और समस्या खड़ा करते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने बड़ा इस पर विचार किया कि जो अत्याधुनिक विज्ञान है, इसके आविष्कार करने से क्या फायदा और क्या नुकसान है। योग दर्शन में बड़ा मूल्यांकन किया महर्षि पतंजलि जी के जमाने में, मतलब लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है। तो उस समय सभी ऋषियों को आमंत्रित किया और विचार किया कि भाई अत्याधुनिक इस विज्ञान के आविष्कार से समाज के समक्ष रखने से क्या नुकसान होगा। तो बताया कि समाधो अंतराय वित्थाने सिद्धया, योग दर्शन में ये बात लिखी हुई है, समाधो अंतराय वित्थाने सिद्धया। समाधि का तो अंतराय है, अंतराय बोलते विघ्न को, बाधा, और अभ्युत्थान में सिद्धि है। व्यवहारिक जगत के लिए ये तो अच्छी बात है, जैसे आपको हरिद्वार जाने बहुत समय लगता है, विमान में बैठे 2 घंटा में पहुंच गए आराम से, या जो है मोबाइल से तत्काल संपर्क हो गया, बात हो गया, यहां तक तो ठीक है, परंतु आपको व्यवहारिक जगत से हट करके भगवान में मन लगाना हो, समाधि में बैठना हो, भजन करना हो, उस समय ही बाधक बन जाता है। इसलिए कह दिया समाधो अंतराय, ये भजन ध्यान समाधि सत्संग का बड़ा भारी अंतराय है, विघ्न है, और शांति का भी अंतराय है। व्यवहारिक जगत में चाहे कितना भी भौतिक संसाधन से लाभ उठा लें, परंतु पारमार्थिक जो सत्ता है, आध्यात्मिक जगत है, उसका किसी भी अंश में इसका उपयोग नहीं है। प्राचीन काल में लोग तीर्थाटन करते थे, तीर्थाटन से बड़ी शांति महसूस होती थी, पूरा उनका अंतःकरण परिवर्तित हो जाता था, जीवन बदल जाता था। पर आजकल हजार बार बद्रीनाथ दर्शन कर क्या कोई नहीं बदलाव, कुछ नहीं, जस का तस रहते, क्योंकि जब आप यहां से पैदल चल के जाएंगे, पहुंचने में जब महीना 2 महीना लगेगा, तो एक तो शारीरिक तपस्या होती है, ऐन्द्रिक तपस्या होती है, तपस्या से कलमश क्षीण होता है, जो जन्मांतर के पाप है वे नष्ट होते हैं। जैसे कोई मूर्ति धातु की बनी हो, सोने चांदी की, वह दूषित हो जाती है तो अग्नि में तपाकर शुद्ध करते हैं। घृत भी जब उसमें कोई दुर्गंधी आता है तो लोग अग्नि में तपाकर शुद्ध कर लेते हैं। ऐसे ही तपसा किल्बिषम हंति, भगवान शंकराचार्य कहते हैं तपसा के लिबिशा मंती, तपस्या से जन्मांतरीय और ऐहिक, चाहे पूर्व जन्म का पाप हो या इस जन्म का किलबिश हो, वे नष्ट होते हैं। जब आप यहां से पैदल चलेंगे तो आपको हर तरह की समस्या का मतलब की समस्या से जूझना पड़ेगा। यहां कितने व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो अपने आप भगवान का सुमिरन होगा। आजकल के महीने में जो गंगा स्नान करते हैं, प्रयागराज या हरिद्वार, स्वभाव से भगवान याद आते हैं। गर्मी में एक बार भी नहीं आते हैं, पर जब डुबकी लगाता है ना, तो नास्तिक से नास्तिक जो भी राम राम श्याम श्याम चिल्लाएगा, शिव शिव पुकारता है, महादेव। जब ठंडी लगती है, जब पीड़ा होती है, तो अपने आप जोर से सब चिल्लाते हैं। प्रयागराज जब जाना माघ महीने में, तो सब जोर से लेते, उससे जो तपस्या से उपाप जब भगते हैं ना। तो देखो, जब हम पैदल जाएंगे तो पग पग में भगवान के नाम का सुमिरन होगा, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। और यदि हम विमान से 2 घंटे पहुंच जाए बद्रीनाथ, तो फिर न भगवान का सुमिरन होता है, न वैराग्य होता है, न विवेक जगता है, बस गए दर्शन की आ गए। तो जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो पाता है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो भौतिक संसाधन विकास है, इनका आपके सुख शांति परमात्मा के प्राप्ति में जरा भी उपयोग नहीं है। हाँ, व्यवहारिक जगत में बड़ा भारी उपयोग है, इस बात को प्राचीन मनुष्यों ने भी स्वीकारा है कि समाधो अंतराय वित्थाने सिद्धिया, वित्थान मतलब व्यवहारिक जगत में उपलब्धियां बहुत ही कामयाब है। तो यहां पर भी जब आघात होता है, आघात बोलते हैं चोट को, किसी का भी जीवन तभी उज्जवल होता है जब जीवन में आघात ठेस लगता है। वाल्मीकि जी को भी आघात लगा, और आघात दूसरे से नहीं लगा, उन्हीं के परिवार से। वाल्मीकि जी का कृत्य था प्रातः काल उठना, धनुष बाण लेके जंगल में जाना, प्राणियों का शिकार करना, और रास्ते में कोई मिले तो बस लूटपाट करके महीनों दिन फिर शिकार करने की जरूरत नहीं। संजोग बस एक दिन बाबा ये टकराए, वे थे नारद जी। नारद जी ने कहा, भाई तो लूटपाट करता है, इतना हत्या करता है, इसके पाप को के फल को विचार किया? बोला कि सो तो विचार नहीं किया। बोले कि तू इतना जो लूटपाट चोरी हत्या करके परिवार का पोषण करता है, ये तेरे परिवार वाले जो पत्नी है बच्चे हैं, इस पाप के फल के भागी बनेंगे? बोला वो तो मुझे पता नहीं। बोले तू पूछ क्या? वाल्मीकि ने कहा, बहुत होशियार हो, मैं पूछने जाऊंगा, आप तब तक चलते बनोगे। नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि तू मुझे पेड़ से बांध दे, जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं टस से मस नहीं होऊंगा। वाल्मीकि गए, घर वालों से पूछा, पहले पत्नी से पूछा, फिर बच्चों से पूछा, सबसे पूछा कि मैं जो इतनी हिंसा करता हूं, चोरी करता हूं, निरीह प्राणियों का वध करता हूं, इससे जो पाप हो रहा है, इस पाप के फल को आप लोग भोगेंगे कि नहीं? कुछ इसमें भी हिस्सा आप लोगों का होगा कि नहीं? पत्नी ने कहा कि देखो, तुम भरता पति, चाहे तुम चोरी करके भरण पोषण करो या कमा करके, हम तुम्हारे पाप में भागी नहीं बनने वाले। बच्चे भी यही जवाब दिए। वाल्मीकि को बड़ा वैराग्य हुआ, आघात लगा, चोट लगा, जिस पर भरोसा था कि हमारे अपने हमें हमेशा साथ देंगे, कभी हमारे से अलग नहीं होंगे। जब उन्होंने सीधा जवाब दिया कि हम तुम्हारे पाप के हिस्सेदार नहीं बनने वाले, तत्काल आकर चरणों में गिर पड़े, और नारद जी ने बस राम मंत्र का उपदेश दिया। वे भी बेचारे जीवन में तो राम राम कभी जपे नहीं, उल्टा नाम जपत जब जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जैसे जो इस्कोन वाले हैं ना प्रारंभ में, इनको जब कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कृष्ण को जल्दी नहीं आता, दो चार वर्ष, दो चार दिन नहीं, वो कृष्ण कृष्ण कृष्ण करते करते फिर कृष्ण कृष्ण हो जाता है उच्चारण, या टेढ़ा है ना कृष्ण शब्द, हम लोग तो आराम से बोल लेते हैं कृष्ण, परंतु वे बेचारे कृष्ण कहते हैं पहले। ऐसे वाल्मीकि जी को जब आघात लगा तो जो परिवार से चिपके थे या जो देहाध्यास था और समाप्त बिखर गया, तो जीव जो अहंता ममता कर लेता है शरीर के साथ, शरीर के संबंधियों के साथ, और इस पर जब तक आघात नहीं लगता है तब तक वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य ही भगवत प्राप्ति का प्रथम सोपान है, चाहे किसी का जीवन हो, आप देख लीजिए, चाहे तुलसीदास जी हो या सूरदास हो, कोई महापुरुष हो, जब तक आघात नहीं लगता है तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, और बिना वैराग्य के विवेक नहीं जगता है। चाहे आप वेदांत के रास्ते से चलें या भक्ति से या योग से, वेदांत भी कहता है कि साधन चतुष्टय प्रथम सोपान है, योग दर्शन भी कहता यम नियम प्रथम सोपान है। यम नियम भी वही बात है जो विवेक वैराग्य है। साधन चतुष्ट में जब आघात लगता है तो वैराग्य होगा, वैराग्य के बाद विवेक करते हैं। विवेक मतलब नित्यानित्य का विवेचन, क्या नित्य क्या अनित्य है, ये जो संसार है जो शरीर है ये नित्य है कि अनित्य है। जब आप विचार करते हैं तो विचार करने के बाद फिर ज्ञान का अवतरण होता है। यहां पर 16वें श्लोक में तांडव नृत्य जब भगवान शंकर करते हैं तो प्राणियों को आघात लगता है। जब आघात को आप हजम कर जाएं तब जाकर के ज्ञान में एक तरह से निखार आता है। ज्ञान तो सबके अंदर है पर वह ज्ञान है वृत्त्यात्मक। वृत्त्यात्मक को सुखाचार्य जी कहते हैं आपात रमणीय ज्ञान है। ये आपात रमणीय का अर्थ होता है बिना विचारा हुआ ज्ञान है, अविचारित ज्ञान है। ये जो अविचारित ज्ञान है, आपात रमणीय जो ज्ञान है, जिससे कि अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि हो रही है, इस दुखमय संसार में सुखत्व प्रकारिका बुद्धि हो रही है, और इसी ज्ञान को आपात रमणीय कहा है। और जैसे ही विवेक जगता है तो आप विवेचन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि वास्तव में ये ज्ञान सत्य है या वह सत्य है। महाराज भोज को जब स्वप्न हुआ, स्वप्न में देखते हैं कि मैं एक भिखारी बन गया हूं, दर दर भटक रहा हूं, लोग मुझे भिक्षा नहीं दे रहे हैं। संजोग से भिक्षा मिल भी गई तो एक सांड आता है और सांड आक्रमण करके उस हड़िया को गिरा देता है। अब बेचारे जोर से चिल्लाए, कई दिन के भूखे, मुश्किल से भिक्षा मिली, वो भी सांड जो है हड़िया गिराकर खाने लग गया, भूख के मारे चिल्लाए, नींद खुल गई। प्रातः कालीन सभा लगी तो सभा के समक्ष सभी विद्वानों से एक ही सवाल करते थे, यह सत्य कि वह सत्य। अंत में अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया कि न यह सत्य न वह सत्य, स्वाप्निक प्रपंच जैसे मिथ्या है वैसे जागृत प्रपंच भी मिथ्या है। ये मिथ्या शब्द से जरा घबराना नहीं है आप लोग, मिथ्या शब्द का जो है ना झूठा नहीं होता है, मिथ्या में झूठा में अंतर है। जो सीपी में चांदी दिखाई दे रहा वह और जो प्रत्यक्ष चांदी है, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। एक जगह कहीं बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में द्वैतवादी अद्वैतवादी को हरा दिया, परंतु राजा बड़ा विवेकी था। राजा ने कहा कि हमारा पक्ष भले हार गया परंतु अब मुझे कोई निर्णय करना चाहिए। जब हार गए तो राजा ने कहा कि आपने अपने तर्क बल से बुद्धि बल से द्वैत मत को सिद्ध कर दिया। द्वैत मतलब कि सब कुछ सत्य है, झूठ कुछ नहीं। सीपी का चांदी भी उनके मत से सत्य है, ध्यान रखना। सीपी में जो चांदी है, रस में जो सांप है, वह भी सत्य है। सत्य मतलब कि अन्यत्र वस्तु थी, यहां पर उसकी प्रतीति मात्र है, पर वस्तु सत्य है। हाँ, व्यवहार झूठा है। व्यवहार अंश को तो असत्य मानते हैं, पर ज्ञान अंश में वे यथार्थत्व की सिद्धि करते हैं। क्योंकि जब ज्ञान हुआ तो मन में लोभ हुआ, लोभ होने के बाद लेने गए। तो ज्ञान अंश में सत्य है, व्यवहार अंश में उसका बाद होता है। व्यवहार मतलब जब लेने गए तो उपलब्ध नहीं हुआ तो लौट आए। तो तर्क बल से जो सत्य सिद्ध कर दिया तो राजा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं आपके तर्क से, आपने सीपी में चांदी सिद्ध कर दिया है। हमारे राज्य में जितनी भी सीपियां हैं उन सारे सीपी को मैं इकट्ठा करता हूं और आपको इनाम में वह चांदी से भेंट देता हूं। बेचारे पंडित जी पछताने लगे, बोले आपको तो इतनी चांदी कभी नहीं मिली होगी, जितना सीपी उस सीपी से आप चांदी निकाल कर ले जाइए, यही आपको इनाम दे रहा हूं। तो देखो, तर्क से भले आप संसार कुछ सत्य सिद्ध कर दें, परंतु ये सत्य नहीं। मिथ्या शब्द का अर्थ है व्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब कि जब भूख लगती है तो आप सीधा भोजन करते हैं, ठंड लगने के बाद गर्म कपड़े पहनते हैं, और मान लो यदि गर्मी लगती है तो गर्म कपड़ा पहनेंगे। आप सारे कपड़ों को उतारकर एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। ऐसे ही जो व्यवहारोपयोगी है, जीवन से मृत्यु पर के बीच में जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, ये केवल व्यवहारिक है। ये आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं, यह शरीर भी आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। इसी व्यवहारिक को वेदांत के आचार्यों ने मिथ्या शब्द से कथन किया है। सत्य केवल एक मेवा द्वितीय आत्मा है, जिसका कभी बाध नहीं होता है। कभी मतलब कि न देश से, न काल से, न अवस्था से, न व्यवस्था से, जिसका परिवर्तन न हो वही सत्य है। जो मैं इस बंबई के प्रेमपुरी सत्संग में है, वही मैं बद्रीनाथ जाने पर रहेगा। देश में बदलने से कोई अंतर नहीं हुआ, देश बदल गया। यहां से बद्रीनाथ की दूरी हजारों किलोमीटर है, पर वहां भी जाएंगे तो मैं बोलेंगे जैसा मैं यहां बोल रहे हैं। तो देश के बदलने से मैं में बदलाव नहीं आया। काल देखिए, जो बचपना में मैं था वही बुढ़ापे में मैं है, जो बाल्यावस्था में मैं था वही वृद्धावस्था में, तो अवस्था से परिवर्तन नहीं हुआ। और व्यवस्था मतलब कि जो अमीरी में मैं था वही जब आप गरीब हो गए तो भी वही मैं रहा। तो मैं पद का जो लक्ष्यार्थ है, जिसको कूटस्थ आत्मा कहते हैं, वह अपरिवर्तनीय है, वह अबाध्य है, उसी को परमार्थिक सत्य कहते हैं। वही आपका अपना स्वरूप है, यह आपका सत्य विवेक है। परंतु जब आपात रमणीय विवेक होता है, अविचारित ज्ञान होता है, तो आप मैं पद के वाच्यार्थ को आत्मा मान लेते हैं। बस दोनों में फर्क इतना ही है। समझदार व्यक्ति तो मैं के लक्ष्यार्थ को आत्मा समझता है, और ना समझ मैं के वाच्यार्थ को आत्मा। अब ऐतिहासिक तथ्य पर विचार करते हैं। प्राचीन काल में राजा सगर बहुत मशहूर हो चुके हैं। उन्होंने एक बड़ा भारी सा अश्वमेध याग किया। सम्राट पद पाने के लिए ये परंपरा थी कि राजा लोग अश्वमेध याग किया करते थे। अश्वमेध में याज्ञीय अस्त्र को छोड़ा जाता था और वह जिस राज्य से गुजरता था यदि वहां का राजा उसको आदर दे तो समझा जाता था कि यहां की प्रजा और राजा प्रभुत्व स्वीकारते हैं। यदि कोई उसे पकड़ ले तो उसके साथ संग्राम करना पड़ता था। इधर अश्व चारों तरफ घूमते हुए बंगाल की खाड़ी में जब पहुंचा तो वहां इंद्र अश्व को चुरा करके भागने लगे। भृगु ऋषि की प्रेरणा से सगर पुत्रों को मालूम पड़ा, उन्होंने इंद्र का सामना किया। इंद्र अश्व के साथ अंतर्धान हो जाते हैं और वहां से पुनः उस अश्व को लेकर छुपते हुए महर्षि कपिल के आश्रम में अश्व को बांधकर अंतर्धान हो जाते हैं। इधर सगर पुत्रों ने चारों तरफ अश्व को ढूंढा, जब अश्व नहीं मिला।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 3, Sukta 4. Thank you.

0: ஓம் நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவு ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ஓம் நம சிவாய்.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரிய உபநிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பக்தி சக்தி சமிதா வாசல் மெய் மாதா வஸ்னி மெய் பஹினோ ஆத் சர்வபந்து. தைத்திரிய उपनिषद को लेकर के प्रसंग मंगलाचरण को लेकर चल रहा है, जिसके अंतर्गत चर्चा ये की जा रही है कि यह जो तैत्तिरीय उपनिषद है, वैसे तो उपनिषद का ही बड़ा विशिष्ट अर्थ है। आप जानते हो उपनिषद किसे कहते हैं, तो ये सब आप सुनते रहते हो। जो हमारे अज्ञान को सर्वथा अवसादित कर देता है, शिथिल कर देता है, उसका नाम ही है उपनिषद। और हमें उस आत्म तत्व तक समीपता करा देता है, उसका नाम है उपनिषद। इसलिए इसे वेदांत आदि शब्दों से भी कहा गया। ऐसा जो उपनिषद, और उपनिषद में भी कहां से है, तो आरण्यक से है। वेदों के आरण्यक से ली गई उपनिषद है। और आप जानते हो मंत्र ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ। मंत्र और ब्राह्मण आदि ग्रंथों में उपासना और कर्म की विधि को बतलाया। कर्म का अधिकारी कौन है और उसे किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, उपासना का अधिकारी कौन है और उसे किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए, ये सब उन ब्राह्मण और मंत्र ग्रंथों में बतलाया। आरण्यक ग्रंथ के अंतर्गत उपासना और मंत्रों को बहुत ही कहीं कहा है तो बड़े ही गौड़ रूप से कहा। और गौड़ रूप का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हो एक मुख्य और एक गौड़। तो जैसे आप देखते हो एक क्रिया होती है मुख्य और एक क्रिया होती है गौड़, एक कर्म होता है मुख्य और एक कर्म होता है गौड़। यह इकोनॉमिक्स की तरह से कहें तो इसको कैसे कह देते हैं, कहा एक होती है आवश्यकता और एक होती है आवश्यक आवश्यकता। तो आवश्यकता और एक आवश्यक आवश्यकता, क्योंकि आवश्यक आवश्यकता जो है उसके बगैर तो जीवन ही नहीं होगा। आवश्यकता को हम टाल सकते हो तो ठीक है, न हो तो ठीक, लेकिन आवश्यक आवश्यकता को टाला नहीं जा सकता। तो मुख्य को जो है नहीं हटाया। अब जैसे उदाहरण के लिए, तो आप जानते हो भोजन क्या है, आवश्यक आवश्यकता। ग्रह हो आवश्यक तो है ग्रह, लेकिन आवश्यक आवश्यक नहीं, लेकिन भोजन क्या है, आवश्यक आवश्यकता। ठीक है, ऐसे ही और उदाहरण देखें। व्याकरण में एक प्रयोग आता है, कहा वहां क्रिया को बतलाने के लिए आया, मुख्य क्रिया क्या होती है और गौण क्रिया क्या होती है। तो दोनों क्रियाओं को प्रयोग किया, मुख्य क्रिया और गौड़ क्रिया के अर्थ को वहां प्रदर्शित करते हुए कहा, देवदत्त ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति। देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, कहां जा रहा है? कहा गांव को जा रहा है। तो गांव जाना, गांव की प्राप्ति करना उसकी आवश्यकता है, माने मुख्य क्रिया है। तो गच्छन वहां क्रिया जो है, जाना चलना रूप क्रिया है, क्योंकि बगैर चले हुए तो गांव पहुंचेगा नहीं। तो चलना रूप क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया है, है? तो ग्रामम गच्छन, लेकिन गांव को जा रहा है, चलना रूप उसकी मुख्य क्रिया है, लेकिन वही एक क्रिया और हो रही है। कहा वो कौन सी क्रिया है? वो है गौण। वो हो तो ठीक और न हो तो ठीक। वो क्या है? तृणम स्पर्शती है। तो कहने लगे उसी का खड़ी है जिस रास्ते से वह जा रहा है, कच्चा रास्ता है, है? तो उसके किनारे जो है उसी का खड़ी। अब जब उस रास्ते से चलेगा तो उसी का उसको स्पर्श करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। अब जो है गांव को जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है? उन तिनकों को स्पर्श करता हुआ। तो स्पर्श करना भी एक क्रिया है और चलना भी एक, लेकिन वहां मुख्य क्रिया क्या है? चलना रूप। और छूना रूप जो है, स्पर्श करना रूप जो है, वो उसकी मुख्य क्रिया। वहां वो न हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता और हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो इसी प्रकार से एक मुख्य क्रिया होती है, गौण क्रिया होती है। तो यहां आरण्यक के अंतर्गत वहां मुख्य क्या है? यदि उपासना है तो गौण रूप से है। थोड़ी बहुत उपासना की जहां आरण्यक उपनिषदों के अंतर्गत चर्चा उपासनाओं की आई है, तो वहां पर जो उपासना की चर्चा है वो कैसी है? गौण रूप से। लेकिन मुख्य उसका अर्थ क्या है? तो मुख्य कर्ता, मुख्य अर्थ है कि उस परात पर परब्रह्म को प्राप्त कर लेना। तो इसके लिए उपाय क्या है? साधन क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान ही उसकी वहां पर मुख्य क्रिया है। तो उपनिषदों में जितनी भी उपनिषदें हैं उनका मुख्य जो लक्ष्य है, मुख्य जो तात्पर्य है, मुख्य उनकी जो क्रिया है वो क्या है? ज्ञान। क्या है? ज्ञान। लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जैसे गांव को प्राप्त करने के लिए चलना रूपादि क्रिया की आवश्यकता पड़ती, जब गांव प्राप्त हो जाता है तो फिर कोई चलने की आवश्यकता, इतना ही, इतनी क्रिया को स्वीकार करते हुए और उसको लेकर के ही चर्चा की। वो कैसे होती है? तो कहने लगे उसके लिए ज्ञान तक पहुंचने के लिए अन्य साधनों प्रसादियों के द्वारा बतलाया गया। तो इसमें कहा कि उस ज्ञान में गति कब होगी, ज्ञान में कब पहुंचोगे, तो उसके लिए क्या कहा? कहा मुमुक्षता, जिज्ञासा। लेकिन मुमुक्षता और जिज्ञासा मात्र से वह प्राप्त होने वाला नहीं, ध्यान रखना। जीवन में मुमुक्षा माने मुक्त होने की इच्छा किसी के अंदर हो गई, उसे जानने की इच्छा हो गई, लेकिन ये जानने की इच्छा भी हो जाए, तीव्र भी हो जाए, लेकिन प्राप्ति कब होती है? तब आगे संकेत किया, मुमुक्षा जिज्ञासा अधिकारी। क्या कहा? अधिकारी। आपको उसे प्राप्त करने की इच्छा है, मुक्त होने की इच्छा है, लेकिन इतनी इच्छा मात्र से काम नहीं चलेगा, उसके लिए क्रिया करनी पड़ेगी मध्य, फिर उसके आप अधिकारी बन पाए हो अथवा नहीं। जब तक अधिकारिता नहीं आती है, पात्रता नहीं आती है, तब तक वह प्राप्त भी नहीं होती। अब उस अधिकारिता को, पात्रता को प्राप्त करने के लिए भी साधनों की चर्चा की। हमारी जो मुमुक्षा हो, हमारी जो जिज्ञासा हो, तो उस जिज्ञासा में साथ में भी कुछ धर्म बतलाए गए। वो धर्म क्या है? तो विवेक और वैराग्य। अब विवेक हो श्रवण के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम विवेक कर लेते हैं, लेकिन विवेक मात्र से भी काम चलने वाला नहीं, तब क्या चाहिए? कहा वैराग्य चाहिए। कहने की वैराग्य, तो वैराग्य के भी फिर रूप बतलाए। क्या है वैराग्य? तो वैराग्य की चर्चा करते हुए कहा कि वैराग्य एक होता है मंद वैराग्य। क्या कहते हो? जिसे शमशान वैराग्य भी कहते हो, लेकर के शमशान में पहुंचे तो वैराग्य सबको हो जाता, नास्तिक को भी वैराग्य हो जाता। वो भी कहता संसार मिथ्या है, उससे पहले उसे मिथ्या नहीं प्रतीत होता, लेकिन शमशान भूमि में जाकर के सबको सो है संसार कैसा प्रतीत होता है, का संसार मिथ्या है। लेकिन वहां से आकर के और फिर वही स्थिति हो जाती, इसे मरकट आदि वैराग्य भी कह देते हो। तो अब जो है मंद वैराग्य, और उसके बाद फिर मध्यम वैराग्य भी कह देते, फिर तीव्र वैराग्य कह देते। तो मंद वैराग्य, मध्यम वैराग्य, तीव्र वैराग्य। मंद वैराग्य केवल उस घटना पर्यंत रहता है, हमारे जीवन में घटना घटी, उस घटना से उस दुख से हमारे जीवन में वैराग्य आया, लेकिन वो वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। मध्यम वैराग्य कुछ समय तक टिकता लेकिन वो भी स्थायी नहीं रहता। फिर तीव्र वैराग्य, तीव्र वैराग्य होता है, लेकिन तीव्र वैराग्य में भी यदि प्रयास न हो तो वो भी फिसल जाता है ना। इसलिए क्या चाहिए, तीव्र वैराग्य, उत्तम वैराग्य, जिसे उत्तम शब्द से भी कहा। और उत्तम वैराग्य के बाद में वो कब जो है फिसलना नहीं होगा, तो आगे कहा वशीकार वैराग्य। क्या संकेत किया, वशीकार वैराग्य। और वशीकार वैराग्य का मतलब है अब उसके अंदर फिसलना नहीं, अब उसने अपने है, जो फिसलने वाली चीज है वो क्या, तो संकेत कर दिया है, प्रसवम ही हरन्ति मनः। हमारी इंद्रियां क्या करती, हमारे मन को जबरदस्ती खींच लेती, और मन भी खींच के चला जाता तो क्या हो गया, फिसलना हो गया कि नहीं। इसलिए संकेत किया गया कि अब जिसने जो है वशीकार का मतलब है जिसने अपने अंतःकरण को अपनी इंद्रियों को सर्वथा वश में कर लिया, तो वशीकार वैराग्य हो जाता। और वशीकार वैराग्य के पश्चात आता है पर वैराग्य, और जब पर वैराग्य आ जाता है तो विवेक और वैराग्य के द्वारा वो सर्वथा अधिकारी बन जाता। अब उसके लिए भी मध्य में साधन बतलाए कि इस वैराग्य को दृढ़ करने के लिए क्या चाहिए, तो उसी के लिए षटक संपत्ति का निरूपण किया गया, सम दम तितिक्षा आदि, श्रद्धा समाधान, ये सब जो है उपरति आदि, ये संकेत किए गए। ये किसके लिए, उस पर वैराग्य की स्थिति में पहुंचने के लिए, माने हमारे अंदर पूर्ण अधिकारिता आ जाए, तो पूर्ण अधिकारी हो जाएं। इसलिए यहां पर जो शास्त्रकार कह रहे हैं कि उपनिषद जो है, यहां उपनिषद तो किसका निरूपण कर रही, उपनिषद में क्या है, का सार है, तत्व है। इसलिए कहा तैतीर्यक सारस्य, तैतीर्य उपनिषद जो है उस उपनिषद का जो सार, वो सार क्या है, आत्मतत्व, असंग जो ब्रह्म, ज्ञानो, वो जो इसका सार है। लेकिन वो सार कैसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे प्राप्त नहीं होता। अब जो है कैसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए संकेत किया गया कि आचार्य प्रसादतः। पहले तो इस चीज का हम निर्णय कब कर पाएंगे, जब विवेक होगा और निश्चय की स्थिति में पहुंचेंगे, तब कहीं मुमुक्षा जागृत होगी, तब कहीं रुचि बनेगी। इसलिए कहा आचार्य प्रसादतः, अर्थात आचार्य का मतलब जो उसे अच्छी तरह से जानने वाला है और वो हमें बतलाए। लोक में हम लोग देखते हैं कि बहुधा हम सभी चर्चा करते हैं और दूसरे पर ही प्रत्यारोपण करते हैं। आजकल महाराज बच्चे तो बात मानते ही नहीं, ये हम लोग कहते हैं, लेकिन विचार किया बच्चे बात क्यों नहीं मानते, क्या बच्चों का दोष है, बच्चों का दोष नहीं, प्राणी मात्र जब परमात्मा की कृति है और परमात्मा की कृति है तो परमात्मा की कृति सबके साथ एक जैसी है, उसने कोई भेद नहीं रखा। इसलिए जो बुद्धि रूपी उसने जो निर्णय की, समझने की, विचार करने की सामर्थ्य दी है, वो प्राणी मात्र की बुद्धि कैसी है? तो बुद्धेर धर्मो अनाग्रह। बुद्धि का धर्म क्या है, बुद्धि का स्वभाव क्या है? अनाग्रहता। यदि उसमें आग्रह है, दुराग्रह है, तो कहीं न कहीं दोष को लेकर के है। वास्तव में बुद्धि का धर्म क्या है? अनाग्रहता। क्यों? आप विचार करो, हम बच्चे से कहते हैं कि ऐसा तुम्हें मानना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये हमने कहा, लेकिन बच्चा वैसा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बच्चे की अपनी जो मान्यता है, जो उसने निर्णय लिया, जो उसकी समझ है, उस समझ, उसकी मान्यता और तुम जो कह रहे हो, उन दोनों में अभी साम्यता नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि बच्चा जो मान रहा है वह, और तुम जो कह रहे हो वह, दोनों में युक्तियों के द्वारा, तर्क के द्वारा अभी सिद्धि, आप ठीक उस तरह नहीं समझा पा रहे हो कि तू जो मान रहा है वह और मैं जो कह रहा हूं वह उससे उत्तम है। ये हम समझाने में समर्थ नहीं, और जब समझाने में समर्थ नहीं होते हैं तो वो उसे मान भी नहीं पा। और जिस दिन उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं जो मान रहा हूं वह और जो सामने वाला कह रहा है वह, तो मेरी मान्यता की अपेक्षा ये उत्तम है, और जब इसकी समझ में ये आ जाता है तो उसकी बुद्धि चट से उसे ग्रहण कर लेती। ये नियम है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि आचार प्रसादता शब्द का मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमें ये समझा सके कि हमारी जो मान्यता है वह और शास्त्र जिस बात का निर्वचन कर रहा है वह, दोनों में उत्तम कौन है, और जब ये समझ में आ जाता है तो वो उसे स्वीकार। हजारों वर्षों से हमारी जो मान्यता चली आ रही है, हम मानते हैं, लेकिन और अचानक हमारी समझ में आ जाए जो मैं ये मान रहा हूं वो भूल से मान रहा हूं, ये हमारी भूल है। और ये जिस दिन समझ में आ जाता है तो हजारों वर्ष की मान्यता को तुम एक क्षण मात्र में त्याग देते, कोई भी व्यक्ति। तो इसका मतलब क्या? ये अनाद्य विद्या आदि जो भी कही जाती है, जिस दिन हमारी समझ में ये आ जाता है कि ये हमारी भूल है, तो व्यक्ति भूल को सुधारने के लिए तत्पर हो जाता। अब इसको बतलाने वाला युक्तियों के द्वारा, शास्त्र के माध्यम से प्रमाण पुरस्सर कौन? कहा आचार्य। तो ऐसे आचार्य की प्रसादता, इसलिए आप जानते हो जहां पर भगवान शंकराचार्य ने ये कहा और सर्वत्र सभी शास्त्रों में दुर्लभम त्रयमेवै तत्, ये तीन चीजें का दुर्लभ है, क्या? मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और तीसरा क्या कहा? महापुरुष। ये कैसे होते हैं? तो देवानुग्रह हेतुकम, ये भी प्राणी के पूर्व पुराकृत संस्कारों से ही संयोग बनता, योग वियोग भोग बल मंदा करके संकेत किया। तो ये जो चीज है जब सामने आती है तो क्या होता है? तो कहने लगे उस श्रवण के द्वारा, उस कथन के द्वारा हमारे जीवन में विवेक आता है। दो पदार्थों के गुण धर्मों का हमें ज्ञान होता है। यही तो है शास्त्र क्या बतलाते हैं कि संसार के गुण धर्म क्या हैं, और संसार का जो अधिष्ठान है, आश्रय है, उसके गुण धर्म क्या, यही शास्त्र बतलाता और युक्ति पूर्वक बतलाता। और वो युक्तियां जब हमारी समझ में आ जाती हैं तो उन युक्तियों के समझ में आ जाने पर हमें विवेक हो गया। क्या हो गया? विवेक हो गया। विवेक मतलब हमने जान लिया ये चीज क्या है और ये चीज क्या है, अलग अलग उसके गुण धर्मों के द्वारा हमने उसको पहचान लिया। इसका नाम है विवेक। लेकिन जान ही तो लिया, अब जानने के बाद क्या चाहिए कि जो हमारे लिए उपयोगी है उसे हम ग्रहण करें और जो हमारे लिए अनुपयोगी है उसे, जो गौण है उससे आसक्ति हटा लें, अपने आप आसक्ति हट जाए, ये बात निश्चय हो। तो अब जब ये स्थिति होती है तो पहले विवेक, और विवेक होने पर विवेक होगा श्रवण के द्वारा, सुनेंगे वस्तु की महिमा को जानेंगे या सुनेंगे पढ़ेंगे कैसे भी जाने, तो वो होगा किसी न किसी निदेशक के द्वारा। और वो चीज जब हमें प्राप्त हो गई तब क्या होगा, तभी तो हमारी रुचि बनेगी, तभी तो हमारी इच्छा होगी, उससे पहले इच्छा हो सकती नहीं। तो जो तैतिरिक सारस्य करके कह रहे हैं कि सार है, तत्व है, और वो तत्व ही हमारे जीवन के लिए, प्राणी मात्र के जीवन के लिए उपाधि, और जब ऐसा आचार के प्रसाद से ज्ञान विवेक होता है तो रुचि होती है, पहले इच्छा होती है जिज्ञासा को। लेकिन जिज्ञासा मात्र से काम तो नहीं चल जाएगा, इसके लिए क्या चाहिए, तब इसलिए शब्द जोड़ा, अभी तक चर्चा उसकी नहीं, विस्पष्टार्थ रुचि नाम। रुचि तो है लेकिन रुचि कैसी होनी चाहिए, तो शब्द दिया विस्पष्टार्थ, जो अर्थ स्पष्ट ही नहीं विशेष रूप से स्पष्ट है। और विशेष रूप से स्पष्ट का मतलब एक होता है परोक्ष ज्ञान, एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, और एक होता है अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान हमें हो चुका है श्रवण के द्वारा, प्रत्यक्ष ज्ञान भी हमारे जीवन में है, हो रहा है।

0: अब तो
1: कर लो,
0: सभी चाहते हैं,
1: इच्छा तो है।
0: अब इच्छा कैसी, ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक है, कैसी है? तो किसी की विवेक पूर्वक है, कम की है, है? लेकिन अविवेक पूर्वक ज्यादा। तो जब तक अविवेक पूर्वक है तब तक जो संसार के पदार्थ असत पदार्थ हैं उनमें आसक्ति रहेगी, और जब विवेक पूर्वक होगी तब उसके लिए वह प्रयास करेगा। ये रुचि, अब जो रुचि कैसी होनी चाहिए, तो अब इसके लिए कह रहे विस्पष्टार्थ। वह अर्थ स्पष्ट ही नहीं, विशेष रूप से स्पष्ट। और स्पष्टता का मतलब जिसमें कोई छिपाव न हो वही तो स्पष्ट होगी, का स्पष्ट दिख रहा है। स्पष्ट दिखने का मतलब बीच में कोई अवरोध नहीं, कोई आवरण नहीं। आवरण से रहित देखने का नाम है क्या, स्पष्ट देखना। तो वैसे ही विस्पष्टार्थ रुचि ना, ध्यान देना। अब जो जिस यहां पर तैतरीय उपनिषद है जिसमें जिसकी चर्चा करने जा रहे, तो उसके लिए कैसी रुचि वाला है जो, तो सामान्य केवल जिज्ञासु मुमुच्छु नहीं कहा, इसके लिए तो उस एक तरह से अधिकारी की बात कही थी। क्या विस्पष्टार माने जो अब जो है श्रवण मनन आदि करके, साधना करके, उपासना करके, कर्म आदि सब कर चुका है, अब वो क्या चाहता है कि हमें उसका साक्षात्कार, हमारे और उसके बीच में कोई भी अवरोध न रह जाए। तो विस्पष्टार्थ रुचि नम, है ना, क्या है उसके लिए कहा। हम जो क्या कर रहे हैं, व्याख्येयम, इयम व्याख्या संप्रदीयते, व्याख्या करता हूं इतना ही नहीं, यह जो व्याख्या है, यह पूर्वेशम नस्तद विचक्षिरे, जो हमारे पूर्व आचार्यों ने हमको जो है निर्दीप करके दी है, ऐसी उस व्याख्या को ध्यान देना, व्याख्या कर रहा हूं ऐसा ही अर्थ नहीं, ऐसी उस व्याख्या को ही संप्रदीयते, सम्यक रूप से हम उसका, जैसे श्वास का प्रणयन परमात्मा ने कर दिया जन्म के साथ, वैसे ही जो है हम जिज्ञासु के लिए, अधिकारी के लिए क्या कर रहे हैं, कहा उसका प्रणयन करते, माने उसमें भी वो चलने लगे, चलने लगे का मतलब उसका जीवन बन जाए, उसका जीवन बन जाए। और ये जैसे ही जीवन बनेगी तो सारे दुखों से वो निवृत हो जाए। ये सब तो ऐसे जो उपनिषद का सार अब इस पर लेकर के दृष्टांतों के माध्यम से जो चर्चा आपसे कर रहे थे, किसके लिए, पहले तो हम जब श्रवण करते हैं किसी भी वस्तु के विषय में, तो श्रवण करने से उस वस्तु के गुण धर्मों का हमें ज्ञान होता, और जब गुण और धर्मों का ज्ञान होता है तो उन गुण धर्मों की वैशिष्टता को लेकर के हमारे हृदय में उस वस्तु को देखने, प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती, और जब जागृत हो जाती है और धीरे धीरे जो है फिर क्या है वो, उसके लिए हम प्रयास करना भी शुरू कर देते हैं। और प्रयास करना शुरू करते हैं तो यदि हमारी सच्ची लगन हो जाती है, धीरे धीरे वो प्रयास हमें क्या करता है, अधिकारी बना देता, हमें श्रद्धा तक पहुंचा देता। जहां भी शास्त्रों में देखो तो सर्वत्र श्रद्धा शब्द जरूर आया। आपने कैवल्य उपनिषद स्वाध्याय में पढ़ी होगी, तो वहां भी क्या कहा, परमेष्ठी ब्रह्मा से जाकर के आश्लायन ऋषि ने जब पूछा है, अधीय भगवन ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम, सामान्य विद्या हम नहीं पढ़ना चाहते, ऐसी श्रेष्ठ विद्या जिससे श्रेष्ठ कोई विद्या है ही नहीं, ऐसी विद्या को मैं पढ़ना चाहता हूं, उसे पढ़ा दो मुझे। तो भगवान ने क्या कहना कि, तो कहने लगे श्रद्धा भक्ति ज्ञान योगाद अवे ही, कैसे प्राप्त करोगे तुम, तो तुम्हारे जीवन में क्या आनी चाहिए पहले, तो पहले कहा श्रद्धा, फिर श्रद्धा के साथ में श्रद्धा से युक्त भक्ति, और श्रद्धा भक्ति से युक्त है श्रद्धा भक्ति, फिर ज्ञान, वो जो ज्ञान होगा, और ऐसे योग के द्वारा अवे ही तुम प्राप्त कर।
2: ओम नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

ये क्या बतला रहे है? आपने नाड़ी शुद्धि किया, पहले में नाड़ी शुद्ध बताया कि नहीं? नाड़ी शुद्ध करो, फिर आसन सिद्ध करो, फिर आसन सिद्ध करके समाधि में बैठो। आनी बात तो कल के प्रसंग में जो हमने कोई बताया ना, ये श्लोक इतना वो करना नहीं, इतना श्लोक छोड़ दिया ना, तो उसमें और कुछ नहीं बताया, प्राणायाम के विषय में ही बताया। उसके अंतिम श्लोक देख लेना, उसमें बताया था नाड़ी शुद्धि आदि करने के बाद में इसका फल क्या है, अन्य फल शुद्धि बताया। त्रिभीर वर्षीर नहीं हो, नहीं कहाँ चला गया? हाँ, ध्यान है ना, ईश्वरन गुणान प्राणायाम सतम स्नात्वा इह करोति दिने दिने माता पित्री गुरुघ्नोपि त्रिभीर वर्षैर व्यापोहति। ये फल बता रहा है। तुम जब प्राणायाम करोगे ना, प्रतिदिन ध्यान करके 100 बार प्राणायाम करोगे तो कितना बार करोगे? 100 बार प्राणायाम करो तो 100 बार जो प्राणायाम करता है पुरुष, माता का, पिता का, गुरु का, कोई भी है, तो मैंने मुख्य मुख्य लिया, हाँ जी, पंच महापाप होता है, मातृघात, पितृघात, भ्रूण हत्या, सुवर्ण चोर, अन्य बात, ये सब जो है ना महापाप। तो महापाप अति पापों भी तुम बच जाओगे, मुक्त हो जाओगे पापों से। ये योग दर्शन का क्या बतला रहा है? फल बता रहा है, यदि ऐसा करोगे तो, समझोगे नहीं? और वेदांतों का अलग है, याद रखना। योग दर्शन करते करते करते करते नाड़ी शुद्धि होगी ना, नाड़ी शुद्धि, हाँ, चित्त शुद्ध, हाँ हाँ नहीं, मतलब क्या है, देखो इससे एक बात तो सिद्ध हो जाता है, ऐसे मातृघात, पितृघात, गुरुघात पहले से चले आ रहा है। प्राप्ते सति निषेध, निषेध कब होता है? जब प्राप्त होगा तब निषेध होगा। जैसे सरकार कानून बनाती है, अबे ये जो है ना, ये आतंकवादियों को करने के लिए कौन सा कानून बनाया? नहीं, मौका, तो मौका कानून का भी सुना किसी ने? अभी बनाया, क्यों बनाया? वर्तमान कानून से उसको पकड़ा नहीं जा रहा है, दंड नहीं दिया जा रहा है, दे पाते नहीं, वकील लोग उसको छुड़ा देते हैं, इसीलिए ऐसा कानून बना जो छूटे नहीं। तो प्राप्ते सत्य निषेध, जो प्राप्त होगा तब उसको निषेध कर जाएगा। तो मतलब ये सब बातें पहले से ही है, क्यों? वेद अपौरुषेय है, वेद में ऐसा बात जो है ना, वो पूर्व कल्प का भी था, इस कल्प का भी था, उस कल्प का भी था, पहले परंपरा आ रहा है, अनेक कल्पों से परंपरा चले आ रहे हैं। तो महापाप जो है ना पहले से ही है, और महापाप ने से पाप से बचने की उपाय भी बताया, तो उपाय बचने के जो उपाय बताया तो पाप है तब ना, पाप नहीं होता बचने के उपाय क्यों बताता? पाप है तभी बताया, चोरी नहीं करो, फलाना चोरी करोगे तो फलाना दंड मिलेगा, फलाना काम करोगे तो फलाना दंड मिलेगा, अमुक काम करोगे पुरस्कार मिलेगा, तो इसे पहले से ही है दंडवार पुरस्कार। तो यहां जो बता रहे हैं फल सिद्धि जो बता रहे हैं, माता पितृ गुरु घ्नौ भी त्रिभीर वर्षीर व्यापहते, 3 साल के अंदर अथवा 3
महीने के अंदर अथवा छह महीने का तक तुम ऐसा अभ्यास करोगे, नाड़ी शुद्धि आदि प्राणायाम का अभ्यास करोगे तो इससे मुक्त हो जाओगे। एक दो तीन करके मात्रा गिनते चले जाओ। हाँ, एक मात्रा दो मात्रा प्राणायाम करते करते गिनते जाओ कितने मात्रा तक तुम कर सकते हो, और फिर उसको करते करते डबल मात्रा से करो, ऊपर ले जाओ, श्वास भीतर करो फिर बाहर करो। आनी बात, इसको अनुलोम विलोम कहते, अनुलोम से ले जाओ और विलोम से निकालो। हाँ, अरे ये सब तो बीज मंत्र, इसका के छोड़ो ना, अभी ईद नहीं आता है उधर बीज मंत्र में जाते हो। भंग पृथ्वी में, पृथ्वी कहा है, हंग आकाश बीज है, भंग पृथ्वी बीज है, इसे बीज मंत्र में कहाँ से जाओगे तुम, जब इससे स्थूल प्राणायाम नहीं हो रहा है वहां चले जाओगे। हाँ, जाना हुआ होता था कभी भी। हाँ, तो वहां वहां लिखा हुआ है, देख लेना। हाँ, तो समझ नहीं पड़ते कि कैसे समझोगे, समझाने पर भी नहीं समझोगे, फिर बंग बीज, अंग बीज, पृथ्वी बीज नहीं, ये सब पृथ्वी बीज है। हाँ, जल बीज है, आनी बात, फिर आकाश बीज है, वायु बीज है, तम बीज है, पांचों बीज मंत्र है। बीज मंत्र का ध्यान करो, कैसे करोगे, बोले पृथ्वी या पृथ्वी से देखो, तुम पृथ्वी का ध्यान करो, तो पृथ्वी का ध्यान कैसे करोगे? हाँ, सब पृथ्वी में है, तो पृथ्वी का ध्यान करो, तो पृथ्वी का ध्यान करोगे, बोले पृथ्वी का विकार क्या है देखो, पृथ्वी का विकार क्या, वृक्ष लता गुल्म आदि पृथ्वी का विकार, तुम्हारा शरीर पृथ्वी का विकार है, ये पशु पक्षी कीट पतंग देव दानव सब पृथ्वी का विकार है। आनी बात, ये विकार का ध्यान करो, तो विकार को फिर कारण में लीन करो, फिर जल बीज या पृथ्वी के बीज में लीन करो, पृथ्वी बीज को जल बीज में लीन करो, जल का विकार की देखो, जल का विकार क्या, मच्छी मात्रा 11 लाख दुनिया जल बीज है, 11 लाख दुनिया जो है ना जल की प्राणी है, इसको ध्यान करो, ये सब देखो, इस सब में तुम हो, फिर जल बीज को तुम है, वायु बीज 23 बीज में वो करो, लय करो, करते करते करते करते सब हो, तुम सहस्राधार में चले जाओ, सहस्राधार में है ना। हाँ, आप इसमें चले जाओ तो इसमें भी आप, तुम्हारा सहस्राधार में जाने के लिए नेत्र है, एक 500 ज्ञानेन्द्रिया है, 500 ज्ञानेन्द्रियों का जो कारण है उसमें जो रहने अधिष्ठाती देवता है, अधिष्ठाती देवताओं का एक दूसरे में लीन करो, दूसरे में लीन करते करते चले जाओ, ब्रह्म में चले जाओ। ऐसा है क्या, आसान है क्या? हाँ, कोई योग्यता है, समय है, समय की बात होती है। अभी यहाँ तो ऐसे लिखता है अनुलोम विलोम से होगा, इसमें तो ऐसा लिखता है अनुलोम विलोम करो। अभी एक महीना नहीं, छह महीना तो रोज 3 बार करो, सुबह दोपहर शाम, फिर रात्रि में एकांत में करो, और कितना बार तक करना है, कितना बार तक अनुलोम करोगे, विलोम करोगे, खेसरी मुद्रा करोगे, प्राणायाम। अब हमारे वेदांत कहते, जब तुम वेदांत में चलोगे, ये सब क्रियाजोग में, ये सब क्रियाजोग है, आप तुम क्रियाजोग में लागोगे तो वेदांत चिंतन क्या करोगे, कैसे करोगे? आप वेदांत में पहला साधन है श्रवण, आनी बात,
वेदांत क्या बोलते, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निर्द्यासिव्य, आत्मा के विषय में श्रवण करो, दर्शन करो, आत्मा दर्शन करो। दर्शन कब करोगे? जो श्रवण करोगे। श्रवण कब करना चाहिए, श्रोत किससे करना चाहिए, कब करना चाहिए? तो आत्मा बारे श्रोतव्य, हाँ कस्मा श्रोतव्य, श्रोतव्यम वेदांत वाक्येषु, वेदांत वाक्यों के द्वारा श्रवण करो। अनिवार्य श्रोतव्यम वेदांत वाक्येषु, मंतव्यम च युक्ति भी, मनन के मनन कैसे करोगे, युक्ति के द्वारा मनन करो। मंतव्य से सततम देहे, मनन करके जो निश्चय करोगे उसको ध्यान करते रहो। तो आत्मा बारे श्रोतव्य, यहां है ना दृष्टिव्य पहले आता है, आत्मा बारे दृष्टिव्य श्रुति का निर्देश आयो, जिज्ञासु हो मुक्षो, हाँ आत्मदर्शन करो, आत्मदर्शन करो, आत्मदर्शन करो, श्रुति पुकारती है, जिल्लाती है, ढिंडुरा बेती है, आत्मदर्शन करो, आत्मदर्शन करो। तो भाई आत्मदर्शन करो, चिल्लाते हो आत्मदर्शन कैसे किया जाए? कहते सुनो सुनो सुनो, आत्मा के विषय में सुनो सुनो सुनो। तो सुने तो किससे सुने, कौन सुनाएगा? टीवी सुनाएगा, रेडियो सुनाएगा, वीडियो सुनाएगा, लेफ्ट सुनाएगा, फेफ्ट सुनाएगा, कौन सुनाएगा? वेदांत वाक्य श्रवण करो, श्रोतव्यम वेदांत वाक्यभ्य। आज सुनना क्या से जाए, श्रवण क्या से जाए? तो श्रवण का भी एक यह है, वेदांतानाम अशेषाणाम आधिमध्य अवसान तो परमात्मन्येव तात्पर्य मिति धि श्रवणम भवेत। वेदांतानाम अशेषाणाम, तमाम वेदांतों का जितना भी वेदांत है, अशेषाणाम शेष नहीं रहे, वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्य अवसान, आदि मध्य और अंत में क्या है, क्या बता? वेदांत क्या, आदि क्या है, अंत क्या, मध्य क्या है? ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम, जो भी जितना भी वेदांत है, वेदांतों का तात्पर्य है अनिवार्य ब्रह्म और आत्मा में एकता। जीव ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, ये तात्पर्य है। ये तात्पर्य जिस शास्त्र में बतलाते हैं उसका नाम है वेदांत। जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन जहां करते हैं ना, उसका नाम बागी शास्त्र वेदांत नहीं है। यदि धी श्रवणम भवे, ऐसे जो धी है, बुद्धि वृत्ति है, तुम्हारा बुद्धि जिसमें भी है ना, जीव ब्रह्म की एकता में स्थित हो जाती है, उसका नाम है श्रवण। श्रवण करो, श्रवण करो, सुनो सुनो। तो सुनना किससे चाहिए? वेदांत वाक्य क्यों श्रवण करो। वेदांत क्या चीज़ है? जीव ब्रह्म की एकता का नाम वेदांत है। जिस शास्त्र में जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया, ऐसे शास्त्रों का श्रवण करो। समझे कि नहीं? यहाँ क्रिया प्रधान नहीं है, योग क्रिया प्रधान है, कर्म क्रिया प्रधान है, पूर्वेक्षा क्रिया प्रधान है। समझे कि ना? कौन? वेदांत, वेदांत नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण अन्य साधने यथा पदार्थ भानाभि प्रकाशम बिना कोषित। कहते ज्ञान कब होगा? नो विचार बिना विचार से। अनिवार्य नोत्पद्यते बिना ज्ञानम, ज्ञानम नोत्पद्यते कदा? विचारेण अन्य साधने, विचारम बिना अन्य साधने ज्ञानम नोत्पद्यते। ज्ञान करना हो तो आपको विचार करना ही पड़ेगा। अभी समझो आप लाखों का हिसाब करते हो, आपका हिसाब में गड़बड़ हो गया, हिसाब नहीं मिल रहा है, दार बार बार बार देख रहे हो, तो उस अवस्था में क्या करोगे? धूप दोगे, दीप दोगे, हनुमान चालीसा पाठ करोगे, हाँ गीता पाठ करोगे, गायत्री पाठ करोगे, हिसाब मिलाने के लिए क्या करोगे? तो उस समय मान लो रात्रि के समय आप सोते सोते 10 बार 20 बार विचार किया, नहीं बना तो बंद कर रख दोगे कि नहीं? सुबह देखेंगे और सुबह देखते ही यहां गलती हो गई, मिल गया।
अरे बात हाँ जी तो कहने का मतलब है ज्ञान होता है विचार से। विचार क्या है? तो विचार शब्द है कि नहीं? एक शब्द है विचार, तीन अक्षर का, चार चरते थे, चार चार माने बाहर जाना, चरते थे चार बाहर जाते हो। हाँ, विचार माने विपरीत चार, उल्टा आओ, जैसे बाहर गए हो ऐसे भीतर आ जाओ। हाँ, चार बार करने जाए, चार बात कहता है देह आत्मवाद, देह को आत्मा मानना, देहो हम। हाँ, चार वाक्य कहता है खाओ पियो मत करो। तो विचार मतलब होता है उल्टा चाल, जिस चाल से तुम बाहर गए हो वहां से फिर करके आप कहाँ जाओगे? वहां पहुंच जाओ। हाँ, तो तुम किस चाल से बाहर गए? सुबह उठते हो, उठने के बाद में किसको देखते हो? सुबह उठते हैं उसने दर्शन होता है, पहले ब्रह्म को दर्शन करते हो तो जानते नहीं। क्यों? प्रकाश देखते हो कि नहीं? प्रकाश या प्रकाश के बिना देखोगे? आम को देखोगे? कराकर बसंत लक्ष्मी देखोगे? सबसे पहले क्या देखते हो? ब्रह्म दर्शन होते हैं, आत्मदर्शन होते हैं। क्यों? प्रकाश क्या है? ज्योतिषाम अभी तज्योतिष तमसा परम इच्छते। भगवान ने गीता में बताया ना, ज्योतियों का मैं ज्योति हूँ। तो ज्योति का देखते हो, प्रकाश का देखते हो कि नहीं? रोशनी को देखते हो कि नहीं? रोशनी क्या चीज है? तो फिर परंतु मालूम नहीं यही ब्रह्म है नहीं बात? हमको मालूम नहीं है कि ब्रह्म का ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, आत्म ज्योति है, स्वयं ज्योति है, यह हमको मालूम नहीं है। दर्शन रोज करते हैं, हम तो कराग्र बसते लक्ष्मी, ब्रह्म दर्शन के बाद लक्ष्मी का दर्शन होता है। ईश्वर जहां वहां ना लक्ष्मी रहेगी ना। इसीलिए जो श्रवण है आत्मा बारे श्रोतव्य, तो श्रवण पहले है, दृष्टव्य जो लिखा है ना, ये अर्थक्रम है। कुछ शब्द होता है वर्ण क्रम, कुछ होता है अर्थक्रम। पहले क्रम देखा या दृष्टव्य, अगर आत्मा का दृष्टन हो जाए तो श्रवण करने की जरूरत क्या है? पहले दृष्टव्य आ गया तो श्रोतव्य का अर्थ क्या है? दर्शन के बाद सुनना चाहिए कि सुनने के बाद दर्शन करना चाहिए? तो ऐसा दोनों सिद्धांत है, याद रखना। एक सिद्धांत कहेगा पहले श्रवण करो फिर दर्शन करो, दूसरा कहे पहले दर्शन करो फिर श्रवण करो मनन करो। पहले होना तो चाहिए क्या? श्रोतव्य देखो, पेट भर गया फिर खाओगे क्या? खाने के पेट भरने के लिए खाना है कि खाने के लिए पेट भरना है? ओम नमः शिवाय।